मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 5:57 होने को है हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया।

0: वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में। रचना है डॉक्टर राम वल्लभाचार्य की।

विपिन सचदेवा और साथियों के गाए इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए मुकेश के स्वर में कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: मुकेश के गाए इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी रायपुर है, 6:30 हुए हैं। धर्म ग्रंथों से पाठ, इसमें सुनिए बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पाठ।
1: तपस्वी अकोधनो होती अनुपनाही, तपस्वी अनुसुखी होती अमच्छरी। सच्चा तपस्वी क्रोध और वैर से रहित होता है। जो तपस्वी सच्चा होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता। अत्त दीपा भिक्खवे विहरथ अत्त सरणा अनन्य सरणा, यम अकुशलम तम अभिनिवेज्ये यासि, यम अकुशलम तम समादाय वत्ते यासि, इदम खोतात तम अरियम चक्कवत्तिवतम। हे भिक्षुओं, आत्मदीप होकर, स्वयं प्रकाश होकर और आत्मसरण होकर यानी स्वावलंबी होकर विहार करो। किसी दूसरों के भरोसे मत रहो। जो बुराई है उसका त्याग करो और जो भलाई है उसे स्वीकार करो। यही सबसे श्रेष्ठ आर्य व्रत है। अधनानं धने अननुपदी यमाने, दालिद्रयम् वेपुल्लमगमासी, दालिद्रये वेपुल्लम् गते, अदिन्नादानम् वेपुल्लमगमासी। निर्धनों को धन दिए जाने से दरिद्रता बहुत बढ़ गई और दरिद्रता के बढ़ जाने से चोरी बहुत बढ़ गई। धम्मो वसेठो जने तस्मी दिठे चेव धम्मे अभिसंपरायंच। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और

0: परलोक में भी वह हमारा हितकारी है। पाणातिपातो अदिन्नादानं मुसावादो च उच्यति परदार गमनं चेव न प्रशंसन्ति पंडिताः। जीव हिंसा, चोरी, झूठ और परस्त्री गमन, ये सब कुत्सित कर्म हैं। इन कर्मों की पंडित लोग कभी प्रशंसा नहीं करते। छन्दागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति दोषागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति मोहागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति भयागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति। मनुष्य पाप कर्म जो करता है वो राग के वश होकर करता है, द्वेष के वश होकर करता है, मोह के वशीभूत होकर करता है और भय के वशीभूत होकर करता है। छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं नातिवत्तति आपूरति यसो तस्य सुखपक्खे वचन्दिमा। जो व्यक्ति राग को, द्वेष को, भय को और मोह को छोड़कर धर्म का पालन करता है, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसकी कीर्ति उसी प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें। जूतप्रमादत्थानानियोगो भोगानम अपाय मुखम पापमित्तानियोगो भोगानम अपाय मुखम आलस्यानियोगो भोगानम अपाय मुखम। जुए आदि खेलना, प्रमाद स्थानों का सेवन ऐश्वर्य के विनाश का कारण है। बुरे मित्रों की संगति, यह भी ऐश्वर्य के विनाश की हेतु है और आलस्य में पड़े रहना भी ऐश्वर्य को नष्ट करता है। संदिठिका धनजानी कलहप्पवर्धनो रोगानम आयतनम अकित्ति संजननी कोपी न निदंसनी पैयाय दुब्बलीकरणी। मद्यपान तत्काल धन की हानि करता है, कलह को बढ़ाता है, रोगों का घर है, अपयश को पैदा करता है, लज्जा को नष्ट करता है और बुद्धि को दुर्बल बनाता है।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है। मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या

लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया और गायक कलाकार थे चतुरसेन और राजेंद्र काजरू। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है हल्दी की वैज्ञानिक खेती। जानकारी देती हुई डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज की किसान चर्चा में हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देना चाहूंगी मैं। हल्दी की जो खेती है हम नम एवं गर्म जलवायु वाली जगहों में आराम से हम कर सकते हैं। हल्दी का जो फसल है जिसका विभिन्न प्रकार से हम औद्योगिक और औषधीय उपयोग में या गृह उपयोग में भी हम आसानी से हम इसे करते हैं, आप सभी किसान भाइयों को ये पता भी है। साथ ही इसकी जो खेती है वो छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे जगहों में इसे करते हैं। भूमि की जहां तक बात है, भूमि के लिए हमें जीवांश युक्त दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी जो भुरभुरी हो, ताकि हमारी जो कंद की जो बढ़वार है बहुत अच्छे से हो सके, ऐसी भूमि का हम उपयोग करते हैं। खेत की तैयारी की जहां तक बात है, खेत की तैयारी के लिए हम 2-3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल के द्वारा हम करते हैं, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो सके और साथ ही इसे और भुरभुरी बनाने या जीवांश कार्बन के स्तर को बढ़ाने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ गोबर की खाद या हरी खाद का 25-30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करते हैं। और जीवांश कार्बन युक्त एवं भुरभुरी मिट्टी में गांठों की संख्या और आकार की दोनों में वृद्धि हो सके। बीज उपचार के लिए हम जैव फफूंदी नाशक ट्राइकोडर्मा नामक जैव फफूंदी नाशक का उपयोग करते हैं या

0: बेंडाजीम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम इसका घोल बनाते हैं और 30 मिनट तक इसे हम डुबा करके 24 घंटे के लिए छायेदार जगह में सुखाने के पश्चात ही हम इसका बुवाई करते हैं। बुवाई की विधि में हम या तो इसे क्यारियों में लगाते हैं या समतल भूमि में इसे लगाते हैं, जिसमें हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और कंध से कंध की दूरी जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास हम रखते हैं। बीज दर में हमें हल्दी की खेती के लिए 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए बुवाई के समय प्रत्येक प्रकंद में 2 से 3 सुविकसित आंक, जिसे हम अंकुरण बोलते हैं, जिसे हम पीका बोलते हैं, वो अवश्य रूप से होनी चाहिए। इसका हमें उचित तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। हल्दी की खेती के लिए जो किस्में हैं वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्म, जैसे छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 2 और छत्तीसगढ़ हल्दी 1, ऐसी किस्में हैं जिसे हम छत्तीसगढ़ भूमि में आसानी से हम लगा सकते हैं। खाद एवं उर्वरक में हम गोबर की खाद, कंपोस्ट का उपयोग करते हैं या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का 120, 80 और 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करते हैं। सिंचाई एवं जल निकास की जो व्यवस्था है उसे हमें सुनिश्चित करना चाहिए और इसके प्रकंद के बढ़वार के लिए सिंचाई की व्यवस्था हमें 10 से 20 दिन के अंतराल में करनी चाहिए, जिससे प्रकंद का जमाव अच्छे से हो सके और वृद्धि विकास के समय भूमि को नम रखना भी आवश्यक होता है। खरपतवार नियंत्रण जो है इसका मुख्य भाग होता है। खरपतवार के लिए या तो हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें पत्तियों का मल्चिंग या फिर पैरा मल्चिंग या प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग हम करते हैं और साथ में 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करके हम इसके खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ साथ जो कंद की वृद्धि है और विकास है वो अच्छी से हो सके। कीट व्याधि जो व्यवस्था है इसे हमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये भूमि के नीचे की फसल होती है तो दीमक थ्रिप्स नामक जो कीट होते हैं उसे हमें खत्म करने के लिए अच्छे से जुताई करनी चाहिए, गर्मी जुताई करनी चाहिए, रोग ग्रसित जो पौधे होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए और साथ ही अच्छी किस्मों का हमें उपयोग करना चाहिए। साथ ही जो खुदाई एवं भंडारण है, इसमें हल्दी की खेती से 6 से 9 महीना हमें इसका समय लगता है, तो इसे हमें 6 से 9 महीने के बाद में खुदाई करके इसे हमें निकालना चाहिए। और उपज की जहां तक बात है, इसमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादन इसमें होता है। धन्यवाद।
1: हल्दी की वैज्ञानिक खेती, ये विषय था आज की कृषि चर्चा का। जानकारी दे रही थी डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से ये आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे शाम 7:30 से रात 8:45 और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा सुबह 7:05 पर। इसमें आज सुनेंगे जिला स्तरीय रोजगार मेला युवाओं के लिए अवसर और आवेदन प्रक्रिया पर डॉक्टर शशिकला अतुलकर उप संचालक रोजगार विभाग रायपुर से विशेष संवाद और गलत ई चालान की शिकायत निरस्तकरण की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधाओं पर श्री सतीश ठाकुर सहायक पुलिस आयुक्त यातायात रायपुर से विशेष बातचीत। साथ ही सुनिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को मिलने वाले बिना गारंटी ऋण और योजनाओं के लाभों पर डॉक्टर अंजलि शर्मा उपायुक्त नगर निगम रायपुर से खास बातचीत। प्रस्तुति होगी देवव्रत भगत की। नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसलय सुबह 8:30 पर। इसमें क्रम बच्चों की डायरी में होगी चर्चा सदाचार की शिक्षा। क्रम नवांकुर में

बनेगा स्पेस किड्स इंडिया के मिशन शक्ति सेंट के लिए चयनित कुमारी महिमा राजपूत से धीरेंद्र गिरी गोस्वामी की बातचीत, साथ ही होगा क्रम बच्चों के मुख से और प्रेरक प्रसंग। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल संसार, इसमें साप्ताहिक खेल समीक्षा के साथ ही सुनेंगे छत्तीसगढ़ की कराटे खिलाड़ी धारणी ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुतकर्ता होंगे रमाशंकर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे पंचराम चारण और साथी। रात ये नाटक सुनिएगा सुबह 10:30 पर। मराठी के यशस्वी नाटककार श्री विजय तेंदुलकर के इस मराठी कहानी का नाट्य रूपांतरण है श्री अमन शिंदे का और निर्देशक हैं चिरंजीत। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 11:05 पर। प्रस्तुत करता होंगी अनुभा अग्रवाल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे कलाकार होंगी मीना कुमारी। आप मन के गीत कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर। आज की बात होगी बदलते मौसम के साथ बदले दिनचर्या, साथ ही होंगे क्रम आपकी रसोई से कुछ बातें कुछ गीत और दीदी की सलाह। हमर हाथी हमर कोट ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें आजकल में आज होगी चर्चा समय का महत्व समझें और क्रम आज मेरी बारी है, मैं बारी होगी दिव्या धुर्वे की।

जिले की चिट्ठी में शाम 6:05 पर सुनिएगा सूरजपुर जिले की चिट्ठी। शाम 6:30 पर कानून के बाद कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध विषय पर जानकारी देंगी सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी फसल चक्र परिवर्तन पर श्री अन्नकोट मिलेट की खेती। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाषनिर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 25+ 2000 वर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशील।

0: रेलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक

0: तक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। पेशे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुत कर रहे हैं देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। दोस्तों, बीती रात से हो रही बारिश ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया है। लगता है मानसून के आने के बाद जिस अच्छी बारिश का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है। आज सुबह जब रायपुर जागा तो चारों तरफ मौसम का एक अलग ही रंग दिखाई दे रहा है। कहीं पेड़ों की पत्तियों से टप टप करती बूंदें फिसल रही हैं, तो कहीं खिड़कियों पर हल्की हल्की फुहारें दस्तक दे रही हैं। नजर जिधर भी जाती है मौसम का मिजाज बदला सा नजर आता है। पुरानी बस्तियों की गलियों से महादेव घाट तक रौनक कुछ अलग ही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रायपुर आज इस बारिश के साथ रविवार को खुलकर जी रहा हो। सड़कों पर लोग छाता लेकर निकल रहे हैं, तो कहीं रंग बिरंगे रेनकोट पहनकर दोपहिया चलाते लोग अपने सफर पर हैं। सड़कों के किनारे जमा पानी में गिरती बूंदें छोटी छोटी लहरें बना रही हैं। उधर बूढ़ा तालाब के बीच हरियाली और निखर गई।

ही है। और नवा रायपुर की ओर आगे बढ़े तो सेन लेक के आसपास का नजारा इस बारिश के बाद और भी निखर कर सामने आ रहा है। और फिर आज तो संडे यानी रविवार के इस मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए पूरा दिन सामने है। और सुबह की कोई सैर पर निकला है तो कोई गर्मा गर्म चाय के साथ इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहा है। ऐसी बारिश और ऐसा रविवार दोनों साथ मिल जाएं तो दिन अपने आप खास बन जाता है। और ऐसे ही भीगे भीगे मौसम में कुछ धुनें हवा में खुद ब खुद घुल जाती है और मन यही गुनगुनाने लगता है। रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम रिम

दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। और इसी सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। आज के ही दिन साल 1687 में महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन की मशहूर किताब फिलोसोफिए नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस किताब के जरिए दुनिया ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जाना। विज्ञान की दुनिया में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। वहीं 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से हमारे देश पहुंची। ये भारतीय नौसेना के लिए नया और अहम पड़ाव माना जाता है। और 1996 में आज के ही दिन विज्ञान ने एक और इतिहास रचा। स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली क्लोन भेड़ डॉली को व्यस्क कोशिका से सफलतापूर्वक जन्म दिया। इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया में विज्ञान और शोध की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। इतिहास के इन सुनहरे पन्नों के बाद लौटते हैं इस भीगी भीगी सुबह की ओर। और जब मौसम में बारिश की हल्की हल्की बूंदें हो तो लगता है जैसे इनके पीछे भी कोई अपनी सी कहानी छिपी हो, कोई मीठी सी शरारत हो या फिर साजिश ही बूंदों की हो।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: रिलेटिव स्कैम या इमरजेंसी स्कैम, यह एक बेहद खतरनाक स्कैम है, क्योंकि इसमें स्कैमर्स आपकी भावनाओं और परिवार के प्रति लगाव का फायदा उठाकर ठगी करते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार बनकर आपसे बात करते हैं। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी रिश्तेदारों की और आपकी निजी जानकारी निकालते हैं और AI वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कर आपके रिश्तेदार की हूबहू आवाज़ की नकल करते हैं। स्कैमर्स फ़ोन में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने की बात कर या कोई पुलिस स्टेशन का नाम लेकर तुरंत पैसे डालने की बात आपको बात करता है और ठगी करने का प्रयास करता है। ऐसे ठग से सतर्क रहें। ऐसे कोई कॉल आता है तो आप तुरंत अपने रिश्तेदार के ओरिजिनल नंबर पर कॉल करें। सावधान रहें, जागरूक बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या अपनी नज़दीकी थाने में भी आप जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
2: श्रोताओं, वैसे तो ई चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लाई गई है ताकि ट्रैफिक में ई चालान की प्रक्रिया बेहद सही ढंग से हो सके, लेकिन कभी अगर आपके वाहन का गलत ई चालान जारी हो जाए तो क्या करें और शिकायत कैसे करें, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत की है सतीश ठाकुर, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात रायपुर से। आइए सुनते हैं।
3: साथियों, आजकल ई चालान की व्यवस्था से यातायात नियमों का पालन आसान हुआ है, लेकिन कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उनके वाहन का गलत ई चालान जारी हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए और शिकायत कैसे करें, इसी विषय पर बात करने

0: के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश ठाकुर, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात रायपुर। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: थैंक यू वेरी मच
0: जी। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ई चालान की व्यवस्था है वो कैसे काम करती है।
1: रायपुर जिले में स्मार्ट सिटी के माध्यम से ITMS सिस्टम लगाया गया है। ITMS का मतलब है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से अलग अलग चौक में कैमरे लगाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे RLVD कैमरा होता है, उसमें रेड लाइट वॉयलेशन डिवाइस कैमरा, कोई भी व्यक्ति यदि रेड लाइट जंप करता है तो उसका वॉयलेशन को डिटेक्ट करते हैं। एक कैमरा होता है SVD स्पीड वॉयलेशन डिवाइस कैमरा, जो भी व्यक्ति स्पीड में गाड़ियां चलाता है उसको डिटेक्ट करता है। एक होता है WWD रॉन्ग वे डिटेक्शन कैमरा, जो भी रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाएगा उसको डिटेक्ट करता है। और इन सभी गाड़ियों का हमारे पास ANPR जो कैमरा है उसके माध्यम से सभी गाड़ियों का नंबर डिटेक्ट होता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरे से सभी प्रकार के वॉयलेशन को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, और उन सभी जो वायलेशन करते हैं उसका ई चालान जनरेट करते हैं, और जो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में उसको SMS के माध्यम से सूचना मिलता है, और उसको डाक के माध्यम से सूचना मिलता है, और एक लिंक भी मिलता है, उस लिंक के माध्यम से उस चालान का भुगतान कर सकता है।
0: लेकिन कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके वाहन का गलत ई चालान आ गया, और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: हाँ, निश्चित रूप से जो कैमरे ITMS के माध्यम से चालान जनरेट करते हैं उसमें संभावना रहती है कि कभी किसी गाड़ी का नंबर गलत नंबर का चालान बन जाता है। ऐसे NM है तो MN के माध्यम से उसका चालान बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत नंबर प्लेट को यूज करके चला रहा है, किसी व्यक्ति का नंबर प्लेट यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति के घर में चालान चले जाता है जो उसका वॉयलेशन नहीं किया है। ये अलग अलग प्रकार के माध्यम है जिसमें वॉयलेशन जो गलत बनते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका ई चालान बना है जो गलत है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसमें आप जाएं, उसका नाम है ई चालान परिवहन nextgen.gov.in। इसमें जाएंगे, जैसे ही आप इसमें जाएंगे और उसमें एक कंप्लेन का ऑप्शन आएगा, कंप्लेन के ऑप्शन में आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और ग्रीवियंस सिस्टम में आप जाएंगे और अपनी शिकायत को दर्ज कर पाएंगे। उसमें आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बताने का पड़ेगा, ईमेल आईडी बताना पड़ेगा, आपका किस गाड़ी का नंबर है, किस सिटी में है, किस स्टेट में है, किस लोकेशन में आपका वायलेशन हुआ है, वो सभी जानकारी आपको फिल करना पड़ेगा और उसके कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्या कारण से आपका चालान गलत बना है, कि आपका नंबर प्लेट दूसरे का है, कि मैं अपनी उस गाड़ी का यूज नहीं कर रहा हूँ। वो पूरा डिटेल आपको उसमें भरना पड़ेगा, और पूरा डिटेल भरने के बाद उसको आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद उसके बाद एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद आपको एक ID जनरेट हो जाएगा, एक नंबर जनरेट होगा, टिकट नंबर जनरेट होगा। उस टिकट नंबर को आप संभाल के रखें, और आपको क्या क्या उसमें जो शिकायत की थी, क्या निराकरण हुआ, कहां तक वो शिकायत पहुंची है, वो सभी जानकारी आपको टिकट नंबर के माध्यम से मिलती रहेगी।
0: तो क्या ये शिकायत केवल ऑनलाइन ही होती है या फिर ऑफलाइन यातायात कार्यालय जाके भी ये शिकायत की जा सकती है?
1: दोनों माध्यम रहता है। आप यदि जैसे कई गाड़ियां, जैसे महाराष्ट्र की गाड़ी है उसका गलत नंबर बन गया तो वो आना यहाँ संभव नहीं है, गुजरात की गाड़ी है वो उसका गलत चालान छत्तीसगढ़ में आया बन गया, तो किसी भी स्टेट की गाड़ी, किसी भी स्टेट में आपका गलत चालान बना है तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और यदि आपका छत्तीसगढ़ में गलत चालान बना है तो आप ट्रैफिक ऑफिस में आके अपना लिखित रूप से अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें 30 दिन के अंदर उसका निराकरण कर दिया जाता है। ऑनलाइन भी होगा तो भी इसका 30 दिन के अंदर निराकरण होगा, यदि आप ऑफलाइन भी करते हैं उसका निराकरण होगा, यदि वो उसका सत्यापन किया जाता है कि वास्तव में जो आप कंप्लेन किए हैं कि वो गलत है, गलत नंबर के कारण चालान बना है, तो उसका उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और यदि वो कंप्लेन को सही नहीं पाया था तो उसका भुगतान करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और ये ई चालान अगर कोई गलत आ जाता है तो इसको निरस्त करने के लिए कितने दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है?
1: इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब आपको सूचना मिलता है कि मेरे को आज मेरा चालान बना, वो आपको मोबाइल में सूचना मिला या आपको डाक के माध्यम से सूचना मिला, जब भी आप मोबाइल में देखेंगे या फिर गाड़ी, कभी कभी ई चालान ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है, और कभी गाड़ी बेचने जाते हैं और गाड़ी बेचने जाएंगे तो आपको पता चले ई चालान बना हुआ जो काफी पुराना है, तो आप उससे उस समय उसको कंप्लेन कर सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, किंतु आप जब भी उसका कंप्लेन करते हैं जो ID नंबर जनरेट होता है टिकट नंबर, उसको संभाल के रखें, और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका निराकरण होगा।
0: जी, और कई लोग तो बिना जांच के ही चालान जमा कर देते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें आप जरूर चेक कर लें कि आपका जो चालान आपके पास आया हुआ है वो वास्तव में सही चालान है, आप उसको चेक कर लेंगे, और उसमें जो वेबसाइट है एम परिवहन

0: नेक्स्ट जेन GOV.in, उसके माध्यम से ही आप उसको चालान को पेड करें, क्योंकि उसमें आप जब जाएंगे और आप चेक करेंगे तो आपको उसमें आपका कितने चालान बना हुआ है, कितने राशि है, पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो उसके माध्यम से किसी प्रकार के फ्रॉड होने की संभावना नहीं रहती है। तो आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी वेबसाइट का उपयोग करें।
1: अंत में आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से वाहन चालकों को और आम नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: सभी वाहन चालकों से मेरा यही संदेश रहेगा कि यदि आप दो पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, चार पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, नाबालिग बच्चों को पेरेंट्स वाहन न दे। तो निश्चित रूप से जो शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने का हमारा उद्देश्य है, हमारे कमिश्नर सर का उद्देश्य है, उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बिना लोगों की मदद के, लोगों के सहयोग के हम लोग संभव नहीं हो पाएंगे। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें।
1: बिल्कुल सतीश ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: आपका क्या संदेश रहेगा?
1: सभी वाहन चालकों से मेरा यही संदेश रहेगा कि यदि आप दो पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, चार पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, नाबालिग बच्चों को पेरेंट्स वाहन न दें। तो निश्चित रूप से जो शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने का हमारा उद्देश्य है, हमारे कमिश्नर सर का उद्देश्य है, उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना, उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बिना लोगों की मदद के, लोगों के सहयोग के हम लोग संभव नहीं हो पाएंगे, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करें।
0: बिल्कुल सतीश ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर

0: कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार?

0: दोस्तों, 8 जुलाई को रायपुर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले और युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को लेकर हमने बात की है डॉक्टर शशिकला अतुलकर, उप संचालक रोजगार विभाग रायपुर महासमुंद एवं दिव्यांग जन विशेष रोजगार कार्यालय से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए 8 जुलाई को रायपुर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की खासियत, आवेदन प्रक्रिया और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शशिकला अतुलकर जी, उप संचालक रोजगार विभाग। आपके पास महासमुंद की भी जिम्मेदारी है, इसके अलावा दिव्यांगजनों के विशेष रोजगार का भी काम आप देख रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: धन्यवाद देवव्रत जी, और ये आकाशवाणी एक हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपने यहाँ मुझे इस अवसर को प्रदान किया है।
0: बिल्कुल मैम, तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि 8 जुलाई को होने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले में क्या विशेष रहेगा?
1: 8 जुलाई को हमारा जिला स्तरीय रोजगार मेला राजकीय पॉलिटेक्निक बैरन बाजार में आयोजित है। इस रोजगार मेले में हमारे यहाँ जो जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आवेदक हैं उनको हम रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इसके पहले ये होता था कि जो रोजगार कार्यालय में यदि पंजीकृत नहीं भी है और उनका आधार से लिंक अगर रोजगार पंजीयन नहीं भी है तो भी उनको रोजगार मेले में सम्मिलित होने का मौका मिलता था, लेकिन इसके आवेदकों की विश्वसनीयता और नियोजकों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमारे रोजगार मेले में सभी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन के लिए ये आवश्यक हो गया है कि आवेदक का जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन है वो तो आधार कार्ड से लिंक हो।
0: बिल्कुल, और इस रोजगार मेले में लगभग कितनी कंपनियां भाग ले रही हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे?
1: आने वाले 8 जुलाई को जो रोजगार मेला आयोजित है उसमें निजी क्षेत्र के हमारे जो आईटी सेक्टर है, कॉल सेंटर्स है, इसके अलावा आईटीआई के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही जो ऑफिस में कार्य करने वाले जो कार्यरत जो कर्मचारी कार्य करना चाहते हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
0: युवा अगर इसमें शामिल होना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन

0: कौन से दस्तावेज जो हैं वो लाना जरूरी होगा मैम?
1: रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत है एक्चुअली उनका पूरे दस्तावेज वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं,
0: जी
1: और उनको और दोबारा केवल मूल प्रमाण पत्रों को लाने की आवश्यकता होती है, जिसमें उनका आधार कार्ड, उनकी 10वीं की या उनकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, 10वीं है, 12वीं है, उन्होंने स्नातक स्तरीय जो परीक्षा पास की है, या कोई किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण उनके द्वारा लिया गया है, अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास है।
0: मैम, तो क्या इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो तुरंत होगी? चयन प्रक्रिया किस तरह की होगी और क्या ये आगे अलग से चलेगी या फिर उसी दिन सारी सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी 8 जुलाई को?
1: जी, रोजगार कार्यालय वो एक्चुअली एक माध्यम होता है नियोजकों को और आवेदकों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का।
0: जी
1: नियोजक की ओर से उनके जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं या नियोजक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और आवेदक हमारे द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से आवेदकों तक पहुंचाई जाती है। और विशेष रूप से हमारा जो ई रोजगार पोर्टल है और छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप है, उसके माध्यम से आवेदक इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई होने के बाद में जो ऑनलाइन में नियोजक के जो पद उनके द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, जो पोर्टल में दिखाई देते हैं, उन आवेदकों के पूरे विवरण नियोजकों को वहां ऑनलाइन में दिखाई देते हैं। ऑनलाइन में दिखाई देने पर उनके द्वारा जो साक्षात्कार लिया जाता है,
0: जी
1: प्रारंभिक रूप से तो उनकी प्रक्रिया वही ऑन द स्पॉट पूरी कर दी जाती है, और लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसमें नियोजक चाहता है कि वो वहाँ आपका उनका जो मुख्यालय है या जहाँ पर कार्य करने का स्थल है, फैक्ट्री है, जो कार्य कंपनी का जो कॉर्पोरेट एड्रेस है, वहां पर जाकर कौशल कुछ प्रशिक्षण दिया जाए या कुछ रिटन एग्जामिनेशन दिया जाए, अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए, तो अंतिम रूप से चयनित का की प्रक्रिया जो है वो बाद में नियोजक द्वारा की जाती है।
0: तो क्या ये जो मेला है ये स्नातक युवाओं के लिए है या फिर 10वीं 12वीं और आईटीआई डिप्लोमा जो दूसरी योग्यता वाले हैं वो भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं?
1: जी, इसमें ये केवल स्नातक योग्यताधारियों के लिए नहीं है, इसमें 10वीं के पश्चात जो भी है, 10वीं 12वीं स्नातक और आईटीआई, सभी तरह के शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
0: अंत में आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा मैम?
1: हम चाहेंगे कि जितने भी रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं या जो प्रयास बेरोजगारी दूर करने के लिए जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उन अवसर का अधिक से अधिक अभ्यर्थी लाभ उठाएं, और ई रोजगार पोर्टल जो हमारा erozgar.cg.gov.in और साथ ही जो हमारा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप है
0: जी
1: उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके माध्यम से इन सभी अवसरों की जानकारी समय समय पर वो प्राप्त करते रहे।
0: बिल्कुल डॉक्टर अतुलकर,
1: जी सर,
0: आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद देवव्रत जी, बहुत अच्छा ये माध्यम है, और हम चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से हम समस्त सूचनाएं हमारे श्रोताओं को पहुंचाते रहे। धन्यवाद।

0: छोटा कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले ऋण सुविधाओं और योजना से जुड़े लाभों पर हमने बातचीत की है डॉक्टर अंजलि शर्मा, उपायुक्त नगर निगम रायपुर से। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: साथियों, अपना छोटा कारोबार करके परिवार की आजीविका चलाने वाले पथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बड़ी मदद बन रही है। इस योजना के तहत बिना गारंटी के 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। इसी योजना संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, उपायुक्त रायपुर नगर निगम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्ते
1: जी। सबसे पहले मैम यही जानना चाहेंगे कि अगर कोई छोटा कारोबार करता है और उसे अपना काम बढ़ाना है और पैसों की जरूरत है, तो वो इस योजना का कैसे लाभ ले सकता है?
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स जैसे ठेला, गुमटी, फेरी या फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के लिए शुरू किया गया है। यदि किसी को अपना व्यवसाय बढ़ाना है, नया सामान खरीदना है या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, तो वह इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकता है। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी से वित्तीय सहायता मिलती है और वह अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाते हैं।
1: बिल्कुल। और कौन कौन से लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं? क्या कोई आसान तरीका है ये जानने के लिए कि हम पात्र हैं या नहीं?
2: हाँ, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो नगर निगम के सर्वे में शामिल है या जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, पहचान पत्र है या नगर निगम या टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा एक अनुशंसा जारी होती है, LOR कहते हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। यदि किसी को अपने पात्रता की जानकारी नहीं है, तो वह नगर निगम, बैंक या CSC कॉमन सर्विस सेंटर में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0: बिल्कुल, तो मैम इसका आवेदन कहाँ और कैसे करना होगा, और क्या इसके लिए नगर निगम भी आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है?
1: आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। इच्छुक हितग्राही जो है वो नगर निगम में या बैंक में या सीएससी या बैंक मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम स्वनिधि का पोर्टल है जिसके माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी दस्तावेज या प्रक्रिया में मदद की मतलब सहायता की आवश्यकता हो तो नगर निगम पूरी तरह से मदद करता है।
0: जी, इस योजना में जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 तरह की कैटेगरी है, 15,000, 25,000 और 50,000, तो ये 3 चरण कैसे काम करते हैं और किस आधार पे ये लोन दिया जाता है?
1: यह जो राशि है वो एक साथ नहीं मिलती है, चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पहले
0: जी
1: चरण में 15,000 तक का ऋण मिलता है। यदि हितग्राही समय पर ऋण का भुगतान कर देता है तो दूसरे चरण में 25,000 मिलता है। तीसरे चरण में 50,000 तक के ऋण का प्राप्ति किया जा सकता है। समय पे भुगतान करने वाले को ही अगले चरण में लाभ मिलता है।
0: बिल्कुल, और कई लोगों के मन में मैम ये भी सवाल रहता है कि लोन लेने के लिए कई बार हमको गारंटर चाहिए होता है या जमानत चाहिए होती है, तो इस योजना में क्या व्यवस्था है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की जमानत या गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी तरीके से बिना गारंटी कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण है जिससे छोटे व्यापारियों को आसानी से ऋण मिल जाता है।
0: जी, ये भी बात हुई। और अगर कोई समय पर किस जमा करता है तो उसके आगे क्या फायदा मिल पाता है? क्या ब्याज में छूट और कैशबैक जैसी भी सुविधाएं?
1: अगर कोई हितग्राही है जो समय पर अपनी किस्तें जमा करता है तो उसे 7% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। साथ ही अगर वो डिजिटल माध्यम से लेन देन करता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार उसे कैशबैक यूज होता है कैशबैक मिलता है जिसको यूज कर सकता है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर वो समय पर ऋण चुकाता है तो अगली बार अधिक राशि का ऋण लेने की पात्रता मिल जाती है।
0: बिल्कुल, और अगर कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर रहा है तो आमतौर पे कितने दिनों में ये लोन पास हो जाता है?
1: यदि आवेदन पूरी तरह से सही भरा गया हो, आवश्यक दस्तावेज अगर उपलब्ध हो और बैंक द्वारा समय पर स्वीकृति मिल जाए तो सामान्यतः 2 से 3 सप्ताह के भीतर ऋण स्वीकृत होकर वितरित किया जा सकता है। इसमें बैंक की स्वीकृति और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल होती है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि हमारे शहर में रायपुर में भी क्या लोगों को इसका फायदा मिल रहा है मैम?
1: हाँ, रायपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अब
0: जी
1: तक हमारा जो लक्ष्य था 53,593, उसमें हमें उसके विरुद्ध हमको 37,512 आवेदन मिल चुके हैं जिसमें से 32,845 आवेदन स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और 32,279 लोगों को ऋण भी हम दे चुके हैं। ये दिखाता है कि बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना से जुड़कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मैम, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो झिझक की वजह से पहुंच नहीं पाते हैं या इस योजना का लाभ लेने से ही झिझकते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, मेरे लिए अभी इसमें एक सकारात्मक बात है कि छोटे व्यापारी भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं। मैं सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर से यही कहना चाहूंगी कि यदि आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अवश्य लाभ उठाएं। यह सरकार की एक भरोसेमंद योजना है जिसमें बिना जमानत के आपको ऋण मिलता है, समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट मिलता है, डिजिटल लेन देन पर कैशबैक मिलता है, भविष्य में अधिक राशि का ऋण मिलने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नगर निगम, बैंक और हमारी पीएम स्वनिधि की पूरी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। आप आगे आइए, योजना का लाभ उठाइए और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक लेके जाइए।
0: बिल्कुल, डॉक्टर अंजलि शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

साथियों, बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही इस मौसम में सतर्क रहने की भी जरूरत होती है। अगर बादल गरज रहे हों और बिजली चमक रही हो तो खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खम्भों के पास बिल्कुल न रुकें। कोशिश करें किसी पक्की इमारत या सुरक्षित जगह पर चले जाएं। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। और वैसे जब बादलों का जिक्र हो रहा है, इसकी गरज का जिक्र हो रहा है, तो जहन में एक खूबसूरत धुन खुद ब खुद उतर जाती है कुछ इस तरह।

दोस्तों, अब नमस्कार रायपुर में वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार रायपुर से मुझे यानी देवव्रत भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थे देवव्रत भगत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और

0: आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को

0: प्रयोग कर सकते हैं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और

0: हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान।

नमस्कार बच्चों, आइए मिलकर बोले जय हिंद। मैं हूं आपका धीरेंद्र भैया, किसले के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि हमें सदाचारी होना चाहिए, सदाचार को अपनाना चाहिए, पर क्या आपको इसका अर्थ पता है? बच्चों, सदाचार का मतलब है अच्छा आचरण, यानी सच बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की मदद करना और नियमों का पालन करना। कहते हैं बचपन वह मिट्टी है जिसे जैसा आकार दिया जाए वैसा बन जाते हैं। और अभी आप बच्चे हैं, आप अपने आप को जैसा तैयार करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इसी उम्र में यानी बचपन में सदाचार को अपना लीजिए और ये पूरे जीवन काम आएगा। तो बच्चों, यही तो सदाचार की ताकत है। सदाचार का एक ऐसा गुण है जिसे ना पैसे से खरीदा जा सकता है और ना ही ये किसी दुकान में मिलता है। इसे हम अपने अच्छे कामों, अच्छे व्यवहार से कमाते हैं। और अगर हम सदाचारी हो जाते हैं तो हमारे बड़े भी हमसे खुश रहते हैं, हमारे गुरुजन भी हमसे खुश रहते हैं और हम अपने जीवन की तैयारी कर पाते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, अच्छी आदतें बचपन में ही बनती हैं। सबसे पहले हम अपने घर में सीखते हैं। हम रोज़ सुबह उठकर माता पिता, दादा दादी, जो भी घर के बड़े हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाते हैं। तब हम सदाचार सीख रहे होते हैं। इसके साथ ही स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। स्कूलों में शिक्षकों का

0: मान करना, अनुशासन, दोस्तों से झगड़ा नहीं करना, स्कूल को साफ रखने में सहयोग रखना, दूसरों की मदद करना, अच्छे संस्कारों को अपनाना और हाँ, समय सारणी बनाकर नियमित तरीके से खुद का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना। मान लीजिए स्कूल में आपने सहपाठी की पेंसिल यानी कलम टूट गई, आपके दोस्त की, आपके सहपाठी की कलम टूट गई और आप अपने पास रखी एक पेंसिल अगर उसे दे देते हैं तो यह मदद भी सदाचार ही होगा। बच्चों, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी की मदद करना, सभ्य इंसान की तरह बर्ताव करना, कुछ अच्छे काम करना, कृपया, धन्यवाद, माफ़ कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इससे सामने वाले को अच्छा लगे, अच्छा अनुभव मिले, यह भी सदाचार है। अच्छा व्यवहार ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है जो दूसरों को खुशी देती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। और जीवन में सफल होने के लिए सदाचार के साथ अच्छी तैयारी, मेहनत का होना भी ज़रूरी है, तो आपको ये सब बातें होनहार बनाती है। तो चलिए अगले क्रम नव अंकुर में मिलते हैं। स्पेस किड्स इंडिया मिशन शक्ति सेट के लिए चयनित छात्रा कुमारी महिमा राजपूत से। क्रम नव अंकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस क्रम में हम मिलेंगे महिमा राजपूत से, जो आप ही की तरह एक बच्ची है लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी है। उनकी अंतरिक्ष में रुचि है और उनका चयन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ है। तो सबसे पहले महिमा से ही बात करते हैं। महिमा, अपने बारे में अपने साथियों को बताइए।
1: मेरा नाम महिमा राजपूत है, मैं सीजस तिलक नगर गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं अभी 15 ईयर्स की हूँ। मिशन शक्ति सेट में मेरा सिलेक्शन हुआ है जो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा चल रहा है और इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी विंग कमांडर डॉक्टर जयतारे मैम को, जो इस मिशन की इंडियन एम्बेसडर है एंड CEO एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ स्पेस किड्स इंडिया श्रीमती केसन मैम को।
0: इन सभी गुरुजनों के मार्गदर्शन से आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पा रही हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सर।
0: अब महिमा ये बताइए कि इस प्रतियोगिता के लिए आपका चयन कैसे हुआ, आपने कैसे, क्या कोई फॉर्म भरा था या किसी आपके शिक्षक ने आपको मार्गदर्शन दिया था?
1: हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों को स्पेस किड्स इंडिया के बारे में बताया था और क्योंकि मेरे को स्पेस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट रहता है तो मेरी गाइडेंस टीचर योगेश्वरी लहरी मैम ने मुझे बताया कि ऐसा एक मिशन शक्ति सेट करके एक मिशन है और उसके बाद मैम ने मेरा रजिस्ट्रेशन किया जिसमें 21 मॉड्यूल्स थे और 365 लेसन्स थे। उसमें हमारे साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर कराया गया और हमें नॉलेज दिया गया कि सैटेलाइट बनता कैसे है, क्या काम करता है, ये सब के बारे में।
0: आपके गुरुजनों ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और सभी बच्चों को अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए। तो महिमा, आप ये बताइए कि आपको विज्ञान में पहले से ही रुचि है या आपको एक मौका मिला इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का, ये तैयारी एक दिन की है या काफी दिनों की?
1: मुझे बेसिकली बचपन से ही मेरे को मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है, स्पेस साइंस में, तो बचपन से ही मैं इस फील्ड में अच्छा काम करना चाहती थी।
0: और विज्ञान में आपकी रुचि कैसे हुई, क्या क्या पढ़ती हैं, कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, परीक्षा की कैसे तैयारी करती हैं?
1: स्पेस साइंस में मुझे इंटरेस्ट है, बेसिकली साइंस में ही मुझे इंटरेस्ट है और एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं है मैं दिन भर पढ़ती हूँ, बट हाँ ऐसे पूरा मैनेजमेंट करके मैं पढ़ती हूँ, 1 से 2 घंटे पढ़ लेती हूँ।
0: 1 से 2 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं?
1: हाँ।
0: और विज्ञान के लिए विशेष तैयारी करती होगी?
1: नहीं, नॉर्मली जैसे कि हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ती हूँ, बट अब जब से शक्ति सेट मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट की हूँ तो हाँ नॉलेज और बढ़ गया साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसमें हमारे लेसन्स होते हैं, उसमें एक्टिविटीज हमको करनी पड़ती है, रोज एक वीडियो देखना, हर एक लेसन करना पड़ता है, तो उससे इंटरेस्ट और डेवलप होता है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहा भी गया है कि अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती है, तो आप ना केवल विज्ञान की पढ़ाई करती हैं, सभी विषयों की तैयारी करती हैं और इसी का फायदा आपको मिल रहा है कि आपका इस कार्यक्रम में अब आसानी से चयन हो गया, ठीक कहा?
1: यस सर।
0: अच्छा महिमा, जब आप वहाँ पे जाएंगी, कई बच्चों से आपकी मुलाकात होगी, तो आपको क्या लगता है आप वहाँ क्या सीखेंगी?
1: क्योंकि ये जो मिशन है पूरा 108 कंट्रीज के बीच में फैला हुआ है, क्योंकि ये ग्लोबल इनिशिएटिव मिशन है, मिशन शक्ति सेट, जहाँ 12,000 गर्ल का हम लोग सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 108 गर्ल का सिलेक्शन

0: ना वर्कशॉप मिली, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हम लोग को सैटेलाइट बनाना होगा। वहाँ दो सैटेलाइट बनेंगे, एक जो मून के ऑर्बिट पे लैंड करेगा और दूसरा जो मून के सरफेस पे लैंड करेगा। तो अभी जब हम 23rd of August को जाएंगे न्यू दिल्ली, तो वहाँ से हम लोग को सैटेलाइट बनाना है, जो कि पहला सैटेलाइट लॉन्च होगा अक्टूबर में, इसरो से लॉन्च होगा जो सैटेलाइट जाएगा ऊपर। इस मिशन में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन सीखने को मिलेगा, मिशन लूनार पेलोड डेमोन्स्ट्रेशन सीखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग मॉडल बनाएंगे जिसमें 3 पेलोड इंजीनियरिंग मॉडल रहेंगे जो डिज़ाइन करेंगे, इंटीग्रेटेड हम लोग करेंगे ड्यूरिंग प्रोग्राम। मिशन शक्ति सैट जो है वो एक सैटेलाइट बनाने से कुछ ज़्यादा ही बड़ा मिशन है, क्योंकि इसमें ये मिशन शक्ति सैट चाहता है कि वो पूरे नेशंस को यूनाइट करे एकत्र, एकता में एकता वाला, तो ये हम लोग सबको एकता प्रदान करना चाहता है। और ये चाहता है कि जो स्पेस है वो सबके लिए एक्सेसिबल बने, सबकी पहुँच वहाँ तक हो, और सारी गर्ल्स हमेशा, वो मिशन शक्ति सैट है वो सारी गर्ल्स को मोटिवेट करता है, इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो सारी गर्ल्स इस अगर मेहनत करें और ट्राई करें तो उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती, तो अगर वो अच्छा ट्राई करेंगी तो बहुत ही अच्छा कर सकती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और अंतरिक्ष को समझने का मौका भी मिलेगा। तो भविष्य की क्या योजना है, बड़ी होके वैज्ञानिक बनना चाहती हैं?
0: हाँ सर, इसी फील्ड में अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ।
1: इसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधियाँ आपकी, क्या क्या रुचि है?
0: मेरे को स्टोरी राइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राइंग और पेंटिंग का शौक है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दूसरी गतिविधियों में भी रुचि है। सभी बच्चों की तरफ से कि जिस भी बच्चे को आगे बढ़ना है विज्ञान के क्षेत्र में, आपकी तरह कुछ करना है, तो उसे क्या करना चाहिए?
0: टीचर्स का रिस्पेक्ट तो हम लोगों को करना ही चाहिए, एज वेल एज हम लोग को अपनी पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और कंटिन्यू रेगुलर पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अभी से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है स्कूल के थ्रू, और बड़ों की बातें माननी चाहिए, और अपनी टीचर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो वो हम लोग का भलाई करते हैं कि कब कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए।
1: तो महिमा, अब आप अपने जैसे दूसरे बच्चों से क्या कहना चाहेंगी?
0: तो मैं दूसरे बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, जैसे कि स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फील्ड जिनमें उनको इंटरेस्ट हो, उसमें अपना अच्छा योगदान दे, जिसकी मदद से वो भारत का नाम और भी ऊंचा कर सके।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महिमा, आप भविष्य में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें।
0: मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच।
1: तो बच्चों, नव अंकुर में आपने महिमा से मुलाकात की, अगले अंक में फिर किसी होनहार बच्चे से होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चों, स्पेस किड्स इंडिया मिशन शक्ति सेट के लिए चयनित छात्रा कुमारी महिमा राजपूत से आपने चर्चा सुनी, उनके अनुभव जाने, और अब आगे बढ़ते हैं क्रम बच्चों के मुख से। इसमें हम सुनेंगे कुमारी अर्षिता श्रीवास्तव, कुमारी अंजुल साहू का कविता पाठ, और इसके साथ ही हम सुनेंगे नन्हे कराते खिलाड़ियों से प्रकाश उदय जी की बातचीत।

0: सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अर्षिता श्रीवास्तव है। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े कर कर दिखाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो दोस्तों, हमने हर काम को अच्छे से करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, दादा दादी की और नाना नानी की भी। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो आखिर में जाकर हमारा ही नुकसान होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
1: तो बच्चों, इसी के साथ एक और नन्ही साथी से आपको मिलवाते हैं, वो आपको

0: अपने बारे में भी बताएगी और कविताएं सुनाएंगी।
1: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजुल साहू है। मैं आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल बैकुंड की छात्रा हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सभी को अपनी कविता सुनाने आई हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रकृति। मैं प्रकृति हूँ, वही जो सबको चारों ओर से घेरी हुई हूँ। सबको शुद्ध पानी और प्राणवायु देती हूँ। बस दो चार पौधे लगा दो, इतनी विनती करती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, वही जिसे आजकल तुम प्रदूषित किए जा रहे हो। नालियों और कारखानों का गंदा पानी मुझमें मिला रहे हो। फिर भी मैं चुप हूँ, अपनों से शर्मिंदा हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, इस सुंदर धरा का श्रृंगार हूँ। मानो या ना मानो, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। इस सुंदरता पे यूं कलंक ना लगाओ। प्लास्टिक और गंदे काले धुएं से यूं मुझे ना सताओ। ध्यान रखो मेरा, क्योंकि मैं एक वरदान हूँ। मैं प्रकृति हूँ। मित्रों, हमें प्रकृति का ध्यान रखना है और संकल्प करना है कि इस बरसात में हमें एक पेड़ जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करें। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है खेतों से थाली तक भोजन का सफर। चलो चले एक गांव जहां होती खेती किसानी है। देखो एक किसान को खूब पसीना बहाता है। खेत जोतता, बीज बोता, धान गेहूं चना मसूर सब्जी फल लगाता है। खाद पानी समय पे देता, तब अंकुरण आता है। दिन रात सब एक हो जाता, तब फसल लहराता है। हरा भरा खेत देखकर किसान का मन हर्षाता है। कीट पतंगे रोग बीमारी को यह नहीं सुहाता है। मौसम का कुचक्र झेलकर सबसे फसल बचाता है। मेहनत से मिसाई करता, तब होता यह खाने लायक। उम्मीद की बोझ बांधकर फसल को घर तक लाता है। फिर मंडी की दौड़ लगाता, दुख से ना घबराता है। खून पसीना एक करे, तब थाली पर भोजन आता है। हमारी अगली कविता है स्वतंत्रता का मोल। स्वतंत्रता का मोल ना पूछो, मोल बड़ा अनमोल है। किसमें नापूं किसमें मापूं, ये मुश्किल सा तोल है। उसका मूल्य कौन चुका है जिसने अपना सिंदूर दिया। हाथ की राखी धरी रह गई जिस बहन का नूर गया। बाप की आंखें सूनी पड़ गई जिसने अपना अरमान दिया। माँ भी गोदी सूनी कर गई, बेटों का बलिदान दिया। मोल क्या उस जवानी का जो हंस के फांसी झूल गया। संगी साथी घर बार सब देश के खातिर भूल गया। घोड़ा हाथी होम गया हो, घोड़ा हाथी होम गया हो स्वतंत्रता के महायज्ञ में। उस वीरन का क्या कहूँ जो मौत को जाके चूम गया, जो मौत को जाके चूम गया। भगत सिंह राजगुरु अशफाक और आज़ाद हुए। भगत सिंह राजगुरु अशफाक और आज़ाद हुए। वीर सावरकर जैसे कितने जेल में रहकर खाक हुए। मोल कहो उस कुर्बानी का, मोल कहो उस कुर्बानी का, कैसे कर्ज उतारोगे। भारत माँ के इस आंचल को क्या तुम नया संवारोगे। तो महक उठे चारों दिशा, ऐसा फूल खिलाएंगे। स्वतंत्रता का मूल यही, अतुल्य भारत बनाएंगे, अतुल्य भारत बनाएंगे। जय हिंद जय भारत।
0: प्यारे बच्चों, कुछ नन्हे कराटे खिलाड़ी इस वक्त हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका?
2: ख्याति सांडे।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और किस स्कूल में पढ़ती हैं आप?
2: फिफ्थ क्लास होली क्रॉस पेंशन बाड़ा।
0: अच्छा, तो कराटे कब से सीख रही हैं आप?
2: 3 साल से।
0: कराटे खेलने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपने सोचा कि मैं कराटे खेलूँ?
2: मेरे मम्मी पापा ने बोला था।
0: अच्छा, तो कैसा लग रहा है 3 साल से आप जब ये कराटे का खेल खेल रही हैं?
2: अच्छा लग रहा है।
0: शुरू शुरू में कैसा लगा जब शुरुआत की?
2: थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था।
0: अच्छा, क्लास में जब आप जाती हैं तो कितने घंटे वहाँ देती हैं समय?
2: 3 घंटे।
0: अच्छा, लगातार 3 घंटे करनी होती है आपका प्रैक्टिस?
2: थोड़ा थोड़ा में ब्रेक मिलता रहता है।
0: अच्छा, तो अभी कौन सा बेल्ट मिला है अभी तक आपको?
2: ब्राउन थर्ड।
0: अच्छा, कराटे का जब आपने खेल शुरू किया है तो इसमें आत्मरक्षा के बारे में आपको बताते होंगे, तो क्या बताते हैं जो आपको कराटे के सर सिखाते हैं?
2: हमको क्या बोलते, फाइट करवाते हैं और सेल्फ डिफेंस।

0: मेंस करो।
1: और इसके फायदे बताते हैं, क्या फायदे हैं इसके, क्या बताते हैं?
0: खुद की रक्षा करना और अगर जो दुश्मन सामने आते हैं उनको मारना।
1: खुद की रक्षा तो करनी ही है, जो दूसरों के ऊपर कोई ऐसा करता है हमला तो उनकी रक्षा करनी है, उनका भी बचाव करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और नन्हे साथी से हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका?
2: आर्य अग्रवाल।
1: आप कब से कराटे सीख रहे हैं?
2: 2 महीनों से।
1: कैसा लगा आपको जब कराटे की क्लास में आप पहली बार गए?
2: मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगा।
1: लेकिन बाद में कैसा लगा?
2: बाद में डर नहीं लगा।
1: अब अच्छा लग रहा है?
2: हाँ।
1: कौन सा बेल्ट है ये आपने जो लगा रखा है?
2: ऑरेंज।
1: शुरुआत कौन से बेल्ट से होती है?
2: वाइट।
1: उसके बाद?
2: येल्लो।
1: फिर?
2: ऑरेंज।
1: और इसके बाद?
2: ग्रीन।
1: अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ब्लैक बेल्ट तक?
2: ब्लैक बेल्ट तक पहुँचना चाहता हूँ।
1: चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। आपका नाम क्या है?
0: अथर्व तिवारी।
1: अथर्व, आपको कौन सा बेल्ट मिला है?
0: ग्रीन।
1: तो इसके बाद कौन सा बेल्ट मिलेगा आपको?
0: ब्राउन।
1: आप ब्लैक बेल्ट तक पहुंचना चाहते हैं?
0: हाँ।
1: तो इसके लिए क्या करना होगा आपको?
0: प्रैक्टिस।
1: 3 घंटे तक क्या प्रैक्टिस करते हैं आप मैदान में?
0: काता की।
1: अच्छा, आपने कराटे का प्रशिक्षण क्यों शुरू किया, क्यों इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू किया?
0: मेरे मम्मी पापा ने बोला।
1: आपको भी इंटरेस्ट है इसमें?
0: हाँ।
1: चलिए ठीक है।

बच्चों, क्रम बच्चों के मुख से में आपने सुना कुमारी अर्षिता श्रीवास्तव, कुमारी अजुल साहू का कविता पाठ, और इसके साथ ही आपने सुना नन्हे कराते खिलाड़ियों से प्रकाश उदय जी की बातचीत। और अब मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। वो प्रेरक प्रसंग है महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ा, जो हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाएगा। और ये कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक दिन स्कूल में परीक्षा चल रही थी। अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने थे। महात्मा गांधी जी का बचपन था। एक शब्द की वर्तनी गलत लिख दी, यानी स्पेलिंग गलत हो गई। कक्षा में घूम रहे शिक्षक ने इशारे से कहा कि सामने जो छात्र बैठा है उसकी कॉपी देखकर सही उत्तर लिख लो, क्योंकि परीक्षा चल रही थी, उत्तर तो सही देना था। गांधी जी के लिए ये एक अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि नकल करके अगर सही अंक मिल भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, ये तो जीवन में काम आएगा ही नहीं और मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा। परीक्षा खत्म हुई, बाकी सभी बच्चों के उत्तर सही थे, लेकिन गांधी जी का एक उत्तर गलत रह गया। शिक्षक ने उन्हें समझाया, अगर वे नकल कर लेते तो पूरे अंक मिल जाते। तो गांधी जी ने विनम्रता से कहा, गलत अंक मिल जाना स्वीकार है, लेकिन झूठ और नकल करके सही अंक पाना स्वीकार नहीं। तो बच्चों, आपको पता है क्या हुआ? गांधी जी के शिक्षक गांधी जी से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम एक नेक बालक हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी असली योग्यता को पहचानने के लिए ही तुम्हें नकल करने के लिए कहा और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तो देखा बच्चों, एक विनम्रता, एक ईमानदारी से न केवल गांधी जी को उनके शिक्षक से प्रशंसा मिली, बल्कि वो जीवन में भी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति बन पाए। तो सीख ये भी है कि जीवन में सफलता अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ईमानदारी। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। तो अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो ज़िंदगी को खास बनाना पड़ेगा अपने प्रयासों से। और ये अगला गीत

तो बच्चों आज के किस्से में इतना ही। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सफल रहें, ये दुआ दीजिए आपके धीरेंद्र भैया को। इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

नन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसले। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे ही लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल संसार। प्रस्तुत करता है रमाशंकर।

श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कराटे की खिलाड़ी धारिणी ठाकुर से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन्होंने शनिवार सुबह खेले गए मुकाबले में केप वर्डे को 3-2 से हरा दिया। अब मंगलवार को उनका मुकाबला इजिप्ट से होगा। इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर बाहर कर दिया है। एक अन्य मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया। मियामी स्टेडियम में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 29वें मिनट में गोल दागा और अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम के बाद डर्लो डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल स्कोर कर केप वर्डे को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद एमिलियोनो मार्टिनेस ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में गोल करके एक बार फिर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई, लेकिन सिडनी लोपेज ने 13वें मिनट में गोल करके मैच को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। 111वें मिनट में केव वार्डे ने डिनेन से ऑन गोल हो गया। इसी गोल ने मैच का नतीजा तय कर दिया। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में रोजर फेडरर के सबसे ज्यादा मेन सिंगल मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी ने फ्रांस के आर्थर रिंडर कनेश को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपनी 105वीं जीत दर्ज की है। विंबलडन के इतिहास में अब सिर्फ मार्टिना नवरातिलोवा 120 जीत के साथ जोकोविच से आगे हैं। वहीं महिला वर्ग में आर्यना सबालेंका और नाओमी ओसाका चौथे दौर में आमने सामने होंगी। भारतीय बैडमिंटन ने जुलाई 2026 में नया स्कोरिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत गेम 21 की जगह 15 पॉइंट्स के होंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। नए नियमों का पहला इस्तेमाल 7 से 14 जुलाई तक एर्नाकुलम के रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाले ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में किया जाएगा। इसके बाद यह फॉर्मेट सभी जोनल चैंपियनशिप, घरेलू रैंकिंग टूर्नामेंट और नेशनल चैंपियनशिप में लागू होगा। इसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 तथा अंडर 19 सीनियर्स और मास्टर सभी एज ग्रुप शामिल होंगे। इटली के स्प्रिंटर लैमोंट मार्सेल जैकब्स ने 100 मीटर की रेस 9.67 सेकंड में पूरी की। 31 साल के जैकब्स ऑस्ट्रियन ओपन में बुधवार को अपने करियर की बेस्ट टाइमिंग हासिल की है। हालांकि उनकी टाइमिंग रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं हो सकी क्योंकि आइसेंस्टोर में रेस के दौरान हवा का बहाव तय सीमा से अधिक था। इसके बावजूद जैकब्स किसी भी परिस्थिति में उसेन बोल्ट के बाद दुनिया के

0: सबसे तेज धावक बन गए हैं। बोल्ट के नाम 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड और 9.63 सेकंड का विंड असिस्टेड समय दर्ज है। बोल्ट ने 2009 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ग्रैंड चेस टूर के जागरेब चरण में भारत के डी गुकेश नीदरलैंड्स के अनिश गिरो को हराकर संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। गुकेश के 7 अंक हैं, फ्रांस के अलीरेजा फिरोज 10 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। गुकेश के साथ विंसेंट कीमर, मैक्सिम लाग्रेव, बोल्दान डेनियर डीएक के भी 7 अंक हैं। आर प्रज्ञानंदा 6 अंकों के साथ संयुक्त 6 स्थान पर है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 से 27 अगस्त तक गोल और कोलंबो में खेली जाएगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। वर्तमान WTC अंक तालिका में भारत 5वें और श्रीलंका 6 नंबर पर है। भारत के आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका का टेस्ट के दौरा किया था, जहां उसने 3-0 से जीत दर्ज की थी। गतका खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी राजवीर सिंह छावड़ा का राष्ट्रीय टेक्निकल ऑफिशियल रेफरी के रूप में चयन हुआ है। यूनाइटेड कराटे एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में शिवा सारथी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में रितेश सारथी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। धमतरी शहर के क्रिकेट के तेज गेंदबाज नवदीप सामले ने प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। धमतरी जिला क्रिकेट संघ की अंडर-23 टीम के खिलाड़ी नवदीप का चयन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के खिलाड़ियों के कैंप के लिए हुआ है। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोता, आइए चलते हैं भेंटवार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की कराटे की खिलाड़ी धारणी ठाकुर से। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कराटे की खिलाड़ी धारणी ठाकुर से। धारणी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो धारणी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कराटे के खेल से कब से जुड़ी हैं।
1: मैं बचपन से, मेरे पापा भी पहले कराटे के खिलाड़ी थे, अब वह कोच है। पापा को देख के मतलब मेरा भी मन हुआ कि मैं भी खेलूं। फिर पापा ने मेरे को पूरा ही घर में ही ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, पूरा सीखने के बाद सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, इसलिए कारण मुझे वह इंडोर स्टेडियम के क्लास में भेजे सर्टिफिकेट के लिए। उसके पहले ही मेरा पूरा कोर्स हो चुका था। फिर मैंने वहाँ से चालू किया कराटे। फिर मैं ब्लैक बेल्ट हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लास खोला, वो है प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 1 में, सर्वोदय स्कूल में।
0: तो इस तरह, चूँकि आपके पिताजी भी कराटे के खिलाड़ी थे, कोच हैं, तो उन्हें देखकर आपको कराटे की ओर आपका रुझान हुआ और आप कराटे खेलना शुरू की। तो धारणी, अभी आप कॉलेज में हैं, तो स्कूल में जब थी तो उस समय कराटे को आपने स्कूल में कैसे खेलना शुरू किया, और स्कूल होते हुए भी आप कराटे में कैसे सक्रिय रहती थी?
1: मैं 6th क्लास से चालू की कराटे खेलना। मैं सुबह प्रैक्टिस में जाती थी, फिर वहाँ से आने के बाद मेरा 11 से 5 स्कूल रहता था। फिर मैं वहाँ से आने के बाद मैं फिर कराटे क्लास जाती थी। फिर दोनों को मैनेज करके मैं चलती थी। और फिर उसके बाद पढ़ाई और दोनों को ही समय देना ज़रूरी था, मैं दोनों को ही समय अच्छे से देती थी।
0: जी जी जी। तो धारणी, आपने अभी हाल ही में कौन से इवेंट में भाग लिया और कौन सा मेडल आपने जीता है?
1: मैं अभी हाल ही में स्टेट खेली थी, जहां मैं एक गोल्ड और एक सिल्वर जीती थी। अभी नेशनल के लिए अभी केरल अगस्त में जाने वाले हैं।
0: जी, तो आपने जो स्टेट खेला है, कौन सी प्रतियोगिता थी, वहां आपको जाने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, कैसे चयन हुआ, और वहां कौन कौन सी टीमें और जिनके साथ आपको खेलने का अवसर प्राप्त हुआ?
1: वो हुआ था धमतरी में गए थे हम। वहां मेरा कराटे में 2 इवेंट होते हैं, काता और एक फाइट। तो मेरा फाइट में सिल्वर लगा था और काता में गोल्ड लगा था
0: जी।
1: और वहाँ मतलब दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव सभी जगह के खिलाड़ी आए थे
0: जी। अभी जो स्टेट आपने खेला है, इसके पहले कुछ नेशनल भी खेले होंगे?
1: हाँ, मैं 6 नेशनल।
0: हमें उसके बारे में बताइए कि वो नेशनल आपने कहाँ कहाँ खेला और उन प्रतियोगिताओं में आपने कौन कौन से पदक जीते हैं?
1: मैं 6 नेशनल खेल चुकी हूँ। एक MP जबलपुर में, प्रयागराज और दिल्ली और केरल। दिल्ली 3 और केरल 3 से 4 हो गया है। और उसमें एक, एक

0: गोल्ड है और सिल्वर ब्रॉन्ज है बहुत सारे।
1: अच्छा, तो जो आपका मैच पहली बार जिस नेशनल को आप खेलने गई हों उसके बारे में बताएं कि वो पहला नेशनल आपने कहाँ खेला और उसमें आपने कौन सा पदक जीता है।
0: मैं पहला नेशनल खेलने गई थी एमपी जबलपुर, जहाँ मेरा एक मेडल लगा था, वो था ब्रॉन्ज मेडल, काता में लगा था।
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैं वहाँ खेलने के बाद मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में एक टीम का आता हुआ था, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लगा था।
1: तो धारणी, हम बात कर रहे हैं आपके कराटे के बारे में। तो आपने जैसे कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि आपके पिताजी भी कराटे के खिलाड़ी रहे हैं, कोच रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए कि उनसे आपको प्रेरणा जो मिली है वो कितना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है।
0: मेरे पापा ही मतलब मेरे को पूरे कराटे का ट्रेनिंग करा है मेरे को, मतलब वहाँ मैं जब क्लास ज्वाइन भी नहीं की थी तब से मेरे को मतलब पूरा ट्रेनिंग कर चुके थे पापा मेरे को, और जितना भी प्रैक्टिस है सब पापा ही करा है मेरे को।
1: जी, तो आपने बताए थे कुछ काता, जिसमें
0: हाँ
1: जो आप काता के इवेंट में आपने प्राइस जीता है, मेडल जीता है, तो आप कराटे के बारे में बताएं कि ये जो इसमें कितने इवेंट होते हैं, जैसे काता और जिस तरह के जो अलग अलग होते हैं उसके बारे में हमें बताएं।
0: कराटे में दो इवेंट होते हैं, काता और फाइट। काता होता है जिसमें हमको जैसे कि करके दिखाना रहता है सभी स्टेप जो जो जिस प्रकार से रहते हैं उसको, और फाइट रहता है जिसमें दो दो जन मतलब लड़ते हैं उसमें वैसा, और फाइट में पॉइंट वगैरह रहते हैं। और फाइट में जैसे कि सर पे जैसे कि किक से मारने से 3 पॉइंट मिलते हैं, फिर पेट या पीठ में मारने से 2 पॉइंट, और पंच चेहरे में लगने से या पेट में लगने से 1 पॉइंट मिलते हैं, और एक गिरा के मारने से भी 3 पॉइंट मिलते हैं।
1: जी, तो ये तो जो सारे इवेंट होते हैं, तो उसमें आप बॉयज़ और गर्ल्स के जो अलग अलग इवेंट होते हैं,
0: हाँ
1: मिक्स नहीं होते हैं
0: नहीं,
1: जी, तो इसमें जो गर्ल्स के जो इवेंट होते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं खेल में जीतने हारने के।
0: उसमें मतलब किसी को एकदम हानि मतलब हानि नहीं पहुंचाना रहता, टच टू टच खेलना रहता है, और जैसे कि लड़कियां हैं तो टच ही टच खेलेगी, और बॉयस है तो भी टच ही टच खेलेंगे, ऐसा रहता है।
1: जी। तो धारणी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कराटे का खेल होता है आत्मरक्षा का खेल होता है,
0: हाँ
1: तो अभी जो कराटे के खेल आप खेलती हैं तो
0: हाँ
1: इसे कितना मददगार समझती हैं एक लड़की के लिए, कि ये कराटे का खेल जो है एक लड़की के लिए
0: हाँ
1: कितना ज़रूरी होता है।
0: वो मतलब अगर वो किसी जैसे कि कोई उसे परेशान कर रहा है तो वो अकेले 5 से 6 लोग को अकेले मार सकती है, और अपने मतलब अपनी रक्षा वो खुद कर सकती है कराटे के थ्रू।
1: तो अभी आप जैसे खेल रही हैं, तो अभी हाल ही में कोई प्रतियोगिता यदि आगे होने वाली हो जहां आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा, वो प्रतियोगिता कब होने वाली है।
0: वो अभी होने वाला है सितंबर में होने वाला है केरल में, वहाँ नेशनल है, ओपन नेशनल।
1: अच्छा, जी। तो आपने इसमें, जैसा कि आपने बताया कि कई नेशनल भी खेले हैं, तो
0: हाँ
1: किन नेशनल में आपने पहला गोल्ड जीता था।
0: मैं जीती थी केरल में ही।
1: जी। तो जब आप कराटे का खेल खेलते हैं तो कराटे के खेल के लिए सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी को जो
0: हाँ
1: क्या आवश्यकता होती है जीतने के लिए, यदि आप एक आप के कराटे के खिलाड़ी हैं
0: हाँ
1: और आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी खड़ा है, तो आप उससे कैसे जीत सकती हैं।
0: एक मतलब अगर जब मैं अच्छे से जब मेहनत की हूँ अपना पूरा बेस्ट दी हूँ तो फिर उससे भी जीता जा सकता है, और जैसे सामने वाला जब एक मैच होता है तब सामने वाले के खेलने के तरीके से उसको कैसा वो कर रहा है उसके थ्रू हम मैच जीत सकते हैं।
1: तो धारणी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र के ही जो बच्चे हैं जो अभी
0: हाँ
1: पढ़ रहे हैं और जो स्कूली शिक्षा में हो सकते हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आप भी कर रही हैं, तो आपकी पढ़ाई के साथ आप अपने खेल के, जैसे आप कराटे खेलती हैं, तो खेलों को कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है कि जिससे आपकी खेल भी सुचारू चलता रहे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे।
0: दोनों को समान एक समय देके दोनों को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई के टाइम जिस टाइम एग्ज़ाम या पढ़ाई या मतलब कंटिन्यू दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छे से करना चाहिए।
1: धारणी, हम जब देखते हैं कराटे की बात करते हैं तो उसमें जो है बेल्ट होते हैं, उसमें बेल्ट प्रदान किए जाते हैं, जैसे ब्लैक बेल्ट होते हैं, वाइट बेल्ट होते हैं, तो ये कब प्रदान किए जाते हैं।
0: जैसे कि शुरू में जैसे स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे जूनियर रहता है वाइट बेल्ट, उसके बाद येलो बेल्ट मतलब जूनियर सीनियर, फिर ऑरेंज जूनियर सीनियर, फिर ग्रीन जूनियर सीनियर, और ब्राउन रहते हैं 3, उसके बाद आता है ब्लैक, फिर ब्लैक होता है 10, फिर जो 10 के बाद जो और एक मिलता है वो है रेड, वो सबसे सीनियर बेल्ट होता है।
1: जी
0: तो अभी मैं 4th डन बेल्ट

0: क्रिकेट में हूँ ब्लैक बेल्ट में, और मैं अभी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की एक जज हूँ बीच।
1: तो आप जज हैं, तो जज एक कराटे की जज होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
0: उसमें मतलब पूरा रूल्स और सामने वाले के करने का, मतलब जिस हिसाब से वो करता है वो सब वो सही कर रहा है या नहीं, वो जो स्टैंस होते हैं वो सब सही है कि नहीं, वो सब देखे, और मेन रूल। और जज के लिए WKF का पूरा रूल्स वगैरह पढ़ना पड़ता है।
1: तो ये WKF क्या है?
0: वर्ल्ड कराटे फेडरेशन।
1: जी जी जी। तो जब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के द्वारा जज की मान्यता दी जाती है।
0: हाँ। और जैसे मेरे को जो जज बी का जो सर्टिफिकेट ओलंपिक की जो वो है रेफर, मतलब जो जज है रेफरी है वो साइन अख्तर, उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया सर्टिफिकेट।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे धारणी ठाकुर से, जिन्होंने हाल ही में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये कराटे की खिलाड़ी हैं। तो धारणी, कार्यक्रम में आप आई और हमारे श्रोताओं से जो अपनी बातें और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: खेल संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थी रमा शंकर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 हुए हैं, 9:15 हुए हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत का पहला गीत वारिस फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीत वर्मा मलिक का, संगीत है उत्तम जगदीश का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म है प्यासा सावन।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: थोड़ी सी बेवफाई, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत पथ किया है।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: थोड़ी सी बेवफाई। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए चांदनी फिल्म का गाना, आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है शिव हरि का।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पंचराम चारण और साथी। इनके स्वर में सुनिए ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं पंचराम चारण और साथी, इनके स्वर में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: लोक संगीत अभी आप सुन रही थी। कलाकार थे पंचराम चरण और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत भाड़म में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।

मृतकों में एक महिला और उसके दो पुत्र शामिल हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। चित्रपट संगीत।

गैंगस्टर फिल्म का ये गीत था अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में, शब्द रचना नीलेश मिश्रा की, गीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला गीत सनमपुरी और निधि मोहन की आवाजों में, गीत लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत विशाल शेखर का है, फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

केके और साथियों की आवाज़ों में ये था निलेश मिश्रा का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का था, फिल्म थी वो लम्हे। और आइए अब सुने छिछोरे फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।

छिछोरे फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की थी, संगीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला गीत मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है मीत ब्रदर्स ने। फिल्म है बागी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाजों में मनोज यादव का लिखा गीत। संगीत चिरंतन भट्ट का है, फिल्म है गब्बर इज बैक।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक रात। मराठी के यशस्वी नाटककार श्री विजय तेंदुलकर के मराठी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं श्री अमन शिंदे, निर्देशक चिरंजीत।

0: बाबूजी, बाबूजी।
1: कौन? कौन है वहां?
2: क्या चाहिए?
0: बाबूजी।
2: चल भाग जा यहाँ से।
0: बाबूजी, बाबूजी, आपको रुकना ही होगा।
1: क्यों?
0: इंसानियत के लिए।
2: इंसानियत? कैसी इंसानियत?
0: मैं एक औरत हूँ, बेसहारा। आपसे विनती करती हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए।
2: बेसहारा स्त्री इस तरह विनती करती है?
0: मैं सिर्फ बेसहारा नहीं हूँ, मेरी मेरी आबरू खतरे में है।
2: आबरू खतरे में है? अरे, परसों पहले जिस खतरे से तेरा परिचय हो चुका होगा, उसके लिए आज तमाशा क्यों? कोठे वाली की कीमत ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए।
0: रुकिए ना, कहाँ जाते हैं?
1: मैं एक शरीफ आदमी हूँ।
0: शरीफ आदमी ऐसी गलियों में घूमते हैं?
2: और इज्जत खतरे में है जानकर बेसहारा अबलाएं क्या ऐसे घने अंधकार में छिपकर बैठती हैं?
0: वक्त की बात है।
2: लेकिन ये वो वक्त नहीं है।
0: नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं आपको।
1: क्या करो?
0: क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं आपका?
2: तो फिर धमका क्यों रही हो?
0: आप चले जाएंगे ना इस डर से, मुझे यूँ छोड़कर मत जाइए।
2: तू है कौन?
0: मैं कोई नहीं, एक औरत, आपकी बहन जैसी।
2: चुप!
0: आपकी
2: पवित्र रिश्तों को बदनाम मत करो।
0: मैं भी तो पवित्र हूँ।
2: हाँ, तो फिर ये गली भी पवित्र है।
0: क्यों नहीं, इसने किसका क्या बिगाड़ा है? हाँ, कभी कभी यहाँ पर भी गंदे खिलौने का।
2: काफी जानती हो इस गली के बारे में?
0: हाँ, इसीलिए यहाँ से जाना चाहती हूँ, जल्दी, अभी।
2: सुनो, इस गली के दोनों सिरे मेन रोड से मिलते हैं, जा चली जा।
0: कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? क्या एक असहाय अबला को ऐसी बस्ती में छोड़कर आप जा सकते हैं?
2: बड़ी आसानी से।
0: आप भी और मर्दों जैसे ही हैं, पत्थर दिल, निर्दयी।
2: कितने मर्द देखे हैं आज तक?
0: बहुत, सभी निर्दयी और क्रूर पशु।
2: पशु?
0: हाँ हाँ, पशु सभी एक जैसे। मेरा बाप शराब के नशे में हर रात मेरी माँ को पीटता था। मैंने देखा है बचपन में, मेरा खून जम जाता था। माँ चिल्लाती रहती, वो मारता रहता।
2: बाप? कितने बाप हैं तेरे?
0: शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? आप मुझे उन औरतों जैसी समझ रहे हैं? क्यों? सुनिए, सुनिए, सुनिए, मैं सच कहती हूँ, मैं इज्जतदार।

0: शहर की लड़की हूँ, शरणपुर में रहती हूँ। सुजाता है मेरा नाम, सुजाता गेवालिया।
1: झूठ, गांव से आई हो शायद, किसी ने फंसाया होगा या खुद फंसा।
2: झूठ है ये सब।
1: फिर यहाँ कैसे आई?
2: तकदीर ले आई।
1: हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा?
2: क्यों बार बार मुझे ताने दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? और कितनी गंदी बातें, कितने भद्दे आरोप।
1: काफी अच्छा अभिनय करती हो। बहुत देर हो गई है, ये लो पैसे लो, 2 रुपए हैं। अरे और एक लो, 3 हुए।
2: तुम मुझे ऐसी औरत समझते हो? तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे।
1: ऐसी गलियों में कोई किसी को यूं ही रुपया नहीं देता, बदले में कुछ। खैर ठीक है, तो फिर मैं जाऊं?
2: लेकिन
1: अगर काफी पैसे कमा कर ना ले गई तो क्या तेरे लोग तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, मारेंगे या खाना ना देंगे? हाँ
2: देखिए, मैं सच कहती हूँ, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। आज तक किसी मर्द के सामने इतनी ढीठ नहीं हुई थी, आपके सामने हुई हूँ। असहाय हूँ ना, जरा इधर रोशनी में आइए। देखिए, कहिए क्या मैं आपको वेश्या लगती हूँ, कोठे वाली? क्या मैं उन औरतों जैसी हूँ?
1: मेरा अंदाज गलत था, 2-3 नहीं, 7-8 रुपए कोई भी देगा तेरे लिए।
2: ओ, अब भी तुम्हें विश्वास नहीं होता?
1: कैसे होगा, ये अंधेरी आधी रात, ये बदनाम मोहल्ला और अकेली तू।
2: आ रहा है तो वो सिपाही, वो
1: आने दो।
2: नहीं नहीं, वो मुझे पकड़ेगा, थाने ले जाएगा।
1: कुलीन स्त्री को?
2: मुझे छुपाइए, मुझे कहीं छुपाइए।
1: मैं कहाँ छुपाऊँ?
2: ओ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? वो आ रहा है, देखिए वो।
1: कुलीन स्त्री को भय कैसे?
2: नहीं नहीं, वो मुझे
1: जानता है,
2: वो मुझे वेश्या समझता है। अभी मिला था, मुझे थाने ले जाएगा।
1: नहीं,
2: ले जाएगा, छुपिए ना कहीं पर।
1: मैं?
2: हाँ, आप पर भी शक होगा उसे, आइए छुपिए।
1: मुझे उसका कोई भय नहीं।
2: आप आइए।
1: अरे छोड़ो मेरा हाथ।
2: मेरी खातिर मेरे लिए रुक जाओ ना, मेरे लिए छुप जाइए। आइए आइए, उधर अंधेरा।
3: बत्तियां बुझा लो खबरदार, खबरदार बत्तियां बुझा लो, खबरदार बत्तियां बुझा लो।
2: गया।
1: सुनो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया गांव से?
2: कौन आता साथ में? बाप पागल है, बड़ा भाई भी चल बसा, माँ बीमार है, जान पहचान वाला दूसरा कोई नहीं है।
1: लेकिन आई क्यों?
2: नौकरी के लिए। सारे घर का भार मुझ पर ही तो है।
1: शरणपुर में नौकरी नहीं मिलती?
2: मिलती तो यहाँ क्यों आती?
1: रहती कहाँ?
2: किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ।
1: शायद वो भी इसी गली में रहते होंगे।
2: यहाँ रहते तो इस तरह रास्ते पर खड़ी ना मिलती।
1: हाँ, ये भी ठीक है। कहाँ रहते हैं फिर?
2: उस्मानपुरा में।
1: अच्छा अच्छा, उस्मानपुरा। चल पता दे उनका, अभी पहुँचा देता हूँ। 12 बज चुके हैं, लेकिन टैक्सी मिल जाएगी। बोल पता क्या है? अरे टैक्सी के पैसे मैं दूंगा। क्यों, पते के नाम पर चुप क्यों हो गई? झूठ बोल रही थी ना?
2: नहीं नहीं, ये बात नहीं, पता याद नहीं आ रहा।
1: वाह, कितना सच बोलती हो, अधूरा पता याद करके ही इतने बड़े शहर में आई हो?
2: नहीं नहीं, वो लिखा हुआ था ना उस सामान के साथ, वो बैग में शायद।
1: शायद? अखिल तो बैग में नहीं रखी थी?
2: ओ, क्यों तंग करते हो मुझे, मैं रो पड़ूंगी।
1: जरूर रो, आंसू पहुंचने कोई नहीं आएगा, ना मुझ पर कोई असर होगा, समझी?
2: ओ दुष्ट,
1: शायद मूर्ख भी। अच्छा, कौन सी नौकरी के लिए आई थी?
2: मुझे क्या पता यहाँ कौन सी नौकरी मिलती है, कोई ना कोई करनी होगी, इसीलिए आई। घर में माँ बीमार है, इलाज के लिए पास में कौड़ी तक

0: नहीं, जिनके यहां ठहरना था उनका पूरा पता मालूम नहीं। पास न पैसे न सामान, ऐसी हालत में शाम से दर दर भटक रही हूं। और अरे आप मिल गए। पिताजी की बड़ी लाडली थी मैं। वो कहते रामू की अपेक्षा बिटिया ही घर का नाम रोशन करेगी।
1: रामू?
0: रामू मेरा बड़ा भाई था, अभी मरा निमोनिया से, इंजेक्शन नहीं लगवा सके, कहां से लाते इतने पैसे। गरीबों को जीने का भी हक नहीं होता इस दुनिया में। आप कुछ कहते क्यों नहीं?
1: हाँ, तेरे स्वर्गवासी काल्पनिक भाई की स्मृति में एक मिनट मौन धारण कर रहा हूं।
0: जाओ यहां से, जाओ। जो होगा मेरा मैं देख लूंगी।
1: फिर वापस तो नहीं बुलाओगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे आसरा मांगने की बजाय दूसरा कोई भी भयंकर खतरा उठाना अच्छा है। नीच आदमी की मौत भी तुम्हारे लिए मजाक है?
1: मेरे लिए आदमी अपने आप में मजाक है। मेरे पीछे आने से कोई फायदा नहीं, समझ गई होगी। धंधे के लिए किसी और को देखो।
0: दुष्ट, तुमसे बुरा और कौन मिलेगा मुझे? इस भयंकर रात में तुमसे अधिक घिनौना कौन हो सकता है?
1: तुमने मेरी जो ये प्रशंसा की है उसे मैं याद रखूंगा। अच्छा सुनो, इतनी निंदा करने के बावजूद मुझसे डर नहीं लगता तुझे? प्रतिशोधवश मैंने कुछ किया तो?
0: करोगे, वो भी करोगे?
1: इतनी कुलीन हो तुम?
0: खबरदार कुछ कहा तो। मैंने तुमसे जाने को कहा है, जाओ तुम।
1: वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस गली की मालकिन हो।
0: कम से कम अपनी मालकिन तो जरूर हूं। बिना कारण किसी के गंदे और झूठे आरोप सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं कि मैं निष्कलंक हूं, अच्छे चाल चलन की हूं, तो दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ।
1: घबरा गई?
0: नहीं, वो उसे वो।
1: चल मेरे साथ।
0: कहाँ?
1: मेरे घर और कहाँ, मेरा एक घर भी है।
0: लेकिन
1: क्या फिर गालियां देनी है?
0: नहीं, लेकिन मैं मुझे
1: सोच मत, मैं सब कुछ सोच सकता हूँ, सोचा भी है, विश्वास रख मुझ पर। लेकिन सिर्फ एक रात के लिए आसरा दूंगा मैं, आज की ही रात, समझी? यहां रास्ते में, घर पर, कहीं भी मुझसे बेमतलब सवाल मत पूछना। मुझे क्रोध आता है प्रश्नों पर, जितना समझ सको समझ लो। उसके परे जाकर और कुछ जानने की चेष्टा की तो महंगी पड़ेगी, आधी रात में ही उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा।
0: ठीक है, नहीं बोलूंगी।
1: चल ला हाथ। ठीक है, तुम औरतें पुरुष का हाथ पकड़ने के बजाय उसके पैर पकड़ने की ज्यादा आदी होती।

0: ठहर, बत्ती जलाता हूं।
1: हाँ, यह है मेरा घर, यहीं पर रहता हूं। कभी कभी मैं इसे बांबी कहता हूं। बांबी जानती हो ना किसे कहते हैं? सांप का घर। तू भी इसे बांबी कह सकती है। देखा कितना एकांत और शांत है मेरा घर। बाहर की हवा इसे छूती तक नहीं। वैसे बाहरी दुनिया में रखा भी क्या है। अरे यूं दरवाजे पर क्यों खड़ी है? आ अंदर आ, इसी बांबी में तुझे रात गुजारनी है मेरे साथ। और यह रहा दूसरा कमरा। तुम आज जहां सोगी इस खाट पर, मैं हमेशा यहीं सोता। आज बाहर सोऊंगा और उधर वो रसोई है,

0: चाय कभी खाना नहीं बनता, सिर्फ कॉफी बनती है, इसलिए मैं उसे कॉफी हाउस कहता हूँ। कॉफी पीती हो या नहीं? भूख लगी है?
1: हाँ।
0: उधर चारपाई के नीचे टिन में दो एक डबल रोटी के स्लाइस पड़े होंगे, निकाल कर खा लो, मैं कॉफी बनाता हूँ।
1: तुम यहाँ अकेले रहते हो?
0: आदमियों से ऊब गया, इसलिए अकेला रहता हूँ, सुखी हूँ, I'm happy।
1: मुझे विश्वास नहीं होता।
0: तू मूर्ख है, मैंने पहले भी कहा था, अकल कितनी है तेरी, क्या कीमत है उसकी? मैं सचमुच सुखी हूँ, तेरे आने से आज मेरे इस एकांत सुख में भी गड़बड़ी पैदा हो गई। मुझे जूते उतारने पड़े, कपड़े बदलने पड़े, कॉफी तैयार करनी पड़ी।
1: तो फिर मैं जाती हूँ।
0: क्या मतलब?
1: तुम्हारे सुख में दखल देने की इच्छा नहीं मेरी।
0: ढोंग करना खूब जानती हो।
1: क्या ढोंग किया मैंने?
0: जाने की बात चुक रही हो।
1: क्यों रहूं यहाँ पर? मेरे आने से तुम्हारे सुख में कमी जो आ रही है।
0: ओह डैमेट, कौन कहता है? मेरा हर शब्द कुछ अलग अर्थ रखता है, इसीलिए मैं कम बोलता हूँ। किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी मेरी समझ में नहीं आता। ले कॉफी ले, ले मूर्ख लड़की।
1: बार बार मुझे मूर्ख क्यों कहते हो?
0: तो फिर क्या हो तुम? ठीक है, नहीं कहूंगा। इस वक्त सियानी मालूम होती हो। रात में सभी औरतें समझदार बन जाती हैं शायद। कैसी है कॉफी?
1: अच्छी है। किससे सीखा कॉफी बनाना?
0: फिर सवाल पूछा, मैंने क्या कहा था?
1: ओह अब नहीं पूछूंगी।
0: ठीक है, मुझे सवाल पसंद नहीं।
1: जगह अच्छी सजाई है।
0: थैंक्स, बकवास बंद करो और सो जा, डेढ़ बज रहा है।
1: नींद नहीं आती।
0: कैसे आएगी, बिजनेस का यही समय होता है ना। कुछ कहती क्यों नहीं?
1: क्या फायदा है कहने का? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कितनी देर तक अपना सर फोड़ो? मुझे नींद आ रही है, सुबह उठकर चली जाऊंगी।
0: ऊब गई हो मुझसे?
1: तुमसे नहीं, तुम्हारी जबान से। लगता है विधाता ने जबान की जगह तुम्हारे मुंह में पैनी छुरी रख दी है। दूसरे की भावनाओं की जरा भी परवाह किए बिना बोलते जा रहे हो मशीन की तरह। सच है ना?
0: फिर सवाल?
1: गलती हुई, माफ कीजिए।
0: ये सवाल क्यों पूछा तूने?
1: यूं ही?
0: और कुछ नहीं था मन?
1: नहीं तो?
0: नहीं, मैं रहस्यमय लगता हूं ना?
1: हाँ लगते तो हो।
0: मेरा रहस्य जानना नहीं चाहती? चल जा, सो जा। नहीं नहीं, बैठ बैठ यहां पर। सुन मैं क्या कहता हूं। तू सुनाने के लायक तो नहीं, लेकिन कहना होगा, मन की शांति के लिए कहना होगा। तुझे सुनाना है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे कहना है इसलिए कहूंगा। आदमी बुरा क्यों बनता है? मैंने उसे जितना प्यार किया था उतना ही उसने भी किया, शायद ना भी किया हो। एक दिन उसने कहा,
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। हम शादी करेंगे।
0: मैं भी चाहता था, लेकिन जिंदगी डामाडोल थी, स्थिरता नहीं थी। जब तक स्थिरता प्राप्त न हो,

0: मैं शादी करना नहीं चाहता था। मेरे अरमान, मेरी महत्वाकांक्षाएं सारी अधूरी रह जाती। मैं कुछ बनना चाहता था। वो इन बातों को ना समझ सकी। मैंने काफी समझाया, मैं विदेश जाऊंगा, वहां से लौटकर हम विवाह करेंगे, तब तक मैं कुछ कमा लूंगा। वो मानती नहीं थी, अनिश्चित अवस्था में ही शादी करना चाहती थी। एक बार सोचा, कर लूं, दुनियादारी की और बातों से उसकी इच्छा अधिक महत्वपूर्ण है। पर मन को उसकी बात जची नहीं। खैर, इंग्लैंड जाने के पहले मैंने उसे लिखा था, अपने भावी संसार के हित के लिए ही मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। मैं वापिस आऊंगा अकेला, केवल तुम्हारा बनकर। बदलूंगा नहीं, मेरे लिए रुकना। तुम मेरे जिस रूप से प्यार करती हो, उसी रूप को लेकर आऊंगा। और भी बहुत कुछ लिखा था। मैं वापिस आया तब मैं वैसा ही था, पहले जैसा, और उसका विवाह हो चुका था। सिर्फ विवाह ही नहीं हुआ था उसका, वो सुखी भी थी। सुखी थी, बहुत बहुत खुश थी, बच्चे की मां बनने वाली थी। शायद मुझसे बदला लेना था, इसलिए मुझे रिसीव करने आई थी। बस जा, सो जा तू, जा।
1: लेकिन
0: मैंने तुझे जाने के लिए कहा ना, जा यहां से, जा, बुझा दे बत्ती, जा, सो जा। कौन? ओह, तुम?
1: हाँ, अब मैं जा रही हूं।
0: अरे, क्या बगैर चाय कॉफी पिए ही जाओगी? अतिथि सत्कार का इस तरह का अंत शोभा नहीं देता। चलो, कॉफी बना देता हूं। मेहमान के बारे में अत्यंत दक्ष आदमी हूं मैं।
1: नहीं,
0: मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अपमानित कर रही हो?
1: सचमुच मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे देर हो रही है।
0: अरे, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं।
1: हाँ, लेकिन मुझे वापस जाना है चकले में।
0: ओह, मेरी ही बातें मुझे सुना रही हो? क्यों याद दिलाती हो वो गंदी घिनौनी बातें?
1: मैं सच कहती हूं, मुझे कोठे पर जाना ही होगा, बहुत देर हो गई। वो मारेंगे मुझे, पीटेंगे।
0: I must apologize for the... देखो, मैंने गलत समझा तुम्हें। मेरी आंखों पर असभ्यता का, अनैतिकता का पर्दा चढ़ा हुआ था कल।
1: क्या किया मैंने?
0: सुचाता, तुम एक कुलीन, सुशील और संभ्रांत घर की लड़की हो।
1: नहीं,
0: समझदार हो, बहुत उदार अंतःकरण है तुम्हारा, अपार सहानुभूति से भरा हुआ, तुम्हारा पवित्र।
1: मैं अपवित्र हूं, वेश्या हूं मैं।
0: सुचाता, फिर शब्द का उच्चारण मत करना।
1: विश्वास नहीं होता है तो जाने दीजिए।
0: रात नींद कैसी आई?
1: अच्छी।
0: घर जैसी?
1: घर पर नींद कहां बिजनेस के समय।
0: नहीं दूंगा तुझे कॉफी, जा यहां से, तू फौरन चली जा यहां से। नोच नोच कर मेरे टुकड़े करना चाहती है, बार बार टंक मार रही है, रहा नहीं जाता तुझसे। मेरे अपराध को क्षमा कर देने वाला दिल नहीं है तुम्हारे पास, बार बार कल रात की याद दिला रही हो। मैं पागल हो जाता हूं रात में पागल हो जाता हूं। जो जबान पर आता है बोल जाता हूं, लेकिन दिन में ठीक रहता हूं मैं, इंसान जैसा।
1: मैं सच कहती हूं, मैंने आपको कोई, मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं आप, दुख होता है मुझे। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे ओहदेदार, अमीर और खानदानी आदमी को कष्ट दूं, इतना मेरा अधिकार भी नहीं।

0: मेरा संबंध बहुत निचले दर्जे के लोगों से है। गलती से आपसे मुलाकात हो गई, आपका साथ मिला। थोड़ी देर के लिए इस मकान में रात भर आसरा दिया मुझे। आपके उपकार, अनंत उपकार कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी नहीं भूलूंगी। जाती हूं, मुझे जाना ही होगा। देखिए, अपने को दुखी मत करिए। आप एकदम जैसे मुझे समझने लग गए वैसी कुलीन निष्पाप मैं नहीं हूं। सौगंध खाती हूं, मैं सामान्य वेश्या हूं।
1: नहीं, नहीं।
0: धंधे वाली वेश्या। कल रात आपको फंसाने का प्रयत्न कर रही थी। हमारे धंधे का ही एक अंग है वो, करना ही पड़ता है। सौगंध शरीर की नस नस में रहती है हमारे। तुम्हें तुम्हें कल रात विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहती हूं, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सच कहती हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ। तो जाऊं मैं?
1: तुम्हारी मर्जी।
0: कॉफी नहीं पिलाओगी?
1: नहीं, अब कुछ करने की इच्छा नहीं मेरी।
0: तो फिर जाती हूं।
1: जाते जाते रुक क्यों गई?
0: तुम्हारी आंखों में आंसू।
1: नहीं नहीं, आंख में कुछ गिर गया शायद।
0: मेरे पांव भी नहीं उठते।
1: चली जा तू।
0: जाती हूं।
1: जा, चली जा, वापिस मत आना। आने को जी चाहे तो भी मत आना, हमेशा के लिए चली जा। भला मुझे तुम्हें रोकने का क्या हक है? मैं पूरा हूं स्वार्थी, पापी, नीच, असभ्य हूं, और तुम सभी औरतें क्रूर हो, क्रूर। लेकिन लेकिन सुचाता, क्या फिर कभी?
0: फिर कभी नहीं मिलेंगे हम। भेंट होगी तो दूसरे वातावरण में, तब मैं तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं।
1: तो फिर रात भर यहाँ रही क्यों? मुझे मिली क्यों? यहाँ रही क्यों? क्यों?
0: गलती हुई, थोड़ा बहुत बिजनेस होगा ऐसी आशा थी।
1: सुचाता,
0: मुझे नाम से बार बार मत पुकारी। सहूं हरे हो जाते हैं, खून तो सारा कब का बह चुका है, सिर्फ सिर्फ शरीर रहा है। इसे वैसा ही रहने दीजिए। अच्छा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नाटक रात। लेखक थे विजय तेंदुलकर, हिंदी रूपांतरकार श्री अमन शिंदे और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश

0: पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है अनुभा अग्रवाल।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम फोन इन फरमाइश को लेकर आज मैं हूं अनुभा अग्रवाल आपके साथ। श्रोताओं, मौसम खुशनुमा हो गया है, ऐसे में आपकी पसंद के गीतों और आपके साथ बातें करने का हमें मौका मिलता है इस प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हुए सुनते हैं कि हमारे किस श्रोता का फोन हमें सबसे पहले मिला है। हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएंगे अपना?
1: जी मैं रंजीता जांगड़े, सिरवा बांधा बेमी तरफ से।
0: रंजीता जांगड़े जी का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं, कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और आप आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जी सुनते हैं।
0: कब से सुन रही हैं?
1: जी मुझे तो 10-12 साल हो गए हैं, जब शादी हुई है तब से जुड़े हैं।
0: अच्छा, और आज आपका फोन लग गया है ना?
1: जी बहुत खुशी हुई, फोन लगा।
0: हाँ, तो क्या करती हैं आप रंजीता जी?
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चे हैं उनको संभालती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे बड़ा काम होता है।
1: जी
0: तो आज आपका फोन लगा है, आप रेडियो सुनने का भी शौक रखती हैं और उसके अलावा अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे करती हैं आप?
1: जी जैसे कि मैं खाली समय में, मुझे सिलाई आता है तो सिलाई करती हूँ, सिलाई बुनाई का काम आता है मुझे।
0: हाँ?
1: तो वो सब करती हूँ जी। और बच्चों को जैसे कि स्कूल से आते हैं तो उन लोग को पढ़ाना है तो घर में पढ़ाती हूँ, साथ में सिलाई बुनाई हो गया और घर के और कुछ काम, पैरदान है या थाली टोपने का जो होता है बनाने का, या पर्दा वगैरह वो सब कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: सिलती हूँ, हाँ। बच्चों का फ्रॉक वगैरह सिलती हूँ, लहंगा सिलती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही क्रिएटिव बने रहिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। तो आज आपका फोन लगा है, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: जी दीदी, हम मौसम के हिसाब से, हम आपके हैं कौन फिल्म का ये मौसम का ज्यादा गीत सुनेंगे।
0: हाँ, मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, आपके बेमे तरह तरफ बारिश वारिश हो रही है?
1: जी दीदी, कल ही शुरू हुआ है बारिश, कल से।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह आकाशवाणी से जुड़ी रहिए। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार, मैं भिलाई से बोल रहा था। जाना
0: कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: क्लास साहू। जी
0: झनक लाल साहू जी का हम आज के कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं।
1: धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
0: कैसे हैं और क्या करते हैं आप भिलाई में?
1: भिलाई में मैं टेलर काम करता हूँ, कपड़ा सिलने का।
0: कौन सा
1: मैं
0: गाना
1: आया
0: सुनेंगे
1: तेरे
0: आप?
1: मैं आया तेरे लिए इल्जाम फिल्म का गाना सुनना है।
0: इल्जाम फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: हाँ, और मैं अपने बच्चे लोग का नाम लेना चाहता हूँ
0: हाँ लीजिए।
1: मेरे। हाँ, युवराज साहू और दिव्यांश साहू।
0: तो आप आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम में ईमेल्स या पत्र भेजते हैं जनकलाल जी?
1: नहीं, पत्र वगैरह नहीं भेजता हूँ, सिर्फ सुनता बस मैं
0: तो आप जुड़िए
1: गायकों।
0: हमसे,
1: हाँ
0: और आप या तो पोस्ट कार्ड भेजिए या ईमेल्स भेजिए। फरमाइशी कार्यक्रमों में आपके पत्र में आपके सुझावों का स्वागत रहेगा, है ना? ठीक है, आज आपने फोन किया, हम आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे। धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: सुनील यादव बोल रहा हूँ, मोड़ा।

0: काल से।
1: सुनील यादव जी का कार्यक्रम में स्वागत है।
0: जी धन्यवाद दीदी।
1: तो क्या करते हैं, किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप?
0: मैं मैडम ऐसे तो बेंजो बजाता हूँ मैडम।
1: बेंजो बजाते हैं आप, और क्या करते हैं उसके अलावा?
0: पेंटिंग का भी काम करता हूँ, पेंटिंग का, लिखने का, चित्र
1: का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कलाकार हैं आप तो।
0: जी
1: तो आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं सुनील जी?
0: अच्छा लगता है मैडम, मैं बहुत कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे नमस्कार रायपुर हो गया, युवाणी हो गया, फोन इन कार्यक्रम।
1: अच्छा, तो आपके केशकाल तरफ तो बहुत सुंदर हरियाली है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है वो जगह।
0: जी जी जी मैडम, इधर तो है मैडम, एकदम सुदूर अंचल है।
1: अच्छा,
0: इधर
1: हाँ
0: देखने लायक बहुत जगह है।
1: और बारिश भी होती होगी भरपूर वहाँ?
0: अभी तो बादल है मैडम, रुक रुक के हो रहा है मैडम।
1: मतलब मौसम सुहाना रहता है ना?
0: जी जी, अभी भी बादल है।
1: हाँ,
0: हो ही रहा है बारिश।
1: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: तो अभी तो बारिश का ही मौसम चल रहा है मैडम, तो वही फूल और कांटे में एक गीत है, पहला बारिश में, और तू इस टाइप का गीत है, उसी को सुना देना मैडम।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून।
0: आपका हम स्वागत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं। रंग का सुना देना।
0: कौन सा?
1: उसमें से कोई सा भी चला देना।
0: आपने फोन किया, धन्यवाद। तुझे

0: हेलो,
1: हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम।
0: फोन इन फरमाइश, स्वागत है। हमारी कौन श्रोता से बात हो रही है? हमारी
1: जी तुलसीराम देशमुख,
0: तुलसीराम देशमुख जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम चंगोरी, जिला दुर्ग।
0: आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। कैसे हैं तुलसी जी?
1: धन्यवाद मैडम जी, बहुत बढ़िया है मैडम।
0: हाँ, तो क्या करते हैं आप उधर?
1: मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ मैडम, किसान हूँ मैं।
0: तो अभी तो उपयुक्त समय है आपकी खेती किसानी के लिए, है ना?
1: जी समय तो उपयुक्त है मैडम जी, पर
0: हाँ
1: मौसम अपने साथ नहीं है। जितना बारिश चाहिए बुवाई के लिए,
0: हाँ हाँ
1: वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं गिर पा रहा है, और जो हम बोए हैं उसमें भी अंकुरण में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
0: सब्र रखिए, बारिश तो होगी ही, भले लेट हो रहा है लेकिन बादल तो बरसेंगे ही, है ना
1: जी जी जी जी और
0: जी?
1: किसान तो सब्र का पुतला ही है,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: उसका सब्र का इम्तिहान प्रकृति पूरा लेता भी है।
0: जी
1: तो हम सोच रहे हैं कि कब मौसम अच्छा बने।
0: बिल्कुल
1: और
0: बनेगा, मौसम अच्छा बनेगा, बादल झूम के बरसेंगे और आपकी खेती भी बहुत अच्छी होगी
1: जी जी ऐसा ही हो मैडम जी, आप लोगों का दुआएं हमारे साथ रहे,
0: जी।
1: क्योंकि किसानों के कंधे पर पूरा दुनिया का बोझ रहता है, ये मान के
0: बिल्कुल
1: चलो।
0: बिल्कुल, किसान तो अन्नदाता है सभी के लिए।
1: जी।

0: जी बाकी सबसे ज्यादा मौसम का मार किसी को पड़ता है तो किसान लोगों का ही पड़ता है।
1: जी जी जी।
0: और प्रकृति का सीधा नुकसान किसान को होता है और प्रकृति को नुकसान सभी लोग करते हैं।
1: जी हाँ।
0: और बचाने का प्रयास सिर्फ किसान लोग करते हैं।
1: जी।
0: तो ये बड़ा दिक्कत का काम है, जो प्रकृति को बचाता है वही प्रकृति उसको पहले मारता है।
1: तो किसानी के अलावा और क्या शौक हैं आपके?
0: मेरा सबसे बड़ा शौक तो रेडियो सुनना और पर्यावरण के लिए जितना कुछ अच्छा हो सके वो करने का प्रयास मैं हमेशा करता हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है, हम सभी को अपने पर्यावरण के लिए अपना योगदान देना चाहिए, हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए, है ना?
0: जी जी जी मैडम जी। आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
1: मैं अनुभा अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: जी जी जी अनुभा जी
1: जी।
0: तो हम तो यही कहेंगे कि आज प्रकृति जितना विनाश हो रहा है उसको सुधारने के लिए किसान भाइयों का हम सहयोग करें,
1: बिल्कुल
0: ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान मरने से बच जाए और दुनिया प्रलय होने से बच जाए।
1: जी आज आपका फोन लगा है, बताइए अपनी फरमाइश।
0: आज की फरमाइश में मैडम जी एक पूर्वा के झोंकों वाले आया है, संदेशवा वाले
1: जी,
0: क्योंकि किसान लोग ऐसे होते हैं कि कुछ तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर रह के काम करते हैं, पर जैसे ही आषाढ़ आता है और पूरब की हवा चालू होता है तो उसके गांव की याद अपने आप आने लग जाता है
1: जी,
0: और गांव की ओर खींचे चले जाते हैं। तो समसामयिक
1: जी बिल्कुल, हम आपकी पसंद पर ये गीत जरूर सुनवाएंगे, आपने फोन किया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम जी।
2: में उठ तहिलो अरे पुरवा के झोंकवा में आई।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के

0: चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया। हेलो
2: हेलो,
1: फोन इन फरमाइश
2: जी। हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: संजीत कुमार बोल रहा हूँ, परसगांव जिला कोंडागांव बस्तर से।
1: संजीत कुमार जी का हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद मैम।
1: कैसे हैं?
2: बढ़िया है मैम, आप कैसे हो?
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं आप?
2: खेती किसानी चल रहा है मैम।
1: हाँ हाँ, तो अभी क्या चीज लगाए हैं आप, क्या बोए हैं अपने खेतों में?
2: अभी तो धान बोएंगे मैम। हल्का हल्का बारिश हो रहा है मैम आज तो।
1: हाँ, तो आप खेती किसानी के अलावा आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं? हाँ, कौन से प्रोग्राम पसंद करते हैं आप?
2: नमस्कार रायपुर, फोन इन फरमाइश, ईमेल बजे, फिल्म संगीत सुने, युवाणी, किसान वाणी, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं मैम।
1: तो आप अपनी फरमाइश भेजते हैं आकाशवाणी रायपुर को?
2: अभी बीच में नहीं भेज रहा था मैं, पहले ईमेल वाला कार्यक्रम में भेज रहा था मैं।
1: हाँ, तो ईमेल पत्र आप यहाँ भेज सकते हैं अपने फरमाइश के या सुझावी पत्र या जो भी आपको है, आप बिल्कुल भेजिए और जुड़िए आकाशवाणी रायपुर से। तो बताइए, आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: फिल्म गुनहगार का सुना दीजिए मैम।
1: कौन सा गीत?
2: रे निज पालिंग चमा चम चम।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: दीदी, भागवत प्रसाद सिन्हा बोल रहा था दीदी, गांव नाधी पोस्ट ऑफिस भिलाई 3 जिला दुर्ग से।
0: भागवत प्रसाद सिन्हा जी का हम स्वागत कर रहे हैं।
1: जी दीदी धन्यवाद, दीदी धन्यवाद।
0: है तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप
1: आज के कार्यक्रम में? दीदी आकाशवाणी रायपुर से गीत सुनना चाहता हूँ, फिल्म है नसीब का। मैं गीत सुना के गीत बोल सुनाता हूँ दीदी गा के। जिंदगी इम्तिहान लेती है,

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: फोन इन फरमाइश।
0: हाँ मैडम जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: ध्रुवराम साहु बोल रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: तो चलिए, आज के कार्यक्रम में भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं। कैसे हैं, क्या हालचाल हैं?
0: हालचाल बढ़िया है मैडम जी, बस बारिश का इंतजार था और बारिश तो आ गई है।
1: बिल्कुल।
0: और क्या, खेती किसानी काम में लगे हुए हैं। हाँ।
1: और आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे, रेडियो से भी जुड़े हुए हैं आप।
0: जी जी जी बिल्कुल, 2003 से फोन कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ।
1: हाँ।
0: और उससे पहले पत्र से जुड़ा हुआ थे।
1: तो अभी भी आप पत्र ईमेल भेजते हैं कि नहीं आकाशवाणी?
0: हाँ, हाँ भेजते हैं ना, भेजते हैं।
1: हाँ, क्योंकि फरमाइशी कार्यक्रमों हाँ, में तो आपके पत्र शामिल होते हैं बराबर।
0: हाँ हाँ होते हैं।
1: आज भी आपका फोन लग गया है, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप आज?
0: आज

0: समय फिल्म लगान का गीत है, धरती वाला सुन, धरती अपनी है, ये मिथवा वाला गीत है मैडम जी, वाला सुनना है।
1: ये गीत बड़ा ही सुंदर है, तो हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे, आपने फोन किया, धन्यवाद।

0: और इस आखिरी फरमाइशी गीत के साथ ही अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो अब आज के कार्यक्रम फोन इन फरमाइश से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अनुभा अग्रवाल को। नमस्कार।
1: फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थी अनुभा अग्रवाल। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजनबाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजनबाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजनबाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजनबाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तीजनबाई का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके गृहग्राम गनियारी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और IIM रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझाव के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त DAP उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री JP नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त DAP मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। राज्यपाल रमन डेका ने कहा है कि डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कल रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के सम्मान समारोह में युवा डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया तथा लोक भवन की ओर से मंडल को प्रदत्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 12 बजे हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मीना कुमारी।
1: अकेलेपन के उसी बेकिनार सहरा में उलझी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए फिर वही मैं वही चौराहा वही बेनाम सुकूत धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा फिर से एहसास ने पहना है बेहिसी का लिबास सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी है

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मीना कुमारी।

मेरा माजी मेरी तन्हाई का ये अंधा शिगाफ, ये के सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्स की मानिंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी संगलाह उंगलियों से गहरा करते रहे करते गए, किसी की ओप पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जस्तजू में रहा, कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाख मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन, तमाम जख्म जो तेरे हैं मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह का रिश्ता है मेरी आँखों से, तू एक मस्जिद वीरान है मैं तेरी अजां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा जमीन के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मीना कुमारी की गाई हुई चुनिंदा गजलें।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थी मीना कुमारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी कई रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम आप मन के गीत सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला पिंकी दुलानी के राम राम जय जोहार संगी हो। कार्यक्रम के शुरुआत करथन छाया शर्मा और साथी मन के गाए गीत ला जेला सुनवाए बर फरमाइश आप सब मन के हो। आप हो जेल रोड रायगढ़ ले उमा अरविंद जानवी निवेश परमिला रुचि प्रभा और अजीता ठाकुर राजकोट ले प्रकाश और परमिला शर्मा महादेव घाट ले कृष्णा कुमार वीना कुमार और डॉली जेल रोड मधुबनी ले फारेहा खान उमा खान और अनुश्री खान मगर लोट ले आप हो भागवत साहू और कुमारी बाई साहू भानबेड़ा मुंगवाले रूप नारायण हुपेंडी कमला चिमरी बाई हुपेंडी रानन गांव ले आप हो आत्मा राम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर साक्षी और तुलसी यादव डोंगर गांव रानन गांव ले आप कुबेर सिंह साहू सरस्वती साहू शेर सिंह और उर्मिला साहू बेमिता ले विशु और विभू साहू रानन गांव ले पारक राम किरण साहू रेशमा सोनू गुनीता साहू पालचुआ मुंगेली ले आप हो उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर रानन गांव ले झग्गा राम साहू बबलू जामुन देवी पूजा प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू लगान पंडरिया ले रुक्मणी बघेल उत्तम कुमार साहिल और भारती बघेल भिलाई नगर ले अशोक श्याम कुंवर परमिला श्याम कुंवर लोरमी गोल बाजार खपरी कला ले आप हो संतोष कुमार सोनी खिलेश निहाल पिहू दनिषा दीक्षा और संजय पूजा गंडई से आप प्रमोद पटेल शिवम कुमार अंकित कुमार कुमारी खुशी पटेल फाल्गुनी पटेल गिरी पलारी ले वीरेंद्र साहू आशीष कपिल साहू कटोरा तालाब ले आप हो मोहनलाल देवांगन प्रभा भूपेश तुषार और बहुरानी वेलाईगढ़ ले आप हो दिनेश देवांगन भाग्यश्री पुष्कर और वंशिका देवांगन आमाखुड़ा रेंगाखा ले राजेंद्र सिंह नेताम दक्ष प्रिया और सरगम नेताम मेचका सोडूर ले गोमती नाग पूर्णिमा मीनाक्षी नाग पूर्णिमा महासमुंद ले बलराम सेन इंदु सेन छगन सिंह लक्षणपुर ले आप हो टेक राम यदु विकास यदु औ हेमलता आप मन के फरमाइश माँ आओ सुने जाए छाया शर्मा और साथी मन के गाए ए गीतला।

छाया शर्मा और साथी मन के गायक गीत के बाद आओ अब सुनथन सीमा कौशिक और साथी मन के गायक गीतला सुनवाई पर फरमाइश आप मन के आप हो रिंगली ले राकेश जाधव दिनेश जाधव परमिला जाधव बुलंदशहर ले संगीत कुमार वानी कुमारी और करुणा कुमारी दिल्ली ले आप हो रेशमा अंसारी परमिला सकीला और सईद अंसारी डूमरगांव बिहार ले अस्मा परवीन और वल्ली भाई अंसारी राजकोट ले हेमा यादव सुधा कुमारी और संध्या रिंगली ले सुखदेव फकीर चंद अजीत और फकीर चंद मुंबई ले आप हो अजीत मोंगा परमिला दुखना खटकीन और अहमद मोगा भीम खोज तरपों के लिए आप हो संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता नेहरूवाड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत और राघवेंद्र साहू जालंधर ले मीना कौर नरेंद्र कौर संदीप कौर और जेल रोड रिंगली ले अजीता पाल पामेला और करुणा गुरु नानक नगर मलोट पंजाब ले आप हो राजीव सेतिया रजनी सेतिया तनिष और तनिष और रजनी सेतिया परभणी महाराष्ट्र ले रूपेश संघई महेश संघई प्रत्येश संघई तखतपुर ले मिश्री लाल वर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा चर डोंगरी पिपरिया ले आप हो दुर्गा राम साहू अजय कुमार जय किशन इंद्रानी अवमाया साहू बाबा बट्टी बलिया ले ओम प्रकाश राय उषा राय हैप्पी राय बेगूसराय बिहार ले दिनेश राय अंशु कुमार और राहुल कुमार लक्षनपुर ले विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश और राहुल साहू मुजफ्फरपुर बिहार ले आर्यन राज हैप्पी आनंद अंबागढ़ चौकी ले आप हो रिजवान खान आयशा सबिया और रेहान भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करुण राहुल और चंपा साहू इंदौर मध्य प्रदेश ले आप हो नारायण खर्चे ललिता गणेश खर्चे कार्तिक परी वंदना स्वाति और प्रयाग चौधरी चरडोंगरी पिपरिया ले आप हो दुर्गाराम साहू अजय कुमार जय किशन कुमारी इंद्राणी माया साहू लोरमी चंचेड़ी ले शंकर कोलाम संजय कोलाम संध्या कोलाम और शिवम कोलाम उड़ीसा ले आप हो नंद कुमार ठाकुर ग्राम देहान बांधा बाजार रानंदगांव ले आप हो हरिओम साहू रेवाराम साहू रानू सरस्वती साहू और परमानंद साहू तो आवो आप सबके फरमाइश में सुने जाए सीमा कौशिक और साथी मन के गायक गीतला

सीमा कौशिक और साथी मन के गायक गीत के बाद आवो अब सुनतन शांति यादव इंदिरा चंद्राकर और रूप राम नारायण ध्रुव के गायक गीतला सुनवाए पर फरमाइश भेजे हो आप मन आप हो बिस्तला जलबंधाले ओम प्रकाश देवांगन नोहरलाल देवांगन रोहन सिले डगेश्वर साहू नूतन साहू घनश्याम और गौरव साहू कोदवाले आप हो श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी रानी रजनी मरावी गांव ठोटरी घोटिया जिला मानपुर ले आपो महेश कुमार निषाद रंभा रानी निषाद निखिल नैतिक पुष्पांजलि और स्वप्निल आदिपुर अजार कच्छर कच्छ ले आपो जगदीश सोनार प्रवीण पुजारी और प्रतिमा देवी ग्रीन चौक मुरबी ले कंचन कुसुम और सरोज श्रीमाली आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोगरा साहू केसरी प्रीति संगीता साहू भाटापरा ले सोहन जोशी अर्चना जोशी हरमिंदर सिंह चावला धनेश तिवारी सावन नायक भाटापरा ले आपो अनिता साहू वीना साहू नेहा और मोनिशा साहू महादेव घाट अमलेश्वर ले मिथिलेश ठाकुर तारिणी और ज्योति ठाकुर सौगा मगर लोले कोमल सेन तोषण सेन विनायक सेन बुड़गहन ले आपो राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति रिंगनीले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा

अमलेश्वर दुर्गले आफू डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, रेयान्स औ गुडिया ठाकुर, गरियाबन्दी लालचन्द औ यशवन्त, दोहाकतरले आफू शेख जियाउर रहमान, दतरङ्गीले आफू भागवत वर्मा औ गुलाब दास, सावतपुरले ऋषि सेन, रितेश सेन, सनावत मध्य प्रदेशले आप दिलीप मालाकार, योगेश शेख मूसा औ अशोक वर्मा, आर्यनगर कोका भिलाईले उत्तम सिंह जंगेल, मोरज चंगेल, दनिया खुर्द कवर्धाले आफू गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत और भाटापराले बचकमल, मोतीलाल विनय ठाकुर और बसंत भृगु। तो आओ संगी हो आप सबके फरमाइश में सुनथन शांति यादव, इंदिरा चंद्राकर और राम नारायण ध्रुव के गाये गीतला।

कार्यक्रममा अब सुन्थन धुरवाराम मरकाम औ दुखिया बाई के गाए गीतला सुनवाए बर फरमाइस आप मन के है आप हो कोर्दा लवनले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार शिव कुमारी वर्मा हेमलता औ वेद किरण वर्मा पोटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता साहू ससांक औ सीमा साहू बाजार पारा बेमित्राले भरत लाल सिन्हा लव कुमार सिन्हा लक्की सिन्हा करी बदरले आपो पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा गिन्नी औ देवेंद्र कुमार महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले आपो फिरंता साहू दुलोरिन साहू कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू शिक्षण नगर दुर्गले राकेश वर्मा सचिव

वर्मा, वाणी वर्मा, बेरला हथपाले, रतनलाल यादव, शांति बाई आऊ, अजय कुमार यादव, कोटा ले आपो, अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, भिलाई ले आपो, निर्मल सिंह, चुड़ी लाइन भाटापारा ले आपो, अब्दुल मजीद कुरैसी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद, पलारी ले आपो, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, आपमन हो, धमदरी ले, शंकरनगर दुर्ले, मानिक सिंह बैस, कावेरी राहुल बैस, विनीता लेखमणि बैस, शीतलनगर दुर्ले, शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, कोरदा ले, कलीराम यादव, छतराम यादव, खैरागढ़ ले, रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता झरना, प्रेरणा दीक्षा और शिक्षा और महासमुंद ले आपो, सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, भीषम दास मानिकपुरी और गोवर्धन यादव। तो आओ आप सबके फरमाइश मां सुनथन ध्रुवा राम मरकाम और दुखिया बाई की गाय एक गीतला।

संगी हो कार्यक्रम के आखिरी गीत भर स्वर दे है पिल्लू राम गंधर आओ साथी मन आओ फरमाई से हमारे श्रोता मन के आप हो नवागढ़ कटेले आप हो जीवन लाल देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक देवांगन हरदेवार पारा वार्ड चिमका ले आप हो रमेश कुमार यादव माया रिंकू सनी और कोमल यादव बंगला मटिया बालो ले आप हो शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे भाटापारा ले मिलव दास कुलदीप संतोष संदीप और अजीत हथनी पारा भाटापारा ले चोवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा और दुर्गेश्वरी वर्मा डंगनिया पाटन ले सूर्या मेघा कश्यप नर्मदा धाम सुरसुरी ले आप हो कैलाश यादव सुरेश यादव टिकेंद्र यादव योगेश यादव धवलपुर गरियाबंद ले आप हो गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति धनंजय और अर्चना मिश्रा बाजार पार वाडा बाजार वार्ड महासमुंद ले आप हो भीखम दास मानिकपुरी नर्मदा मानिकपुरी लक्ष्य दीपक दास मानिकपुरी मेचका नगरी ले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा नाग निखिल नाग और तरुणदीप नाग कांडे मोहला ले आप हो रूप सिंह साहू और शैलेंद्र साहू। तो आओ आप सबके फरमाइश में सुनतन पिल्लू राम गंधर्व और साथी मन के गाय एक हितला

पिल्लूराम गंधर और साथी मन के गाय गीत संग अब होत है कार्यक्रम ले विदाले के बेरा जाए के पहले आप मल्ला बता देवन एक कार्यक्रम मा गीत ला जोड़े रहीन वीर भान साहू तो अब देवो विदा और स्वीकारो पिंकी दुलानी की जय जोहार।

आप मन के गीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने

0: की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत अखियों के झरोकों से फिल्म से शैलेंद्र सिंह हेमलता की आवाज़, रविंद्र जैन का संगीत।

शैलेंद्र सिंह और हेमलता की आवाज़ों में अभी आपने सुना अक्खियों के झरोकों से फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। चित्रपट संगीत का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में प्रियतमा फिल्म से। बोल योगेश के हैं, संगीत राजेश रोशन का।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। आइए अब सुने ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में दिन में 2 बजे फिर सुन सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

इसके अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनेगा आज शाम 6:30 से 8:45 तक, फिर रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज दिन में 2:30 पर सुनेगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर तीजनबाई से जीएस वरकड़े की भेंट वार्ता। समय याद रखिएगा आज दिन में 2:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया आपसे कुछ ही देर बाद 1:30 पर। आज की बात का विषय होगा बदलते मौसम के साथ बदले दिनचर्या। साथ ही सुनिएगा क्रम आपकी रसोई से कुछ बातें, कुछ गीत और क्रम दीदी की सलाह में सुनिएगा फलों का रस और उसके फायदे। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में सुनिएगा सूरजपुर जिले की चिट्ठी, आलेख छत्रधारी प्रजापति का होगा। हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:00। कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा समय का महत्व समझे। साथ ही सुनिएगा क्रम आज मेरी बारी है, इसमें आज बारी होगी दिव्या धुर्वे की। इसके अलावा सुनिएगा क्रम नए तराने। शाम 6:30 पर कानून की बात में सुनिएगा किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध विषय पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती किरण बाजपेयी के द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल सुनिएगा शाम 7:21 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा फसल चक्र परिवर्तन पर श्री अन्न मिलेट की खेती। साथ ही सुनिएगा क्रम आज की सलाह और साथ ही सुनिएगा छत्तीसगढ़ी

श्रोताओं आपको एक बार फिर बता दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा आज शाम 7:30 से 8:45 तक, फिर रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में सुनिएगा सूरजपुर जिले की चिट्ठी, आलेख छत्रधारी प्रजापति का होगा। शाम 6:30 पर कानून की बात में सुनिएगा किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध विषय पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती किरण वाजपेयी द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। और दिन में 2:30 पर सुनिएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई से जीएस वरकड़े की भेंटवार्ता। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 होने को है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बिंदिया।

लेकर आए हैं अपनी सखी सहेलियों के लिए हमारी अपनी बिंदिया। आज के बिंदिया कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी सखी हिना देशपांडे। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, मौसम बदला तो हवाओं का मिजाज भी बदला। मौसम

बदला तो हवाओं का मिजाज भी बदला, जिंदगी ने हर कदम पर नया अंदाज भी बदला। मानो मौसम प्रकृति का वह रंगमंच है जहां हर ऋतु अपने अलग अंदाज में आती है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारी दिनचर्या में भी परिवर्तन आना बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे गर्मी के दिनों में जहां लोग सुबह उठकर अपने कामों को जल्द पूरा कर लेते हैं, वहीं बरसात के मौसम की बात करें तो वातावरण की धीमी ठंडक और नमी जीवन की रफ्तार को कुछ

0: जहां लोग सुबह उठकर अपने कामों को जल्द पूरा कर लेते हैं। वहीं बरसात के मौसम की बात करें तो वातावरण की धीमी ठंडक और नमी जीवन की रफ्तार को कुछ धीमा कर देती है। वहीं सर्दियों में देर तक बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। बदलते मौसम के साथ हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आ ही जाता है, पर बदले मौसम में उसके साथ हमें अपने खान पान, हमारे पहनावे और स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। ऐसे मौसम में पर्याप्त पानी पीना बहुत ही जरूरी है। संतुलित भोजन करना और नियमित व्यायाम करना हर मौसम में आवश्यक है। मैंने मौसम के अनुरूप दिनचर्या अपनाने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो समय के साथ स्वयं को ढाल लेते हैं, स्वयं को बदल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। बदलता मौसम केवल वातावरण ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। किसी ने ठीक ही कहा है बहनों, ऋतु बदलती है तो फूलों का निखरना देखो, ऋतु बदलती है तो फूलों का निखरना देखो, जिंदगी बदलती है तो हर पल का सवरना देखो। बदलता मौसम हमें ये संदेश दे रहा है कि समय के साथ हमें हमारी आदतें और दिनचर्या में भी सकारात्मक बदलाव लाना आवश्यक है। मौसम बदले, रंग बदले, बदले जीवन की चाल, स्वस्थ रहें, सहज रहें, यही तो है अपना ख्याल। दिनचर्या में संतुलन हो, मन में हो विश्वास, स्वास्थ्य और खुशियों से भर जाए जीवन का हर पल खास। सच में बहनों, बदले मौसम में, बदले रंग में खोने को मन करता है, तो देर किस बात की। इसी के साथ चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मौसम का जादू।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर, आपकी रसोई क्रम की ओर। मैं बच्चे हो या बड़े, सबको खुश करते हैं हमारे घर के बने ताजे पकवान। ऐसे मौसम में सच में कुछ तला हुआ खाने का मन करता है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो इसी के साथ लेते हैं हमारी पहली रेसिपी। इसका नाम है दाल की मसालेदार कचौरी। इसके लिए सामग्री लगती है 2 कप मैदा, 1/4 कप तेल, नमक स्वाद अनुसार, भरावन के लिए 1 कप थोली मूंग दाल भीगी हुई, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। इसे बनाने की विधि है बहनों, मैदे में तेल और नमक मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें। भीगी हुई दाल को दरदरा पीस लें। कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करके मसाले और दाल को अच्छे से सुनहरे होने तक भून लें। आटे की लोई बनाकर उसमें भरावन भरे और हल्के हाथ से बेल लें। मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी रेसिपी है बहनों। इसी के साथ हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं, वो भी हमेशा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी हम लेकर आए हैं मसाला कॉर्न टिक्की चाट। 2 कप उबले स्वीट कॉर्न, 3 उबले आलू, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, तेल सेकने के लिए। इसे बनाने के लिए कॉर्न को हल्का दरदरा पीस लें। इसमें मैश करे हुए आलू, मसाला, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं और इसे छोटी छोटी टिक्की का आकार देकर तवे पर हल्के तेल में दोनों ओर से सुनहरा होने तक सेक लें। या आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और फिर इसे टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहनों, इश्क एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से परे होकर भी दिल में अपनी धुन बसा लेता है। कभी हम मुस्कान बनकर चेहरे पर खिलता है, तो कभी यादों की तरह मन में उतर जाता है। प्रेम की ऐसी धुन, दिलों के जज्बातों को छूने वाली धुन, एक खूबसूरत सा गीत, इश्क की धुन। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, मौसम में बदलाव के दौरान सर्दी, खांसी, एलर्जी और ऐसे मौसम में हम बहुत ज़्यादा कई बार तला भुना खा लेते हैं, जिसके कारण हमें पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में भोजन केवल स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल रखते हुए अपनी चीज़ों को लेना चाहिए जो भी हम खा रहे हैं। तो बहनों, ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि मौसम का जो अचानक बदलाव हुआ है, ऐसे समय में हमारे गले में कई बार खराश महसूस करते हैं, कई बार हमारे गले में दर्द होता है। तो इसी के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी और हेल्थ ड्रिंक शेयर करना चाहूँगी, गुड़ अदरक का हेल्थ ड्रिंक। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, एक बड़ा चम्मच गुड़,

दो कप पानी, 4 से 5 तुलसी की पत्तियां। पानी में अदरक और तुलसी डालकर 5 से 7 मिनट तक उबालें। फिर गुड़ मिलाकर छान लें। इस ड्रिंक से होने वाले फायदे हैं बहनों कि हमारे गले में जो हम खराश महसूस करते हैं या इन दिनों जो हमें टॉन्सिल या गले में दर्द रहता है, तो इस तरह की ड्रिंक अगर हम 2-3 हफ्ते में 2 बार पीते हैं तो इससे हमारे गले में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। मैंने कभी कभी प्यार की पहली आहट दिल को ऐसे छू लेती है कि इंसान खुद से ही बेखबर हो जाता है। न जाने कब कोई मुस्कान, कोई नजर या कोई एहसास हमारे दिल पर अपना अधिकार जमा लेता है और फिर दिल यही कह उठता है, दिल कहीं खो सा गया है। इन्हीं मीठी भावनाओं और प्रेम की खूबसूरत एहसास को लेकर प्रस्तुत है दिल का सदाबहार गीत, दिल खो गया।

मैनो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर, दीदी की सलाह। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। मैं आपकी अपनी दीदी आज आपको फल और उनके रसों के फायदे के बारे में हम बात करेंगे। मैनो प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के फल दिए हैं जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी खजाना है। रोजाना फल खाने से हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और ऊर्जा मिलती है। मैंने सेब, केला, पपीता, अमरूद, संतरा और मौसमी फल शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रोगों से लड़ने की भी शक्ति देते हैं। जैसे संतरा और आंवला विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं और कुछ फल खाने से हम अपने अंदर तुरंत ऊर्जा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे पास कुछ खाने का चीज़ नहीं होती है और ऐसे समय में यदि हम केला, अंगूर, तरबूज या इस तरह के फलों को खाते हैं तो हम तुरंत ही अपने अंदर एक एनर्जी फील करने लगते हैं। मैंने फलों के रस की बात करें तो फलों के रस भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। ताज़े फलों का रस शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और गर्मी के दिनों में ताजगी प्रदान करता है। हालांकि इसे बनाते समय यदि आप अतिरिक्त चीनी का प्रयोग करते हैं तो उस फल के रस के जो गुण है वो कम हो जाते हैं और वो हमें उतना लाभ नहीं देगा जितना बिना चीनी के देता है। इसलिए कोशिश करिएगा जब भी आप किसी भी फल का रस निकालते हैं तो उसमें अतिरिक्त चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है और जहां तक संभव हो पूरा फल का सेवन हमें करना चाहिए ताकि हमें हमारे शरीर को पर्याप्त फाइबर मिले। स्वस्थ जीवन की शुरुआत छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। हम प्रतिदिन अपने आहार में कम से कम एक या दो प्रकार के फल जरूर शामिल करें ताकि हम स्वयं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य का उपहार दे सकते हैं। तो आइए आज से ही फल और फलों के रस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की एक और कदम बढ़ाएं। जब किसी का जिक्र आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए और सांसें भी उसी की कहानी सुनने लगे तो समझ लीजिएगा कि दिल को प्यार हो गया है। सांसों की सरगम जब किसी एक नए नाम पर ठहर जाती है तो मोहब्बत का एहसास अपने आप दिल में उतर आता है। सुनिए प्यार की इस मीठे से एहसास को इस मधुर गीत के साथ।

हम ये चाहेंगे बहनों कि इस बदलते मौसम में आप अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बातें आपसे और भी करना चाहते हैं, पर अब हमारी घड़ी हम इशारा करिए, इसलिए दीजिए विदा हिना को नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, आइए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत आज और कल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर के बोल हैं, रवि का

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना आया सावन झूम की फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम में आइए अब सुने मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का

0: مقابلة. और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के

0: दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
5: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
6: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गऊ, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
4: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

0: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई आज हमारे बीच नहीं रही। आज प्रातः उनका आकस्मिक निधन हो गया है। डॉक्टर तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की पंडवानी को विश्व पटल पर प्रदर्शित और स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं उनके साथ गर्जन सिंह वरकड़े की भेंटवार्ता की रिकॉर्डिंग।
3: श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि पंडवानी लोक गाथा गायन ये जो विधा है छत्तीसगढ़ की प्रमुख विधा है और इस विधा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो एक प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है वो हैं इस क्षेत्र की जानी मानी लोक गाथा गायिका श्रीमती तीजन बाई। आपको इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो तीजन बाई जी, पंडवानी इस क्षेत्र की और छत्तीसगढ़ी में गाई जाने वाली लोक गाथा

0: है, तो जब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहली बार आपने प्रदर्शित किया होगा, गाया होगा, तो कैसी प्रतिक्रिया वहाँ हुई थी उसके बारे में बताएं।
1: अब ऐसे है कि मैं गांव के गवैया रही हूँ, पहले के जमाना में तो हर गांव में जाके गात रही हूँ। बोला जब पेरिस जाए के मौका मिली, पेरिस में फेस्टिवल हो इस भारत फेस्टिवल, तो पहले तो बड़ा हाथ गोड़ कांपा है, डर के मारे कैसे चढ़ूँ जिहाज, कैसे चढ़ी कैसे उड़ी। जब मैं भोपाल पहुँचे, भोपाल में मुला समझाएगी कि भाई मैं डरे बातें नहीं है, जैसने चढ़ता तैसने चढ़ बे ठीक है, क्योंकि चले पर तो तैयारी हो गई हूँ। जहाज में चढ़े हो तो सबला देखा हूँ तो मुला बड़ डर के मारे कप कपासी लागे, पर बहुत जने भीतरी में खुश रहे हो तो बहुत जने दिखी, तो मैं कहता ये ह्यूमन बड़े सुंदर को बैठे है तो मैं कहाँ पर नहीं बैठूँ, अब वहाँ बैठ के तो चल दे। ओकर बिहान दिन मेला लगी, तब मेला में प्रोग्राम देवर रही से, तब मैं कहें मन मुरसन बने बोले नहीं, नयानिकन मन सन मैं नहीं बोले सका, ये मन पंडवानी लगा समझ ही। ऐसे मन में तो सोचते रहे हूँ जब पंडवानी शुरू करे हूँ

0: जने दिखी तो मैं कहा ये हिमन बड़े सुंदर को बैठे है तो मैं काबर नहीं बैठू, अब वहाँ बैठ के तो चल दे। ओकर बिहान दिन मेला लगी तब मेला में प्रोग्राम देवर रही से तब मैं कहे हिमन मुरसन बने बोले नहीं ना यानी जनमन सन मैं नहीं बोले सका, ये मन पंडवानी लगा समझ ही। ऐसे मन में तो सोचत रहे हूँ जब पंडवानी शुरू करे हूँ तो लैका धरे रहा है तो उन्होंने मन है लैका धर के नाचे जकर कर लैका नहीं रहा है तो मन इसने लैका बेगर नाचे ऐसन कूदय ऐसन कूदय। तो मैं कहा काला देख के मन समझे नहीं है काला देख के नाचते दई तब हमार पार्टी के मन कहते थे एक्शन अभिनय कर थस तेला देख के मन खूब नाचते खूब ताली बजाते। तो ये चीज गाँव में जो हमार क्षेत्र के चीज ला लेके हम विदेश तक पहुँचे और वहाँ के दशा ला देखें कि हमार संस्कृति में अतेक दम है अतेक ताकत है ये हम समझे नहीं रहें। हम विदेश गए तब हम ला पता चलीस कि सच में हमार छत्तीसगढ़ के कला और परंपरा में मन बहुत सुंदर दिल लगा के देखते तब हम लग थोड़ा ताकत बनीस। मैं वहाँ कर्ण अर्जुन संवाद रही से और दुशासन ला मारते हुए करण के वध करे रहे हूँ। तो वहाँ वो करण के वध और दुशासन के जो दुशासन ला पहले मारते हूँ वो टाइम आदमी मन चिल्ला पड़ती मार मार तो अरे इंग्लिश में का मार के तेलत मैं नहीं जानो पर उसने आवाज़ उकर मन के आवे और मैं जब गाते हूँ तो गाना लगाते चोला चोला तोर माटी।
1: अच्छा ये जो संवाद थे उन संवादों को भी बताएं जिसमें लोगों ने इतनी आपकी वाहवाहियाँ की थी।
0: जब मैं पटक के भीमसेन के द्वारा पटक के दुशासन ला ओकर भुजल उखाड़े पर तैयारी होते हैं तो समझ जा कि मैं यहाँ दुशासन के भुजल खाने पर ताकत बनाते हूँ तो वो मन अपन कुर्सी में बैठे बैठे ताकत बनाती मतलब अतेक आनंद ले वे जेकर आनंद में मैं यहाँ कार्यक्रम देते देते वो मैं क्रोध रही थे गुस्सा रहते पर मोला हंसी आए लधर ले वे कि ये मन कैसे करा थे कह के मतलब अतेक वो मन के दिल में उमंग रहा है कि हमन का डरबो। मैं जब पटक के भीमसेन पटके भीम है ऊपर छाती में बैठ जाए और ओकर भुजल जब उखाड़े पर ताकत बनाओ ना तो उन मन भी अपन कुर्सी ला धरे धरे ताकत बनाए मतलब अतेक ओकर मन के दिल में रुचि रही से।
1: तो उनको तो पहले कौन सा प्रसंग आप सुना रही हैं उस प्रसंग की कथा को बताया होगा आपने पहले मंच से कि मैं ये कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
0: हाँ कहाँ बोला करण वध तीसरा 18वां दिन की लड़ाई में 17 दिन की लड़ाई हरे और 17वां के बाद दुशासन मारे के बाद में कर्णदानी के वध करबो और कर्णदानी महान दानी है जब दान मांगे बर जाते तो कथे नहीं धीर धर ले धर्मदास धन हा सिरागे धर्म तो ये धर्म तो है कि बात उन मन सुने हैं तो आँखी बंद करके अपन हाथ मल ऐसे मतलब बढ़ावे और धर्म देवत है तो हम हाँ दान लेवत हमका मतलब उकर मन के जो भाव देख के मोला ऐसे लगे कि एक एक शब्द ला समझा थी का।
1: अच्छा ये तो पेरिस की बात है उसके अलावा भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग अलग आपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है तो कौन कौन से ऐसे देशों में आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में भी बताएं।
0: अब मैं बाद में पेरिस गई हूँ तो द्रौपदी चीर हरण कर रहे हैं।
1: अच्छा दूसरी बार जब जाना
0: हाँ दूसरी बार गए हो तो द्रौपदी चीर हरण करे हो और तीसरा बार गए हो तो मतलब द्रौपदी शेम्बर करे रहे हो चौथा बार करे हो तो शंकर अर्जुन संवाद करे रहे हो पांचवा बार गए हो तब की चकवध करे रहे हो तो एक प्रकार के मतलब वहाँ अलग अलग समय में गए हो अलग अलग कथा के मांग हो है।
1: अब निश्चित तौर पे इतनी बार अलग अलग समय में आप गई हैं तो अलग अलग श्रोता भी मिले हैं तो थोड़ी सी श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को तो बताएं ही लेकिन ये जो द्रौपदी संवाद चीरहरण वगैरह की जो बात कर रही हैं आप ये तो बहुत ही मार्मिक तरह के प्रसंग हैं तो इन प्रसंगों को भी थोड़ा सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते चले।
0: बिल्कुल बात सही है जैसे कि साड़ी तो जाना नहीं उनमें फुल पैंट और कमीज कुर्ता और जैकेट वाले हैं हमारा डहार मतलब साड़ी पहन

0: और उनका डर तो साड़ी चले नहीं, पर जब मैं दुशासन पकड़ के साड़ी खींचे थे ऐसे की के कते ना, तो उनमन अपन हाथ ला इशारा करती कि अब साड़ी खींचने वाला है, तो मैं बचा बचा के थी, तो हुमन चिल्ला पड़ती बचाओ बचाओ, मतलब उकर मन के जो प्रभाव उनका उकर मन के जो दिल है वो मन एक तो खुला दिल के आदमी है, उन मल्ला का संकोच का लज्जा है का पर्दा है ये मन तो जाने नहीं बेचारा मन, और जब हम चिल्लाते ना तो वही प्रकार के उमन चिल्लातीन, और द्रौपदी चक्र के समान घूमे तो उकर संग में कुर्सी ले खड़ा होके मन ले बैठे रहते वो खड़ा होके अपनो मन गोल गोल घूमती, मतलब ये चीज देखे बार विदेश में बहुत अच्छा मिले है, और वो हमार तरफ तो नहीं कर सके ना वैसन, ये ऐसा ऐसा अनुभव रही से हमार।
1: तो ये जो है ना संवादों की जो बात हम कर रहे थे तो थोड़ा सा इसको
0: कथा कहा
1: हाँ।
0: तो द्रौपदी भगत रही से पकड़े साड़ी खींचे दुशासन, एक तरफ द्रौपदी बचाओ बचाओ चिल्लावत रहे, पर श्री कृष्ण के कान में सुनाई आई दौड़ी कृष्ण जी हाथ से चीनी अंगूठी में पीतांबर ले, भगवान कृष्ण द्रौपदी के बदन में साड़ी पुरोवत रहे और एक तरफ ले दुशासन साड़ी खींचत रहे, दोनों के बीच में द्रौपदी चक्र के समान घूमत रहे, ये प्रभु के लीला है और लज्जा बचाई सब है द्रौपदी के।
1: तीजन भाई जी ये तो आपने संवादों को बताया है, कथा के संवादों को, थोड़ी सी गायकी का पक्ष भी थोड़ा सा लोगों के पास तक पहुँचे उसको भी थोड़ा आप कुछ गुनगुना दें।
0: तप करत मैं धुरुला भेटे हूँ, तप करत मैं धुरुला भेटे हूँ, नरसिंहला भेटे हूँ खंभा माँ, बुईर बिनत सौरीला भेट्यों क्योंटला भेट्यों गंगा माँ, बुईर बिनत सौरीला भेट्यों क्योंटला भेट्यों गंगा माँ, तप करत मैं धुरुला भेट्यों, तप करत मैं धुरुला भेट्यों, और नरसिंहला भेट्यों खंभा माँ, बुईर बिनत सौरीला भेट्यों क्योंटला भेट्यों गंगा माँ।
1: अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो बहुत तरह के दुनिया के और जगहों के कलाकार भी आते हैं, तो उन कलाकारों के साथ में भी जब आप अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं तो जो दर्शक हैं वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते होंगे अलग अलग कलाकारों के लिए, तो वो किस तरह की प्रतिक्रियाएँ आपके सामने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के लिए आई हैं, और उन लोगों को भी उन्होंने क्या कहा आपको क्या कहा थोड़ी उसके बारे में बताएं।
0: अब देखे हो कार्यक्रम देखे के बाद तो आदमी मन हाँ ललक के गले लगाए बर हाथ मिलाए बर बधाई देवर आते कि धन्य आप मन हाँ, ऐसे लगते तो आप मन की कथा सुने के बाद में कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई चलत है तो हमला कुरुक्षेत्र में ले गए हंसका, कि कुरुक्षेत्र ला ये हमरे जगह में लान के रख दे हंसका, तो ये चीज उन मन जब बोलते हैं तो हम अल्लाह ऐसे लगते कि हकीकत में हम सही में उसने करथन का, ऐसे नहीं लगे कि नहीं ऐसा नहीं होवत हो ही, हम मल्ला लगते कि ये चीज ले हम सुनाथन तो वो चीज़ के आधार पे उन मल्ला वही महसूस होवत हो ही कि छत्तीसगढ़ में सुनावत हो तो कुरुक्षेत्र मैदान नजर आवत है, दिल्ली में सुनावत हो तो कुरुक्षेत्र मैदान नजर आवत है, बेंगलोर में सुनावत हो तो कुरुक्षेत्र मैदान नजर आवा थे, तो ये तरीका सुनाए के अलग अलग आदमी के पास में अलग अलग ढंग है, पर मोर पास में यही तरीका है जो ले सुनाता हूँ तो आदमी मन दौड़ के मोर पास मिले लाते बधाई दे लाते हाथ मिलाए बार आते, और यहाँ तक कहते कि हमारे हाथ मिला के हाँ मिलावे तो हम ना धन्य हो जाबो, तो ये चीज सब लोग से मिलते।
1: अच्छा ऐसा भी तो कहते होंगे कि आप यहाँ ठहर जाइए और हमें सिखा दीजिए।
0: हाँ ये तो हर स्कूल के लिए मन हाँ कथी कि हमारे स्कूल में सिखाए बार आप मन टीचर बन जाओ ना, हम मन तो हाँ लेती जन भाई बनबो, तो वैसे कि भाई अभी मैं सिखावत हूँ और कोशिश करत हूँ कि भाई ये पंडवानी है यहीं तक लुप्त मत हो जाए, आगे लड़का मन के पास माँ हमारे आने वाले पीढ़ी के पास में रहे, तो एक स्थिति बच्चा मतलब सिखावत हो ना।
1: अच्छा विदेशों में भी जो लोग सुनते रहे हैं वो लोग भी कहते रहे,
0: वहाँ क्लास लगात हूँ लड़का मन बर स्कूल में जाके, वहाँ भी क्लास लगात हूँ,
1: कहाँ
0: मैंने पेरिस में लगाए हों, स्विट्जरलैंड में लगाए हों, जर्मनी भी में लगाए हों, तो यहाँ प्रोग्राम के बाद में हम

0: एक समय दो तीन दिन तक लगातार क्लास लगा था लइका मल्ला और ये कथा हम बता था पर वहाँ गाइड कर थे ना, मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था तो वह मतलब इंग्लिश में फ्रांसीसी वाला मल्ला बता थे लइका मल्ला, उसने वो मन करके दिखा थे जैसे हम करके दिखा था तो वह मन अपन इंग्लिश में कर फ्रांसीसी में करके दिखा थे तो लइका मन ला हम वह भी शिक्षा दे था।
1: वो तो गायकी में उनमें
0: गायकी ले नहीं गाए सके, उनमें गायकी ले नहीं गाए सके पर ये चोला तोर माटी है, भोलाला पूछे पार्वती, ये गाना मन लो उमन गा लेते।
1: तो ये जो भजन आप गा रही हैं चोला तोर माटी है, ये किस प्रसंग के अंतर्गत? इसको
0: ये द्रौपदी चिरहरण के बखत की है। तो वो जब चिल्लाते नहीं कि हे भीष्म पितामह मोर लाज बचा दे, हे गुरु द्रोणा मोर लाज बचा दे, दौड़ के अपन पति लगते हे प्राणनाथ, धन संपत्ति सर्वस लहार जाए रहते हो, मैं दुनिया में भीख मांग के जी लेते हूँ पर अतेक बड़े मोर बेजती काबर कराए हो। तो उन टाइम में कथे कि अब कोनो नहीं है, तब कथे हुआ चोला तोर माटी है।

भीषम द्रोणा करण दुशासन, भीषम द्रोणा करण दुशासन, जियत भर के साथी है।

0: बहुत खूब तीजन भाई जी, अब दुनिया बहुत बदल रही है, तो अब समय के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन लोक संगीत में भी, संगीत की हर तरह की विधाओं में आ रहे हैं, कलाओं की हर विधाओं में आ रहे हैं। तो इन बदलते परिस्थितियों के बीच में, इन बदलती स्थितियों के बीच में, ये जो पंडवानी लोक गाथा गायन है, उसकी जो तासीर है वही की वही बनी हुई है, ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं, हम तो कोशिश करत हन कि परंपरा जो जुड़े है, परंपरा के आधार ले हम जुड़े हन, वो परंपरा ला छोड़ के मत जाते, बहाकते मत। लोग अनेक प्रकार के करत है, वो कर विधल हम पकड़ते जन, ये हम कोशिश करत हन, पर दूसर मन ला हम नहीं कह सकन। हम तो कोशिश करत हन, और सब भाई बहनी ला हमार प्रार्थना है कि उन मन भी अपन परंपरा ला बचाए बर कोशिश करे, और तभी कल्याण है। हम कहीं कहीं बांट देन, हमार पर तबला है, पेटी है, ढोलक है, मार और ये है, तो वहाँ कांगो बांगो बजाए जाए, तो वो प्रतिभा नहीं रही जो हमार परंपरा में हम है, मोर ये सोचे।
0: अच्छा तीजन भाई जी, वहाँ पर जो बड़े बड़े कलाकार भी आते रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पे कार्यक्रम प्रस्तुतियों के लिए भी आते होंगे, वैसे भी सुनने के लिए आते होंगे विदेशों में, तो वहाँ पर उन लोगों से निश्चित है कि बातें की होंगी, उन्होंने जाना होगा कि क्या कैसा करती रही हैं, क्या कैसा आपने शुरू से कैसा इसको आगे बढ़ाया है, ये सब बातें करते रहे होंगे। तो ऐसे कोई प्रसंग वहाँ के हों उन लोगों के साथ की बातचीत की बड़े बड़े कलाकारों से, तो उनकी बातों को भी बता
1: कि अभी मोर एक जो लड़की है ना मारुशस में, वो लड़की द्रौपदी चिरहरन के कथा कहा थे, और मैं हमन पूछे नोला कि ये है पहली के कौन से नाटक में काम करत रही से, तो वो गाइड करके हमार गाइड वाला बताए रही से कि एक कोई राजा है, वो घोड़ा में चढ़ के आवत रही, और मतलब सामने में कोई बुढ़िया बैठे रही से मोटर मोटर धर के, तो वो सहायता मांगी, तो राजकुमार है बोला सहायता दिस, तो लड़का पहुँचाए लोकर घर तक पहुँच गए, तो

0: सोचते कि मैं अतिक गंदा हूँ, मोर बदन में फोड़ा फुंसी है, तब होले ये लड़का हा मतलब अपन घोड़ा माँ बैठा रखे, मतलब मुला यहाँ तक छोड़े ला आए हैं, तो मोर बेटी सन में मुलाकात करा के और मतलब संपर्क करा दे जाए, ऐसे बोला घर में ले जाते हैं। घर में लेके के बाद में बोला कहते कि बेटा थोड़ा बैठ, मोला छोड़े हंस तो चाय पानी पी ले बेटा जाबे, तो वो चाय पियाने पियाए के बहाना बैठार थे। और बैठारे के बाद मतलब कहते कि मोर कर कोई और नौकर चाकर नहीं है, मोर नतनी ने ये तो ओकरे हाथ लेते चाय पी ले, तो लड़की हाँ निकाल के बोला पानी देते, पानी देते तो वो मुँहला टेढ़गा करके मुँहला टेढ़गा करके देते, मुँहल सुकुड़ के देते कि ये कहाँ के फेर आ गए, मैं यहाँ ये डोकरी कोनो मिले मोल शादी के जोड़ा धर के आते, ये गुस्सा के मारे सुकुड़ के देते। वो लड़का लड़की के शकल देखते बड़ा मोहित हो जाते, खुश हो जाते, वो अपन गले के हार ला निकाल के वो ला देते, तब भी वो झोंके के बेर अतिक मुँहला बना के झोंकीस कि लड़का देखते रहिए अतिक तो सुंदर है पर ये मुँहला कैसे बनाइस, पर रा तय जतका मुँह बना थस पर मैं शादी करूँ तोरे के तोरे साथ में की के ओकर साथ में मतलब घूम घूम के वो लड़की ला पसंद करे मतलब खुश करीस, फिर बाद में ओकर साथ शादी करीस, एकर नाटक उनमन खेलत रही ने। तब उनमन जब बताइन ना तेला मैं करके बताएं कि मुँह कैसे सुकोड़ीस, गुस्सा कैसे करीस, फिर बाद में वो खुश कैसे होइस, तो उन मन मोर बर खूब ताली बजाई, तो मन भी नाटक करते छोटे छोटे कथाला लेके।
1: अच्छा, आपके सबसे अच्छे अनुभव कहाँ के रहे हैं कार्यक्रम प्रस्तुतियों के, विदेशों के?
0: पेरिस की ज़्यादा पेरिस में 5 बार गए हो ना, तो वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा लगी मुला। और दूसरा जगह गए हो तो एक एक महीना के रहे हो, बस प्रोग्राम दे आ जात रहे हो, वहाँ अपना तो हो गए है, मतलब घर का सपना तो नहीं होते, आज मोर घर खाबे आज मोर पाल्टी है, तो वो कहा थे आज मोर घर खाबे आज मोर घर के पाल्टी है, तो ये तरीका उनकर मन के व्यवहार अपना तो बदल गए, वो मन हमारे घर भी आए रही ने।
1: अच्छा, एक बात और, चूँकि ये दुनिया के संदर्भ में भारतीय लोक संगीत की परंपराओं की बात हो रही है, इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जब हमारे यहाँ के लोक संगीत को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रशंसा तो होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी बार आप कार्यक्रम प्रस्तुत करें उतनी बार उनको नयापन का आभास होगा, ऐसा लगता है?
0: हाँ, मैं हाँ एक कथा लले कि यदि मोला 5 ठो स्टेज में आप कार्यक्रम करा लो, करे के बाद में शूटिंग कर लो चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, आप मल्ला अलगे चलग लागी, अब काबर वो अलग अलग हो जाते बोला मैं नहीं समझे सकता हूँ, पर वो पक्का वो अलग अलग लागी। और एक एक महीना कौन पूछे, मैं दो दो महीना ले एक ठक कथा लगात रही हूँ, द्रौपदी चीरहरण करना है तो द्रौपदी चीरहरण, करण वध करना है दुशासन वध करना है तो दुशासन और करने वध कहा, पर उन मन ऐसे समझे नहीं कि हाँ कल तो देखे हैं गए आज हम नहीं जावन, वही आदमी मल्ला मैं हाँ एक महीना तक ले कार्यक्रम करी पर वही आदमी मन आगुच में बैठे रहा है, एक महीना तक वो मन कार्यक्रम ले नहीं छोड़े, तब अच्छा चला गया त्रिशो ही तब तो, पर हमार छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे भारत के बात करत हूँ, अब हमार छत्तीसगढ़ के बात करत हूँ, ये लोक कला जो है उमें अतेक जान है कि मरे ल बैठे रही तो उन्होंने जी जही यदि ताल सुनी तो अतेक मतलब उमें ताकत है, तेकर से ती एक कथों में है कि आजकल के जो लड़का मन गावत बजावत है ते में सिर्फ कन्हैया भरल मटका थे, और लोक कला जब शुरू होते नहीं तो उकर मन के दिल हनास थे, अतेक सुंदर हमार माटी से जुड़े हुए जो कला है इला अपना के रखो बना के रखो ओला सहयोग दे के रखबो, तभी वो कला हमार जीवित रही और दुनिया में ये कला मान और सम्मान कला ला मिली।
1: आपकी पसंद के अगर कोई पनवानी गाथा गायन में प्रसंग हो तो उनके बारे में भी बताएं जिनको आप बहुत पसंद करती
0: मैं पसंद सबो कथा मोला पसंद है, बसरते जब भीम के रोल आते ना तो भीम के समान बन जाना, दुशासन के रोल आ

0: तो दुशासन शरीर बन जाना राजा द्रोहन के रोला थे तो राजा द्रोहन बन जाते हो, कृष्ण के रोला थे तो कृष्ण बन जाते हो, द्रौपदी की बात आते तो द्रौपदी बन जाते हो, कुंती की बात आते तो कुंती बन जाता। ये मतलब दिल से बनना जरूरी है। ऊपर से बने माँ लोगल गहराई तक नहीं लेगी सकस। जब तक तय नहीं गहराई ले, गोता मार के नहीं निकालबे, तब तक ले ऊकर अंदर में कहाँ तक पहुँचाबे। अब जब के ऊपर ऊपर तय करबे तो ऊपरी ऊपर हुमन सुन के जा। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कहूँ मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये चीज गहराई से निकले, ओजन दार बन के निकले, लोगल ला सुहावे, अच्छा लगे, प्रेम करे उमें, मन ला सब बसाए उमें कि हमार परंपरा कैसन चीज है कि ये करके मैं काम करता हूँ।
1: कोई ऐसा प्रसंग आपको वाक्य ऐसा याद आता हो जिसके कारण से आपको भी ऐसा लगा होगा कि वाकई इस क्षेत्र से, इस कला से जुड़ करके जीवन सार्थक हो गया, पूरी तौर पे आपको ऐसा लगा हो?
0: हर स्टेज में लगते, हर जगह ये चीज लगते कि ये मैं अपन जीवन ला, और भगवान मोला को 60-80 साल के दे उम्र दे हो तो और मोला 100 साल के मोर उम्र ला और बढ़ा देवे ताकि मैं जन जन तक पहुंचा सकूं। अब काहे शरीर है बुढ़ापा आते, कला है नहीं बुढ़ावे, कला तो सदा जवान ही जवान रहते, और कला जवान है तेकर संग में कलाकार रहते तो उन्होंने जवान बना देते। तो मोर दिल में अतेक उमंग और आनंद आ जाते कि हे प्रभु, ये मैं अपन जीवन भर गाते रहती हूँ, मोर बुढ़ापत मत आतीस में सब लगा गा के सुनावत रहता हूँ, ये मन में आनंद आ जाते। तो ये आनंददायक चीजें है।
1: अच्छा, कोई और प्रसंग को आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें तो गायन के साथ, अभिनय के साथ आप प्रस्तुत करके बताएं। वैसे एकल ही प्रस्तुति है ये, तो बिना साज के है, लेकिन फिर भी लोगों को सुनाएं।
0: कहावत है आप मन तो बहुत अकन बात लगोठिया हो, खाली खाली में कते कन गोठिया। जैसे बेटा अब मनु चक्रव्यूह तोड़ के मारा जाते हैं तो सुहोद्रा चिल्ला के रोथे कन्हैया लग थे, हे कन्हैया, हे गिरधारी, ते तो तीनों लोखी और 14 भुवन के मालिक हो, मोर बेटा ला चारों तरफ ले जब गदा फटकारिन हुई तो चिल्ला के अब मनु कही सोई, मामा बचा, मामा बचा। अर्जुन लगत है, अर्जुन तोला दुनिया में धनुष धारी की कथे, अरे तोर बेटा हमारा गए वो समय तोला अर्जुन पिताजी के पुकारी सोई, पर भी ते वो कर सामने नहीं आए, मैं कैसा ना भागीन माया हूं, मैं कैसा ना भागीन माया हूं। ताकि पुत्र के मरे के समय ना तो ददा रहीस, ना बड़े ददा रहीस, ना तो सगे वो कर मामा नहीं रहीस, कैसा ना भागीन माया हूं। ये दुखी होके देवी सुहोद्रा चीख थे, चिल्ला थे, वो समय उत्तरा कुमारी आके कहते कि हे मामा जी, ते काय मोल बोकर बोकर देखा था, मोल आदेश दे, मोर पति के संग मत सती जाऊं। कृष्ण कहते नहीं बेटी, नहीं, ते यदि आज सती चल देवे पांडव के वंश के नाश हो जाए। काबर कि पांडव के वंश में दिया जलाने वाले पुत्र आपके गर्भ में है। तब सबे जब हम पुत्र के शोक में मरी जाबो तब फिर हमार आगे के परिवार ला कौन चला है। ते तोला मैं ना तो पति के साथ सती जान देवा, नहीं है दीदी सुहोद्रा, तय चिल्ला के मत रो, बेटा तो हो संसार में ऐसने हो, पिता और माता के खाती 6 करोड़ सेना ला मार के, मतलब अतेक वो धुलंदर रही से कि एक अकेला 6 करोड़ सेना ला मार के और विजय शंख बजाए के अलावा वो शहीद हो गए। तुम्हारे खाती संतान तो वैसे होना चाहिए। तो ओकर माँ बड़ा दुखी होके कथे कि धन्य है मोर बेटा अतेक बड़े भाग धर रही से और ये दुख मनाए। तो भगवान ला कथे, राज कर हिरन छोर दुवर कम, राज कर थेरन छोर, हाय रे दुवर कमा, राज कर थेरन छोर। भाई 17 साल के मोर बेटा हमर गे मोहन, मोला गजब समझा थो भाई, सुन कर यार जुना मदद ना कीने, सुन कर यर जुन मद तन कीने मैं।

0: तोया भागिने कहो गेहूँ दुआरी कमा राज कर थेर न छोर। ये कृष्ण के ऊपर ही मतलब जो भी कहानियाँ हैं गाथा है हमन बोला, चाहे वो अंदर अंदर से निकले चाहे वो ऊपर से निकले, पर भगवान कृष्ण के द्वारा सब बात होती।
1: विदेशों के लिए आपको आमंत्रण मिलते हैं जाने के लिए, तो उसके लिए आप तैयारियां वगैरह कैसे करती हैं?
0: का करूँ, लुगरा कपड़ा धरे का विशेष तैयारी हुआ तो साबुन मिल जाते, सोडा मिल जाते, नहाए बर्तानी मिल जाते अपन बोरिया बिस्तर धरे, कपड़ा वरना धरे, एक महीना के प्रोग्राम में 2-4 साड़ी पकड़ ले, प्रोग्राम के 2-4 साड़ी पकड़ ले और चलते बने, और कोई विशेष मन मोटरा बना के नहीं ले गए।
1: ये तो बाहरी तैयारियां हुई अपने कला की प्रस्तुति से संबंधित तैयारी
0: तो वही साड़ी पहनना है तोर गहना में जत का पहन था तो है वे, तब जैसे छत्तीसगढ़ में जो रिवाज है भेष है पहनावा है वही चला तो धर के जा भी ओकर अलावा तो कुछ नहीं धर सकस ना।
2: तीजन भाई जी, आपने पंडवानी लोक गाथा गायन से संबंधित बहुत सी बातों को बहुत अच्छी तरह से बतलाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री डॉक्टर तीजन भाई से गर्जन सिंह वरकड़े की भेंटवार्ता की रिकॉर्डिंग मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें आज शाम 7:30 पर सुनेगा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। समय याद रखिएगा आज शाम 7:30 से, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 6:30 पर कानून की बात में सुनिएगा किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध विषय पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती किरण बाजपेयी द्वारा दी गई जानकारी। आपको बता दें ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
4: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। फिर शुरू होने के बाद किया गया है।

0: जागृति शर्मा।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है।

0: असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories. He said that the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days.
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे।
3: It took 3 years for MG Narega to be implemented across the country, but I am proud of all of you. Unlike MG Narega, the Viksit Bharat G Ramji Yojana was rolled out nationwide on its very first day. The scheme guarantees 125 days of employment instead of 100 days. If more than 7.5 lakh crore rupees is utilized effectively over 5 years across 2.86 lakh gram panchayats, every village can be transformed into a prosperous and fully
2: समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material in paid ads

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य

0: के लिए गए तो समाज में फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई, और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
0: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी, और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में, और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टॉप डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया, और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15-20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे, और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ, और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया, और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उससे भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजातीय आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क, सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।

0: गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
1: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए। इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको, और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
0: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा, ये 3 बातें। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर पे की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से

0: हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गाँव में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40,00,000 लोगों को जन भागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7,000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

लीजिए सुनिए ये फिल्मी नगमा फिल्म धर्मकर्म से। स्वर है मुकेश और साथियों का, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

ना रोने की वजह होती है ना हंसने का कोई बहाना, ऐसा होता है बचपन जो खुलकर है बिताना। बचपन के दिन बहुत सुहाने होते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था बस मुझे बड़ा नहीं होना, और बड़े होने के बाद भी लगता है वापस फिर से छोटी हो जाऊं। हाँ, बचपन में ये जरूर होता था कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन जो खेलने का मजा था वो अपना अलग था। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो भाई इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, ऐसे में अगर हम अपना बचपन भूल जाएं तो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। तो बचपन को याद रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को प्यार देना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है रेडियो किड्स, जिसमें बच्चों की खिलखिलाती मुस्कान को आप सुन पाते हैं, उनकी प्यारी बातें सुनते हैं, और कितने टैलेंटेड हैं ये बच्चे भाई ये भी जानने का मौका मिलता है। आज रेडियो किड्स में हमारे कौन कौन से बच्चे आए हैं, उनमें क्या क्या

0: टैलेंट छिपा है ये आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लीजिए आज आपके साथ है कौन। आज आपके साथ हूँ मैं सुरती, करूंगी आपके साथ ढेर सारी बातें और बहुत सारे बच्चों की प्यार भरी बातें आज आप तक पहुंचाऊंगी। इससे पहले कि हम जाने कि बच्चे हमारे जो आज आए हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, उनमें क्या क्या टैलेंट छुपा है, एक वेलकम तो ले लें। तो हमारे प्यारे क्यूट बच्चे अब आपका स्वागत करने वाले हैं अपने स्टाइल में। तो विद दिस 1, 2 and 3
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: आहा, क्या बात है भाई, हमारे क्यूट बच्चों ने एक प्यारा सा स्वागत आपका किया है। अब ये तो जान ले कि आखिरकार ये क्यों

0: तो विद दिस 1, 2 and 3
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: आहा, क्या बात है भाई, हमारे क्यूट बच्चों ने एक प्यारा सा स्वागत आपका किया है। अब ये तो जान ले कि आखिरकार ये क्यूट बच्चे हैं कौन कौन, तो मैं अब सारे बच्चों से कहूंगी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हमारे सुनने वाले जान सकें कि आज कौन कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले बच्चे छोटे वाले से। सबसे पहले, हाँ जी, आपका क्या नाम है बेबी?
2: राजवीर।
0: कौन सी क्लास में हो?
2: वंशी।
0: और आपकी एज क्या है?
2: 5 years।
3: मेरा नाम वियान है, मैं 7 साल का हूँ और 3rd में हूँ।
4: मेरा नाम अथर्व है, मैं 12 साल का हूँ और मैं 7th में हूँ।
5: मेरा नाम सारांश है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
6: मेरा नाम अर्णव है, मैं 6th क्लास में हूँ और मैं 10 साल का हूँ।
7: मेरा नाम स्वर्णिम है, मैं कक्षा 8 में हूँ और मैं 13 साल की हूँ।
8: मेरा नाम क्षितिज है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
9: मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं अभी 14 साल की हूँ और मैं अभी 10th क्लास में हूँ।
0: ओके, क्या बात है, एक बार सारे बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजाते, दिल खोल के तालियां।

0: अजमेर आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है?
1: कि छोटा ही रहना।
0: छोटा रहना, राजवीर को छोटे रहना बहुत पसंद है। अब राजवीर से हटकर हम बात करते हैं अथर्व से। अथर्व, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना।
0: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना, अमेजिंग। अथर्व को क्या पसंद है?
3: खेलना।
0: खेलना, अथर्व को खेलना बहुत पसंद है। अब बात आ गई है आगे बढ़ने की, तो आगे हमारे साथ है सारांश।
4: मेरा फेवरेट टॉपिक है क्रिकेट खेलना और गिटार प्ले करना।
0: सारांश, आप क्रिकेट खेलते भी हो?
4: यस।
0: कितना खेल?
4: स्कूल की हॉलीडेज होती हैं तो उन दिन ज्यादा खेलता हूँ।
0: ओके, और आपने कहा गिटार प्ले करना आपको पसंद है?
4: Yes.
0: कितना टाइम डिवोट करते हो आप गिटार के लिए?
4: मैक्सिमम 1 to 2 hours इन अ डे।
0: ओ वाओ, क्षितिज की बारी आ गई है। क्षितिज, आपको क्या पसंद है?
5: खाना बनाना।
0: खाना बनाना, ओ वाओ। तो सबसे ज्यादा खाने में आपको क्या बनाना पसंद है?
5: नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज।
0: अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई है अर्णव की। अर्णव को क्या पसंद है?
6: मेरे को कीबोर्ड बजाना पसंद है।
0: अरे वाह, अर्णव आप कीबोर्ड प्ले करते हो, कितना टाइम डिवोट करते हो कीबोर्ड प्ले करने में?
6: हाफ आवर एंड वन आवर।
0: हाफ आवर एंड वन आवर। अब हम आपके टैलेंट को भी देखेंगे, आप भाई 1 घंटा देते हो तो कितने टैलेंटेड हो ये भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप सबके टैलेंट को जाने, स्वर्णिम की बारी आ गई है। स्वर्णिम, आपको क्या पसंद है?
7: स्विमिंग करना और कीबोर्ड बजाना पसंद है।
0: क्या बात है, स्विमिंग करना तो मुझे भी पसंद है। आप कितना स्विमिंग करते हो?
7: मैं एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस में जाता
0: हूँ। वेरी नाइस। और कीबोर्ड कितने घंटे प्ले करते?
7: 1 घंटा।
0: 1 घंटा, दैट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। अनन्या,
8: मैं आर्ट करती हूँ बहुत ज्यादा, तो उसी पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है।
0: लवली, तो आपने जान लिया कि हमारे बच्चों को क्या क्या पसंद है, कितने टैलेंटेड है ये। इनमें डेफिनेटली बहुत सारी स्किल्स भी है, पढ़ाई के साथ साथ एक अलग टैलेंट हर बच्चे में होता है। तो यहाँ पर भी हमारे स्किलफुल बच्चे आपके सामने हैं, इनकी स्किल्स के बारे में चलिए जानते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्या क्या और सीखा है, या किसमें इनकी एक्सपर्टीज है? बहुतों ने हमें बताया गिटार पसंद है, कीबोर्ड प्ले करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है। तो ऐसे में क्या क्या टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा है, उस टैलेंट को सिर्फ जानना नहीं है, अब हम सुनेंगे भी, आपको सुनाएंगे भी।

सो हमारे प्यारे क्यूट बच्चों की प्यारी प्यारी आवाजें तो आपने सुन ली, लेकिन अब बारी आ गई है ये जानने की कि आखिरकार इनका फेवरेट टॉपिक क्या है, क्योंकि हर किसी का फेवरेट टॉपिक होता है। तो हम सबसे छोटे क्यूट राजवीर से शुरू करते हैं।

अमेजिंग ब्यूटीफुल, एक बार जोरदार ताली हो जाए. लवली परफॉर्मेंस, क्या बात है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस बाय आर चिल्ड्रन. तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था जो हमने सुना और बहुत ही ब्यूटीफुली बच्चों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए. तो ये तो शुरुआत थी, कहते हैं ना, तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. यानी कि अभी बहुत सारे गाने सुनने बाकी है, बच्चों के टैलेंट को हम सुन रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं.

बचपन बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लवली, और ऐसे में हम इन बच्चों की प्यारी प्यारी सी परफॉर्मेंसेस का आनंद ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस की ओर।

तो चलते चलते इनके प्यारे गीत याद रखना, इनकी प्यारी बातें याद रखना और साथ ही इनकी प्रतिभा को भी याद रखना। ये हमारे रेडियो किड्स हैं और हमारे रेडियो किड्स ने जो अपने जलवे दिखाए हैं, ये जलवे हमेशा याद रखने वाले हैं। आई एम श्योर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आगे भी आपको आने वाले टाइम में हमारे प्रोग्राम्स और पसंद आएंगे। तो रेडियो किड्स में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। इसमें बाल प्रतिभागी थे राजवीर, विहान, अथर्व, सारांश, अर्णव, स्वर्णिम, क्षितिज और अनन्या। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्वरति जिंदल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तकनपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, जिनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर

0: सरोवर यात्रा आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा आधारित स्केलेबल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from 20th of this month and continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said the government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to abusive material. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. The government is reviewing whether the platform has complied with India's intermediary safety guidelines. The Indian Council of Medical Research, ICMR's flagship initiative, ICMR Minds, has won gold medal at National Awards for E-Governance 2026. The award was presented by Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh. The Ministry of Health and Family Welfare informed that ICMR Minds is an implementation research study on the integration of screening and management of mental and substance use disorders with other non-communicable diseases. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur.

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्मी तराना, फिल्म चुपके चुपके से। स्वर है लता मंगेशकर का और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के

0: लाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपने नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: लीजिए सुनिए अगला नगमा, फिल्म परख से लता जी की आवाज में।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।

0: शास्त्री मार्ग पूसा नई दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट का एक पद उपलब्ध है और इसके लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.niap.res.in। मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। लाइब्रेरियन सह सूचना अधिकारी एक पद, वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक एक पद। पदों की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का विवरण उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.idsa.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 8 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, सामान्य शर्तें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iiscrmohali.ac.in। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उपनिदेशक चिकित्सा रिक्तियां हैं 2, कनिष्ठ प्रोग्रामर रिक्ति है 1, कनिष्ठ लेखाकार रिक्तियां हैं 4, आशुलिपिक 7 रिक्तियां उपलब्ध हैं और कनिष्ठ सहायक पद के लिए 39 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता, आरक्षण, पाठ्यक्रम और अन्य नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट natboard.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाश।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे।
1: श्रोताओं, क्लास 12 के नतीजे आए हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने, काउंसलिंग सेशन में शामिल होने और अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की योजना बनाने में व्यस्त होंगे।
2: बट करिश्मा, फॉर मेनी फैमिलीज सिक्योरिंग एडमिशन इज ओनली हाफ द जर्नी। द बिगर चैलेंज इज अरेंजिंग द मनी टू पे फॉर इट। So listeners, what if there was one digital platform where you could apply for an education loan from the comfort of your home? Well, that's exactly what the PM Vidya Lakshmi scheme aims to make possible.
1: PM Vidya Lakshmi योजना भारत सरकार की एक पहल है जो कई बैंकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है ताकि छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ना जाना पड़े। योग्य छात्र अपने परिवार की आय और अन्य शर्तों के आधार पर सरकार से ब्याज में मदद भी पा सकते हैं।
2: And this scheme is available for students admitted to eligible quality higher education institutions. And the process is actually very simple. First, you need to register on the PM Vidya Lakshmi portal using your basic details. Second one, filling one common education loan application form with information about yourself, your course, college fees and the required documents.
1: और इसके बाद तीसरे नंबर

0: पे है, छात्रों को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही बैंक चुनना होगा और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। और नंबर चार, फिर बैंक आपके आवेदन की समीक्षा करता है, आपके दस्तावेजों की जांच करता है और सीधे पोर्टल पर स्टेटस अपडेट करता है। और आखिरी चरण में अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तो आपको मंजूरी की जानकारी मिलेगी और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार लोन की रकम जारी कर दी जाएगी।
1: एंड वी आर डन। So students who qualify for the interest subvention are notified after loan sanction and disbursement to claim the benefit. And to know more or apply, kindly visit PM Vidya Lakshmi portal. And for complete scheme guidelines, review the official Invest India PM Vidya Lakshmi PDF or explore the PM Vidya Lakshmi FAQs for more specific details. So listeners, as we have told you before, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India Now. Reports and capsules, tributes, there is so much more that we will be unfolding over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, shall we?
0: Bilkul.
1: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following results.

0: for more specific details. So listeners, as we have told you before, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India Now, reports and capsules, tributes. There is so much more that we will be unfolding over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, shall we?
1: Bilkul.
0: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz.
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की.
0: Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days.
1: छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया.
0: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today.
1: और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला.
0: Now we may proceed. This is our segment Dateline India. Well, we will talk about My Bharat or Mera Yuva Bharat initiative. Well, every young person dreams of making a difference. Some want to help their community, others to gain experience. And also, there are many who aspire to become better leaders. But the biggest challenge has always been knowing where to begin. Well, India now has an answer for it. It's called My Bharat or Mera Yuva Bharat, a platform where Digital India empowers Young India.
1: तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. लेकिन सवाल यह है कि लाखों युवाओं को सार्थक मौका कैसे मिला जाए और इससे कैसे जोड़ा जाए. आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी ऊर्जा बर्बाद ना हो, और इसका जवाब है माई भारत पहल, जैसा कि शगुन ने अभी बताया.
0: So it was launched in October 2023 under the Ministry of Youth Affairs and Sports. And My Bharat is much more than a website or an app. Well, think of it as India's digital playground for young minds, a place where learning, volunteering, leadership and career opportunities, they all come together.
1: तो हो सकता है कि आपने लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पेड़ लगाते, बाढ़ के समय मदद करते या फिर आस पड़ोस में सफाई अभियान में शामिल होते हुए देखा हो और सोचा हो कि काश मैं भी ऐसी ही किसी चीज का हिस्सा बन पाता, तो माई भारत ठीक यही मुमकिन बनाता है.
0: And Karishma, today the platform offers over 1.5 lakh volunteering opportunities across the country. And well, the best part is that everything is digital, from registration to attendance to geotagging, certificates and impact tracking, and no paperwork. Absolutely no paperwork at all, no running from one office to the other.
1: बिल्कुल, लेकिन volunteering कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है. मान लीजिए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं. आप जानते हैं कि क्लासरूम में सीखना जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयर अक्सर प्रैक्टिकल अनुभव मांगते हैं, और यह अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? यह भी आपको माय भारत फिर से यहाँ पर काम आएगा, जहाँ से आप अनुभव ले सकते हैं.
0: And the platform offers more than 24,000 experiential learning programs along with internships, apprenticeships and industry exposure.
1: तो अब युवा, आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके असल जिंदगी के स्किल सीखकर और अपने रिज्यूमे बनाकर अपनी गर्मियां बिता सकते हैं. कमाल की बात है ना शगुन?
0: Well, right. If we speak of resumes, that's actually learning beyond textbooks. And well, how many of us have stared at a blank screen wondering what should I even write in my CV, what should I even begin with, right?
1: बिल्कुल सही कहा.
0: Everyone has faced that.
1: जी.
0: Dilemma.
1: और माय भारत युवाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की तैयारी करने में मदद करने के लिए AI powered resume builder, mentoring support और career guidance जैसी सुविधाएं भी देता है.
0: And if we are being very honest, most people hear words like constitution or public policy and they immediately imagine long, boring lectures. But what if learning about these topics felt more like participating than memorizing? And that's exactly what My Bharat offers. And My Bharat offers this particular things and these initiatives like the Viksit Bharat Youth Parliament and engaging digital quizzes. Young Indians, they don't just learn about democracy. Well, Karishma, they experience it.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं, जरा सोचिए कि आप एक पोडियम के पीछे

0: करते हैं और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा सिर्फ नेता ही करते हैं? खैर, अब ऐसा नहीं है। और क्या आपको पहली बार वोट देने का अनुभव याद है? वह उत्साह, वो उंगली पर लगी पहली बार स्याही और उसकी फोटो खींचना आजकल तो नया ही ट्रेंड है।
1: राइट, एंड दैट सुप्रीम फीलिंग दैट आवर वोट मैटर्स टू। And through the My Bharat, My Vote campaign, lakhs of first-time voters, they are actually learning about the constitution, democracy and informed voting. How great is that?
0: और इसके साथ ही शगुन, क्या आपको लगता है कि आपको हाल ही में जो हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो तो याद ही होगा। पूरे भारत में लाखों लोगों ने अपनी योग मैट बिछाई और साथ मिलकर सेहत और तंदुरुस्ती का जश्न मनाया। लेकिन इतने बड़े स्तर के आयोजन अपने आप नहीं होते हैं।
1: Right, and behind many of them were My Bharat volunteers coordinating, organizing and encouraging community participation. And this same platform also supports the Nasha Mukt Bharat campaign, cleanliness drives, padyatras and countless community initiatives where ordinary young people, they create extraordinary impact.
2: Or is India's youth today dream big and move fast? To transform this energy into purpose, the Government of India launched Mera Yuva Bharat or My Bharat on Rashtriya Ekta Divas in October 2023. My Bharat is a national movement providing tools and opportunities for young people to contribute through volunteering, skilling and leadership, turning ideas into impact. In 2 years, it has grown into India's largest youth engagement platform. Over 2 crore young Indians and 1.2 lakh organizations have joined, creating 14.5 lakh volunteering opportunities through 16,000 youth clubs and 60,000 institutions. The My Bharat mobile app, launched in 2025, makes participation easier with AI-based guidance, voice assist, smart CV builders and digital certificates. My Bharat 2.0 will enhance this with mentorship, entrepreneurship support and integration with Skill India, Digital India and Fit India.
0: तो भारत के युवा न सिर्फ देश के भीतर बदलाव ला रहे हैं, बल्कि वे ग्लोबल मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माय भारत के जरिए युवा नेताओं ने यूनाइटेड नेशन ECOSOC यूथ फोरम 2026 में हिस्सा लिया और दुनिया के साथ भारत के विचार साझा किए।
1: एंड अदर्स ट्रैवल टू इंडियाज बॉर्डर विलेजेस अंडर द विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट रिमोट रीजंस एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
0: बिल्कुल सही। और असल में जब तक आप अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी और कहानियों को नहीं जानते, तब तक आप अपने देश को सच में नहीं जान पाते।
1: आई वुड लाइक टू ऐड देयर दैट द मैप ऑफ इंडिया इजंट जस्ट मेंट टू बी सीन, इट्स एक्चुअली मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। एंड एन अमेजिंग फैक्ट फॉर आवर लिसनर्स दैट लास्ट मंथ माय भारत अर्नड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स टेकिंग एन ऑनलाइन क्विज विद इन 1 week. And that is close to 4 lakh verified participants. 4 lakh.
0: वाओ। और शगुन, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत के युवा कितने उत्साह के साथ डिजिटल भागीदारी को अपना रहे हैं। भारत में अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां हैं और माय भारत इसी विविधता का जश्न मनाता है। यह ऐप भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। मौके बस कुछ ही टैप से दूरी है।
1: And perhaps the most exciting part is the fact that My Bharat 2.0 is bringing artificial intelligence, multilingual technologies, open APIs and digital credentials together to create an even smarter platform. Now picture India a few years ago from now, over 100 million young Indians connected through one platform, learning, volunteering, leading and creating impact.
0: तो श्रोताओं, माय भारत का विजन ठीक यही है, युवाओं के लिए देश का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां युवा सिर्फ बदलाव की बातें नहीं करते बल्कि असल में उसका नेतृत्व करते हैं।
1: Absolutely, Karishma. A nation where technology isn't just about scrolling through feeds or ordering groceries, but also about learning, volunteering, innovating and together building a stronger and bold India.
0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और शगुन, सबसे पहले बात कहाँ की करेंगे?
1: वेल, वी विल बी हेडिंग टू ले। सो करिश्मा एंड आवर लिसनर्स, इमेजिन ड्राइविंग थ्रू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिस्टीन लैंडस्केप्स ओनली टू लीव स्कार्स दैट कुड लास्ट फॉर डेकेड्स। So to safeguard its unique and fragile ecosystem, Ladakh has launched a new environment protection force

0: In cities, he urged people to spend at least 1 hour away from mobile screens every day and devote that time to physical activity and sports for better health.
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है. एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है. साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है. आज देश में 4 में से 1 नागरिक ओवरवेटेज है. क्यों न हम प्रधानमंत्री जी की ओबेसिटी खिलाफ मूवमेंट के साथ जुड़ के अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है.
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा. दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया.
0: एंड इन द फीफा वर्ल्ड कप, फ्रांस बुक देयर प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स विद अ हार्ड फॉट 1-0 विक्ट्री ओवर पैराग्वे इन द राउंड ऑफ 16. एट फिलाडेल्फिया, कैप्टन किलियन एम्बेपे स्कोर्ड द ओनली गोल फॉर द मैच फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट इन द 70th मिनट आफ्टर वीडियो असिस्टेंट रेफरी अवॉर्डेड फ्रांस अ स्पॉट किक. फ्रांस विल नाउ फेस मोरक्को इन द क्वार्टर फाइनल्स.
2: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों के जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
3: आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं. वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे. उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया. आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. वे बंगाल में नादिया के निवासी थे. 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई.
4: जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं. इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली. धरती माँ के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन.
3: आज हम दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. वे ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे. बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए. उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया.

0: गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गा मल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गा मल को हमारा शत शत नमन।
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने आज रायपुर के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 70 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली। तीजन बाई को उनकी जो कहानियां हैं, महाभारत की कहानियों पर आधारित पंडवानी गायन शैली को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का श्रेय जाता है। तीजन बाई को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गानियारी गांव में हुआ था। उन्होंने अपने नाना ब्रजलाल पारधी से पंडवानी की प्रेरणा ली और बचपन से ही महाभारत के पात्रों को अपनी आवाज और अभिनय के माध्यम से मंच पर जीवंत करना शुरू कर दिया था।

की चर्चा कर रहा था वे कह अरे सब काम तो हो गए पर नगर द्वार का मैं अभी तक ले खबर नहीं पहुंचा।

0: देख के चारों तौर पर सेना मल्ला कहे कि सब तो सही में आ गए हैं, पर एक रूपति द्वारका नाथ ले खबर दे गए नहीं।
1: हाँ
0: तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ।
1: हाँ
0: और न्योता दे के बलराम कृष्ण ले आ जाओ।
1: हाँ
0: तो राजा दुर्योधन चल चल कर घोड़ा ले सजावे, घोड़ा रथ में बैठकर बेग रथ दौड़ाते हुए द्वारका में जा पहुंचे तो सही।
2: Well, with her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Teerenbai gave Pandavani a new identity not only across India but also internationally.
3: तो तीजनबाई का जो गायन था वो वेदमती शैली यानी कि बैठ के गाने की परंपरा और कापालिक शैली यानी कि खड़े होकर अभिनय और गायन के साथ का अद्भुत मिश्रण रहा, और यही वजह है कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन उन्होंने किया और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया।
2: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग हैरी लिंक, सॉन्ग राइटर एंड एक्टर. He wrote and co-wrote several well-known jazz standards. The song that we chose is These Foolish Things.

और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के निर्माता और न्यू थिएटर्स के संस्थापक बीएन सरकार को आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आगे चलकर भारतीय फिल्म उद्योग को नई दिशा देने का फैसला किया। वर्ष 1931 में उन्होंने कोलकाता में न्यू थिएटर्स की स्थापना की। यह स्टूडियो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर का प्रतीक बना और यहां देवदास, चंडीदास, मुक्ति, विद्यापति तथा भाग्य चक्र अनेक कालजयी फिल्मों का निर्माण हुआ। न्यू थिएटर्स ने भारतीय फिल्मों में तकनीकी नवाचार, उच्च गुणवत्ता और पार्श्व गायन यानी कि प्लेबैक सिंगिंग जैसी परंपराओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: तो बीएन सरकार ने अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों, निर्देशकों और संगीतकारों को मंच प्रदान किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 1970 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा वर्ष 1972 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जेमी रॉयल रॉबी रॉबर्टसन and the musician, composer and producer. Robertson was the one-time lead guitarist for Bob Dylan's backing band. He was also guitarist and primary songwriter of the band from its inception until his 1976 departure.

0: और इसके साथ ही आज भारतीय बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्मदिन है। सिंधु ने कम उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और प्रसिद्ध कोच पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था और देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
1: टुडे इट्स अ बर्थडे, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट सिंधु हैज वन मेडल्स एट टूर्नामेंट्स एंड सो मेनी टूर्नामेंट्स।

0: Well, he was influential on new trumpet players from the late 1930s into the 1940s. He was also an actor in a number of films that usually featured his band.
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और शगुन चोपड़ा को. नमस्कार.
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. 5 बजे हैं, सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है. थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा. ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है. लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोठ.

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, बिशुनपुर, आबादी, सिलाजू, आनंदपुर, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटापानी, श्रीटोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, उदराझरिया, साजापानी, सोनारपहरी, बर्नीझरिया, सोनगेरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 100

0: ग्यारह है, ये कूड़े केला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामार लोटान कोयलार सागरपुर ढोढ़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या ग्यारह है, ये गीत कुमारी लबेद गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वनमंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है, ये लालपुर कोयलार गडरा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी मड़ई कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है, ये झिंगोल तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी भैंसगढ़ी बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है, ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है, ये मोहदा सैहा भाटा बरबसपुर फुरफुंदी गुड़ागढ़ ताल दादर खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वनमंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है, ये ओर ताराझर डडईपानी कोलापारा बुडार छिंदौला लूठापारा जालकीपारा फरसरा दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 7:30 से। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विदुषी तीजनबाई एक स्मृति शेष श्रद्धांजलि पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:00। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। युवाणी शाम 5:10 पर इसमें सुनेगा आजकल विषय होगा समय का महत्व समझें। आज मेरी पारी है, इस क्रम में पारी होगी दिव्या धुर्वे की। साथ ही सुनिएगा क्रम नए तराने। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर, इसमें आज आप सुनेंगे सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख होगा छत्तरधारी प्रजापति का।

कानून की बात ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध।

इस विषय पर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी से की गई बातचीत, ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:30 पर। पब्लिक स्पीक कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:05 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगी उर्मिला बढ़ेरा। और इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगी स्वाति देशपांडे। कथायन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 सुन सकते हैं सुलेखा पिंडसे का गाया राग देसी। और इसी कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अमीर खां का गाया राग दरबारी। कल सुबह 11:05 पर सुनेगा कार्यक्रम फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। लोक रंजनी में कल दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे भगत साहू और साथी। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: शाम की ठंडी हवा कुछ संदेश लेकर आई है, थके हुए चेहरों पर फिर मुस्कान सजाने आई है। दोस्तों की दास्तां और कई किस्से लेकर आई है, कुछ बातें सपनों की है, कुछ हौसलों की कहानी है। ऐसे ही रंगों से सजी हमारी युवाणी है। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आप और हम शुरू करते हैं युवाणी का सफर, और इस सफर में आप स्वीकार कीजिए हमारा यानी सुयश कुमार साहू
1: और अपेक्षा शुक्ला का स्नेह भरा
0: नमस्कार।
1: वाह भाई सुयश, तुमने तो ऊर्जा से भरे शब्दों के साथ युवाणी की शुरुआत की है भाई। और साथियों, आज ऐसा लग रहा है जैसे शाम की ठंडी हवाओं में सुयश की पंक्तियों की तरह ऊर्जा और ताजगी बहने लगी है।
0: हाँ बिल्कुल अपेक्षा, क्योंकि देखो ना, बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है, वातावरण में अब ठंडकता है।
1: वाकई और ये तो सही कहा तुमने।
0: हाँ, और हम बाहर निकल कर प्रकृति में देखें तो पेड़ों में उनकी हरियाली अब लौट चुकी है, नए पत्ते आ चुके हैं, यानी कि यह प्रकृति ने अपना रूप संवार लिया है। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो काफी आनंद आता है, और इन्हें देखकर हमारे मन में भी स्वयं को बेहतर बनाने का एक नया ऊर्जा और नया संकल्प जागृत होता है।
1: बिल्कुल सुयश, जैसे तुमने प्रकृति से प्रेरणा लेने की बात कही है, तो यही प्रेरणा है जैसे पेड़ सही समय आने पर अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो वो अपने लिए जमीन में अपने जड़ों में जल संचित करके रख लेंगे। इसी मौसम में वो अपनी नई पत्तियां भी बना लेते हैं दोस्तों।
0: और साथियों, पेड़ जो जल अपने जड़ों में बचा कर रखते हैं, वह उन्हें गर्मी में जीवित रहने में मदद करती है। तो वैसे ही पक्षी भी पूरे साल मेहनत करके खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते हैं, और जब बरसात आती है तो भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
1: यानी प्रकृति समय का सही महत्व जानती है।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए साथियों कि समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हम समय रहते कोई कार्य कर लेंगे तो समय निकल जाने पर उस कार्य को ना करने का केवल पछतावा ही रह जाता है।
0: और यदि हम समय पर मेहनत करते हैं तो सही समय पर काम पूरा होने की खुशी भी होती है।
1: और ये वाली जो खुशी होती है ना दोस्तों, सारी खुशियों से अलग सुकून देती है।

0: और साथियों, जब सही वक्त पर हमारा काम पूरा हो जाता है तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है ना अपेक्षा? तुमने कभी महसूस किया है?
1: हाँ बिल्कुल भाई, और मैंने समय पर काम पूरा ना होने पर मिलने वाला पछतावा भी बहुत अच्छे से महसूस किया है।
0: अच्छा, तभी तो कहता हूँ कि काम जल्दी किया करो।
1: अच्छा,
0: जल्दी जल्दी काम करोगी तो खत्म भी जल्दी होगा।
1: ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने एक बार ही मतलब मुझसे ये गलती हुई थी। अब काम मैं समय पर पूरा कर ही लेती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी ना खुद लेट आती हूँ और फिर ट्रैफिक का बहाना बनाऊं।
0: मैं कब लेट होता हूँ भाई? और जो तुम्हें कार्यक्रम के 5 मिनट पहले चाय पीने जाना होता है उसके बारे में नहीं बताओगी?
1: चाय, वो तो चाय के प्रति मेरा प्रेम का मामला है, इसमें तुम ना ही पड़ो तो ज्यादा सही रहेगा।
0: हाँ भाई, अब जब मौसम ही चाय और गर्म पकौड़ों वाली है तो फिर हमारे प्यारे चाय को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आया करो।
1: फिर वही बात।
0: अरे अच्छा, चलो छोड़ो। और जो हमारे श्रोता साथी हमें सुन रहे हैं उन्हें हम यही संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति से हमेशा सीख लेती रहने चाहिए और समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो समय पर मेहनत नहीं करता ना, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है और उसे असफलता का सामना भी करना पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरह।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब व्यक्ति सफल हो जाता है ना, तो वह खुद में भी एक सकारात्मक ऊर्जा धारण कर लेता है।
1: बिल्कुल,
0: और इससे उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है।
1: इसलिए साथियों, हमें प्रकृति को देखकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग व्यक्ति को अनुशासित और सफल बनाता है। समय के सदुपयोग से व्यक्ति परिश्रमी बनता है और सकारात्मक ऊर्जावान भी बनता है।
0: बिल्कुल मेरी तरह। और अपेक्षा, प्रकृति से प्रेरणा लेने की बात हो रही है तो भाई, प्रकृति से प्रेरणा तो तभी ले पाएंगे ना जब हम घर और काम के बीच समय निकालकर प्रकृति के बीच जाएंगे, प्रकृति को समझेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही बात है। जब तक हम अपने रोजमर्रा और भागदौड़ की जिंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल, इसलिए यह भी जरूरी है साथियों कि हम अपने जीवन में कुछ समय खुद के लिए निकालें, कुछ समय प्रकृति के लिए निकालें, कुछ समय परिवार के लिए निकालें। क्योंकि भाग दौड़, काम धाम, यह सब कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन परिवार के साथ, प्रकृति के साथ समय बिताने का मौका बार बार नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि साथियों, समय तो समय है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस अपनी धुन में चलता जाता है।
0: बिल्कुल, समय के साथ हमें किसी का साथ मिलता है तो किसी का साथ छूट जाता है। और वैसे ही आज हमारे बीच से हमारे छत्तीसगढ़ की विश्वविख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई भी समय की धारा में बहती चली गईं।
1: जी हाँ दोस्तों, आज डॉक्टर तीजन बाई हमारे बीच नहीं रही। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पंडवानी को विश्व पटल ले जाकर उन्होंने पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके महान योगदान को देश कभी भूल नहीं पाएगा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं क्रम आज मेरी बारी है, जिसमें आज बारी है दिव्या धुर्वे की।
4: सभी दोस्तों को दिव्या धुर्वे का नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सपनों की उड़ान के बारे में। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है, किसी का अच्छा करियर बनाने का, किसी का अपने परिवार को खुशियाँ देने का, तो किसी का दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इस रास्ते में कई बार असफलताएं आती हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी हम खुद भी अपने आप पर शक करने लगते हैं। फिर भी जो लोग अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखते हैं, वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं।

दोस्तों, सपनों की उड़ान में सबसे ज़रूरी चीज़ है हिम्मत। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं या परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सपने साधारण लोगों ने ही पूरे किए हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे रास्ते भी बन जाते हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ की मेहनत से एक दिन ज़रूर रंग लाती है।

कभी कभी हमारी यात्रा में ऐसे पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। याद रखिए, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का भी नाम है। इसीलिए छोटी छोटी असफलताओं से घबराइए मत, क्योंकि यही अनुभव हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। ज़िंदगी में सपने देखना जितना ज़रूरी है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना भी उतना ही ज़रूरी है। रास्ते में चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन अगर हमारा विश्वास अपने आप पर बना रहे तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसीलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़िए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम आज मेरी बारी है, जिसमें आज बारी थी दिव्या धुर्वे की।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपेक्षा, मेरे मन में एक सवाल है, तुम कहो तो मैं पूछूं।
0: बिल्कुल सुयश, बिल्कुल पूछो।
7: अच्छा, जब हमें समय बिताना होता है, मतलब हमारे पास कुछ काम ना हो करने को और हमें समय बिताना हो, तो हमें क्या करना चाहिए?
0: ये तो बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया तुमने। हम उस खाली समय में अलग अलग कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और अपनी हॉबीज पे भी मतलब ये जो सारा समय है उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम खुद को मनोरंजित भी तो कर सकते हैं ना।
7: मुझे ऐसा लगता है अपेक्षा कि गाने सुनकर ना अगर कोई काम किया जाए तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, मैं ये जो इशारा तुम कर रहे हो ना सुयश, वो बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि अभी तुमको समय भी बिताना है और तुम्हारा गाना भी सुनने का मन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्रम नए तराने की ओर और सुनाते हैं तुम्हें और हमारे श्रोताओं को ये गीत।

0: साथियों, ये खूबसूरत सा नगमा अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। स्वर थी अरिजीत सिंह और शिल्पा राव के, गीत था मीता भट्टाचार्य का और संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की नर्मदा धाम सुरसुली से बिंदु यादव, सरस्वती कविता ममता यादव की, भाटापारा चूड़ी लाइन से अब्दुल मजीद कुरैशी, रोहाना बेगम और मोहम्मद साजिद की, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता कमलकांत वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी की, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू की। सुयश, कितना सुहाना मौसम है ना, मॉनसून का आगमन हो गया है और चारों तरफ पानी, बारिश और हरियाली ही हरियाली है।
0: वाकई अपेक्षा, लेकिन बारिश के मौसम में कितनी परेशानी भी तो होती है, नदी नाले उफान पर होते हैं, ऐसे में हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए।
1: वाकई दोस्तों, नदी नालों से दूर रहना अति आवश्यक होता है और ज्यादा आवश्यक हो तो ही घर से निकले। बिजली के तार और आकाशीय बिजली से भी बचना इस मौसम में बहुत जरूरी रहता
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है, और मौसम के मजे ले दोस्तों, लेकिन सावधानी भी जरूरी है।
1: बातें आगे भी जारी रहेंगी दोस्तों, लेकिन सुनते हैं ये अगला गीत।

0: मिली नायर और अमित त्रिवेदी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काय पोछे का ये गीत। गीत लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की हरदेव लाल पारा, सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, करी भदर से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी देवी सोनवानी, कुमारी रितिका, गिन्नी लक्की, परी पिहू। और भाई खेलों से मेरा तो विशेष लगाव रहा है अपेक्षा, और तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद थे ये मैं जानना चाहता था।
0: मैंने बचपन में ना सुयश ढेर सारे खेल खेले हैं, जैसे पिट्टूल, बिल्लस, परी पत्तर, गिल्ली डंडा, लुका छिपी, कंचे, तिरी पासा, मतलब ढेर सारे खेल खेले हैं मैंने।
1: वाह क्या बात है भाई। ये सब खेल खेलने में बड़ा ही मजा आता था, लेकिन आजकल के बच्चे तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं,
0: क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ फोन और वीडियो गेम में व्यस्त रहते हैं।
1: सही बात है। साथियों अपने आसपास के बच्चों को और अपने घर के बच्चों को इन खेलों से अवगत कराएं और उन्हें इन सब खेलों के बारे में बताने की कोशिश जरूर करें।
0: बिल्कुल साथियों, बातें आगे भी जारी रहेंगी, सुनते हैं ये अगला गीत।

0: फिल्म लुका छिपी से अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में ये सुंदर सा नगमा आप सुन रहे थे, जिसका गीत लिखा था कुणाल वर्मा ने और संगीत से सजाया था अभिजीत वाघानी ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर की और शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश सचिन और वाणी वर्मा की।
0: तो दोस्त वो है जो हमें हंसाते हैं, दोस्त वो है जो हमें सिखाते हैं,
1: दोस्त वो है जो साथ निभाते हैं, दोस्त वो है जो हमें जीना सिखाते हैं,
0: दोस्त वो है जो जिंदगी जीने की वजह बन जाते हैं।
1: तो साथियों आइए उन बीते दिनों को याद करते हैं और सुनते हैं ये अंतिम गीत।

0: साथियों, यादों से भरी ये गीत अभी आप सुने थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म था शिशोरे और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सजाया था प्रीतम ने।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की शिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद आदित्य प्रकाश सेन की, रिंगनी से दिनेश करुणा वर्मा की। साथियों, इसी के साथ हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दें कल के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे क्रम सर्जना और इंद्रधनुष। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला
0: और सुयश कुमार साहू को इजाजत। स्वीकारिए हमारा नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है, हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

0: महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का है।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सूरजपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 1 जुलाई से लागू हो गई है। ये योजना मनरेगा का स्थान लेगी। इस योजना के शुभारंभ अवसर पर सूरजपुर में 2 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं जिला कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जीरामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि आधारित कार्य और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत जीरामजी योजना और मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई बिजली की नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। श्रोताओं, राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी DSR तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है। प्रति एकड़ करीब 5,000 रूपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, रायपुर में बीते 25 जून को PM श्री विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पिछले 3 वर्षों के दौरान PM श्री विद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सूरजपुर जिले के 3 विद्यालयों ने प्रदेश के शीर्ष 5 विद्यालयों में अपना स्थान बनाया। इनमें जयनगर स्थित PM श्री शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बत्रा स्थित PM श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और प्रेमनगर स्थित PM श्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रेमनगर शामिल हैं। श्रोताओं, सूरजपुर स्थित औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में बीते 30 जून को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश हिमांशु पंडा ने विद्यार्थियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने मनी म्यूल के बढ़ते खतरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साइबर ठग विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खातों का उपयोग अवैध लेनदेन के लिए करते हैं, जिससे खाताधारक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। श्रोताओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए ई KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट

0: किया है कि 15 जुलाई तक ईकेवाईसी पूरा नहीं कराने वाले हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। विभाग ने राशन आधारित वितरण में ओटीपी आधारित सत्यापन पर रोक लगा दी है। अब सभी उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। श्रोताओं, शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कार्यालय आने वाले लोगों को संबंधित विभागों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही कार्यालयीन कार्यों को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए पृथक हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सूरजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख छत्तरधारी प्रजापति का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई के निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जतई अपन दुख। आज संझा गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के संग होइस उखर दाह संस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ समेत आने राज्य मनला जारी करीस 25,000 करोड़ रूपया। और मौसम विभाग हा अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह मा जोरदार हा वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के नामी पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई के निधन हो गए है। लंबा बेरा ले उमन बीमार चलत रहीन। उनका इलाज रायपुर के एम्स में चलत रहीस। आज मुंधरा करीबन 3:15 उमन आखिरी सांस लीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य नेता मन तीजनबाई के निधन पर दुख जतैन। प्रधानमंत्री श्री मोदी हा तीजनबाई के निधन पर दुख जतावत अपन सोशल मीडिया पोस्ट में कहे हैं कि तीजनबाई हा छत्तीसगढ़ के लोक कला ला अपन भव्य प्रस्तुति ले दुनिया भर में एक ठिन विशिष्ट चिन्हारी देवैन है। उखर जवई हा कला और संस्कृति जगत पर बड़का नुकसान है। तीजनबाई के निधन के समाचार मिलते साठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत ले जुड़े मनखे और अन्य लोगन मन एम्स पहुंच के तीजनबाई के पार्थिव शरीर पर फूलमाला अर्पित करीन। मुख्यमंत्री हा किहिन कि तीजनबाई हा अपन अद्भुत गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परम्परा मन ला संजोवत छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पहचान ला विश्व पटल मा स्थापित करीन।
3: आज श्रीमती
2: पैसे तीजनबाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेंगे प्रादेशिक समाचार एकांश।
3: से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अनवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।
2: पेशे तीजनबाई के व्यक्तित्व पर तैयार करेगी प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर के एक रिपोर्ट।
1: तीजनबाई के जन्म 24 अप्रैल 1956 के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के गनियारी गांव में साधारण परिवार में होई रहीस। नान्हेपन ले ओमन महाभारत के कथा ला सुने और गाय के शौकीन रहीन। सामाजिक विरोध और आर्थिक तंगी के बाद घलो उमन एमा रमे रिहिन। माई लोगन मनबर ओबेरामा पंडवानी ला कापालिक शैली मा गवाई ला वर्जित माने जात रिहिस। फेर तीजनबाई हा ए रीत ला तिरिया के मंच मा अपन अलगे चिन्हारी बनाइन। तीजनबाई हा अपन मजबूत आवाज, रौबदार एक्टिंग और पंडवानी ला अनोखा रूप ले प्रस्तुत करे के शैली ले पंडवानी ला न केवल देश मा भलुक विदेश मा घलो नवा पहचान देवैन। महाभारत के कथा ला मंच मा जियत असन दिखाए मा उखर कला हा उनला भारतीय लोक संस्कृति के सबले

0: समेत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जतिन अपन दुख आज संझा गन्यारी गांव में राजकीय सम्मान के संग होई उखर दाह संस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ समेत आने राज्यमल्ला जारी करीस 25,000 करोड़ रूपया। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोनो कोनो जगह में जोरदारहा वर्षा होए की देही चेतावनी। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावते। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक ललित मोहन तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 करोड़ रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव सप्तदिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशाः अपि प्रदत्ताः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्त संचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्यां स्पर्धायां इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्येन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियम सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 करोड़ धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
2: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केशु

0: रणनीतिक सहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले संपूर्ण स्पर्धायां अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपांति स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्य वार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबंधः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। कानून की बात लीजिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध। इस विषय पर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है।

0: कानून की बात कार्यक्रम के आज के हमारे इस नवीन अंक में किशोर न्याय बोर्ड और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के संबंध में जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती उषा किरण वाजपेयी। आप किशोर न्याय बोर्ड की माननीय सदस्य हैं, आज आप इन दोनों विषयों के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करेंगी। वाजपेयी मैडम, आपका आकाशवाणी परिवार में सर्वप्रथम हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यह जानना चाहेंगे कि किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय से संबंधित अधिनियम कब भारत में प्रवृत्त हुआ है?
1: किशोर न्याय बोर्ड ब्रैकेट में बालकों के संरक्षण और देखरेख अधिनियम 2015, ये भारत में 15/1/2016 से लागू हुआ है। इसकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 को निकाली गई थी। संपूर्ण भारत लागू होता है ये।
0: जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम को लागू करने की या बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, कृपया इसके बारे में बतावें।
1: ये अधिनियम जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लाया गया था। वैसे तो पूर्व के जो एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, उनमें पूर्व से सारी धाराएं उपस्थित हैं, सारे अनुतोष उपस्थित हैं, लेकिन बच्चों के जो 16 से 18 के बीच के बच्चे हैं, भारत अन्वेषण अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि प्रतिदिन जघन्य अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए इस कानून को कई बार संशोधित करके और 2015 में लाया गया, और शने शने मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भी होती हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें सेक्शन अनुच्छेद 15 जो है
0: जी,
1: वो राज्य सरकार को उपबंध करने के लिए अनुमति देती है, और अनुच्छेद 45 और 47 बच्चों के मूल अधिकार जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, उन पर अधिक से अधिक उनकी सुविधाएं, उनको सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए न्याय प्रक्रिया पर बात करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम में सारे अधिनियम जो पुरुष हैं उनको भी समेकित करके एक अधिनियम में लाया गया।
0: किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत यदि किसी अवयस्क बालक के संबंध में कोई अपराध पाया जाता है तो प्रक्रिया किस प्रकार की अपनाई जाती है, कृपया बतावें।
1: देखिए, 18 साल से कम उम्र का बालक यदि कोई अपराध करता है, अपराध जो होते हैं इस एक्ट के तहत 3 तरह के होते हैं
0: जी।
1: एक तो छोटे अपराध होते हैं जिन्हें पेटी ऑफेंस भी बोलते हैं, वो 3 वर्ष तक के जिसमें सजा है वो उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरे सीरियस ऑफेंस होते हैं जिन्हें घोर अपराध कहते हैं, और उसमें 3 से लेकर 7 वर्ष तक वाले जिनमें दंड का प्रावधान है वो उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जघन्य अपराध आते हैं, हीनियस ऑफेंस, उसमें 7 वर्ष से ऊपर जितने भी अपराध हैं उनकी गणना

0: अंतर्गत होती है। इन तीनों में से किसी भी अपराध में यदि अभिरक्षा में लिया जाता है तो उस बालक की गिरफ्तारी करके और एक रिमांड तैयार की जाती है, न्यायिक रिमांड जिसको बोलते हैं, उसमें उसकी पूरी SBR होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसको एकत्रित करके उस न्यायिक रिमांड को गिरफ्तारी की डेट से 24 घंटे के अंदर माननीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया जाता है। उपस्थित किए जाने पर सर्वप्रथम हम उसकी एज का कि वो बालक 18 वर्ष से कम है उसका निर्धारण करते हैं
1: जी।
0: उसके बाद बोर्ड में उपस्थित होने के बाद उस बच्चे को रिमांड के साथ उसको संप्रेक्षण गृह, जहाँ बच्चों को उसे सुधारक गृह भी बोलते हैं, सुधार हेतु रखा जाता है, वहाँ रख दिया जाता है, उसको समरी ट्रायल बोलते हैं। उसके बाद जो आगे और जघन्य और घोर अपराध हैं
1: जी,
0: उनके बारे में सम्मन ट्रायल होती है। बालक को उपस्थित होता है, उसको प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है जो डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट मंगाई जाती है।

0: उसे सुधारक गृह भी बोलते हैं, सुधार हेतु रखा जाता है, वहाँ रख दिया जाता है, उसको समरी ट्रायल बोलते हैं। उसके बाद जो आगे और जघन्य और घोर अपराध हैं
1: जी,
0: उनके बारे में समन ट्रायल होती है, बालक को उपस्थित होता है, उसको प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है जो डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसके बाद पर आरोप लगाया जाता है। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि घोर अपराध जो है उसमें भी यदि अपराध जघन्य या क्रूरतापूर्ण नहीं है तो वहाँ पर भी बालक को किशोर को छोड़ा जा सकता है सामुदायिक सेवा के साथ, या उसको जुर्माना लगा के वहाँ भी छोड़ा जा सकता है। परंतु जघन्य हीनियस ऑफेंस जो है
1: जी,
0: उनमें किसी भी प्रकार का छोड़ने वाला प्रावधान नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया चलती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आरोप के बाद गवाहों के कथन होते हैं, उसके बाद मुलजिम कथन होता है, मुलजिम कथन के बाद अंतिम तर्क होता है, और अंतिम तर्क के बाद बोर्ड द्वारा जो भी निर्णय होता है वो सुनाया जाता है। इस तरह से कानूनी प्रक्रिया तीनों अपराधों में अलग अलग तरह की होती है।
1: किशोर न्याय बोर्ड और आप जैसे सदस्य जो होते हैं उनका इस पूरी प्रक्रिया में क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होती है, कृपया इसके बारे में बतावे।
0: जी, बोर्ड जो है वो उसको अभित्रास बालक को नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोर्ड नाम दिया गया है। बोर्ड में डाइस की व्यवस्था नहीं होती है, वकील साहब लोग और जो पुलिस है वो भी वर्दी में नहीं आते हैं, अपनी काले कोट को बाहर करके फिर ही बोर्ड में उपस्थित होते हैं। बोर्ड का गठन जो है उसमें प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान न्यायाधीश कहलाते हैं वो रहते हैं, और उनके साथ दो सामाजिक सदस्य रहते हैं जिनको कम से कम शिक्षा में, चिकित्सा में, बालक के कल्याण के कार्यों में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोनों मेंबर्स और प्रधान मजिस्ट्रेट मिलकर जो है वो न्यायपीठ का गठन करते हैं। फिर बोर्ड जो है वो अपने कृत्यों का मिलकर निर्वहन करते हैं।
1: वर्तमान बदले हुए परिदृश्य में किशोर न्याय बोर्ड में किस प्रकार की सुधार की गुंजाइश है, अन्य क्या क्या उपबंध इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं, कृपया हमें इसके बारे में भी जानकारी दें।
0: अनुतोष तो बहुत सारे दिए हुए हैं, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है
1: जी,
0: तो इसलिए उसमें मैं जो समझती हूँ, बोर्ड में आवश्यक रूप से उनकी काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों की हर काउंसलिंग अलग अलग सब्जेक्ट पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे, फिर आपका भरण पोषण पे और पर्यावरण पे, नशाबंदी पे, इन सब विषयों पे अलग अलग दिन अलग अलग काउंसलिंग की जाना चाहिए। बच्चे जो हैं उनके सर्वोत्तम हित और कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, अतः मैं चाहूंगी कि वहाँ पर मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों में सुधार कैसे हो, के लिए योग क्लास, आपका गीता की क्लास और ड्राइंग पेंटिंग ये तो होती ही है, उसके साथ साथ कौशल विकास के लिए उनको मैकेनिकल या जैसे प्लम्बर की है ऐसी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए
1: जी,
0: जिससे वो निकलने के बाद अपनी जीवन दिनचर्या को सही ढंग से चला सके।
1: जैसा कि हमारा दूसरा विषय है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, सर्वप्रथम यह अधिनियम कब लागू हुआ कृपया हमें बतावे।
0: घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो है 2005 है, और ये 17/10/2006 को इसकी अधिसूचना जारी की गई, उसके बाद 26/10/2006 से ये पूरे भारत पर लागू किया गया।
1: यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार है, इस प्रकार की प्रताड़ना को सह रही है, तो उसके लिए इस अधिनियम में क्या उपचार किए गए हैं कृपया बतावें।
0: देखिए, ये एक्ट जो है इसमें भी सिविल और दांडिक पूर्व से जो अधिनियम बने हुए हैं
1: जी,
0: उनमें सारी अनुतोष उसमें दिए गए हैं, परंतु उन सब को समेकित करके, एकग्र करके, और ये अधिनियम बहुत ही उपयोगी अधिनियम है जो बनाया गया। इसके अंतर्गत जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनमें आपसी रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी होना जरूरी है
1: जी,
0: घर के अंदर रहकर, चाहे वो विवाह से संबंधी रह रहे हों साथ में, या साझा रूप से रह रहे हों, या दत्तक ग्रहण के रूप में रह रहे हों, या एक संयुक्त परिवार में रह रहे हों, यदि वो जो घरेलू नातेदार हैं वो उस महिला को प्रताड़ित करते हैं शारीरिक, भावात्मक या मानसिक, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर की बात को बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इस अधिनियम के आने से बहुत ही सरल अधिनियम बनाया गया है, छोटा अधिनियम और बड़ा

0: लीफ दिया गया है, इसमें महिला जो है उसके कोई हिंसा होती है तो वो जो भी जानते हैं, महिला स्वयं भी पीड़िता जो है, जिसको मैं पीड़िता बोलूँगी, पीड़िता स्वयं भी जाकर इसमें रिपोर्ट कर सकती है, या जो उस हिंसा को जान रहे हैं, समझते हैं, वो भी जाकर के और रिपोर्ट लिखा सकते हैं। परंतु इसके लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिनके पास जो महिला पॉलिसी होती है उनके पास एक प्रारूप होता है, प्रारूप एक, जिसमें महिला की जो भी हिंसा हुई है और वो जिस तरह का अनुतोष चाहती है उसको पूरा लिखा जाता है, और लिख करके फिर उसको सत्यापित करता है जो संरक्षण अधिकारी होता है, सत्यापन के साथ और शपथ पत्र के साथ उसको माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। वहाँ भेजने के बाद मजिस्ट्रेट उसकी जांच करने के बाद प्रथम सुनवाई दिनांक निश्चित करता है, उस दिनांक से 60 दिन के अंदर प्रकरण को समाप्त किया जा सकता है
1: जी।
0: और सुनवाई दिनांक से 2 दिन के अंदर या माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी समय दिया जाता है उसके अंदर उस प्रत्यर्थी यानी जो प्रतिवादी है
1: जी,
0: जिसने हिंसा की है, उसके ऊपर तामील कराई जाती है। तामील होने के बाद वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। सबसे बड़ी बात इस अधिनियम में यह है कि ये न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सिविल अधिकारों का प्रवर्तन कराया जाता है, ये इस अधिनियम की विशेषता है। जब वो उपस्थित होता है उसके बाद संरक्षण अधिकारी के बाद एक प्रोसेस सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है जांच के बाद, और वो संस्था भी हो सकती है या व्यक्ति भी हो सकता है। उसका कार्य होता है विभिन्न प्रकार के अनुतोषों की व्यवस्था की गई है जिसमें 18 धारा उसको संरक्षण प्रदान करती है। यदि महिला उस घर के अंदर प्रताड़ित है तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाए वो उससे पूछा जाता है, और प्रारूप भर के ही उसमें उसकी सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं जो वो चाहती है उसकी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद धारा 19 आती है, 19 में निवास की व्यवस्था की जाती है, यदि महिला बहुत प्रताड़ित है तो उसको निवास के लिए व्यवस्था घर के अंदर ही की जाएगी, या अगर वो नहीं रहना चाहती है तो घर के बाहर भी आश्रय, खुला आश्रय होता है, उसमें उसकी व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जाती है
1: जी।
0: 20 में उसको धन संबंधी, यदि वो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है तो धन संबंधी आदेश दिया जाता है। 21 में उसको अभिरक्षा का अधिकार दिया गया है, यदि उसके पास बच्चा है और उस प्रतिवादी के पास रह रहा है तो वो अस्थायी रूप से उसकी कस्टडी दी जा सकती है। उसके बाद 22 में जो है प्रतिकर यानी कंपनसेशन, उसको जो भी क्षति मानसिक, भावात्मक, शारीरिक जो भी क्षति हुई, उसमें जो भी खर्च हुआ है उसके रूप में उसको क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है।
1: कार्यक्रम के अंत में अब हमारे जो आज के दोनों विषय हैं इनके संबंध में हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कृपया बतावें।
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगी हमारे श्रोतागणों को कि आपको ये छोटे छोटे अधिनियम जो मिले हैं वो बहुत बड़ा बड़े रिलीफ को प्रदान करते हैं, अतः इनका आप पूरा उपयोग करिए। और इसके लिए हमारा जिला विधिक प्राधिकरण जो है वहाँ आपको सारी तरह की सहायता दी जाती है
1: जी।
0: और ये दोनों अधिनियम जो हैं पूर्व से एक्टों में हैं, लेकिन इनको एकाग्र करके एक व्यापक रूप में संक्षिप्त एक्ट बना के और बहुत बड़ा रिलीफ प्रदान करने के लिए इन्हें बनाया गया है
1: जी।
0: और महिलाओं को विशेष तौर से जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं उनको आगे आके घर के अंदर हिंसा को सहन करने की बजाय यदि आपको सब कुछ दिया गया है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: श्रीमती वाजपेयी जी, आज आपने हमें इन दोनों विषयों के संबंध में बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। निश्चित रूप से ये जानकारियां हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगी। आपने समय निकाला, हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

कानून की बात। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध। इस विषयों पर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी से की गई बात।

बातचीत। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
12: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
13: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
12: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
13: आकाशवाणी से।
10: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
14: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से

0: अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य नेताओं ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई के निधन का समाचार मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया।
1: आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें।
0: पेश है तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समाचार एकांश रायपुर द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। महिलाओं के लिए उस दौर में पंडवानी की कापालिक शैली में प्रस्तुति देना वर्जित माना जाता था, लेकिन तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके गृह ग्राम गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पुत्र दिलहरण पारधी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों तथा हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख

0: करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त डीएपी मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो रहा है। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मार्कफेड के प्राधिकृत अधिकारी शशिकांत द्विवेदी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामकिशुन सिंह ने किया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश भर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। सूरजपुर जिले में आज एक खदान में चट्टान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले की लांची गांव के पास संचालित खदान में मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की चट्टान ढह गई और वहां काम कर रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले के धमदा में 1,11,00,000 रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इस कंपनी के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि इन चारों आरोपियों ने 267 ग्राहकों से ऋण की किस्त और अन्य भुगतान लेकर कंपनी में जमा नहीं किए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नारायणपुर जिले के छेरी बेड़ा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की टीम ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में उप विजेता का स्थान हासिल किया है। विद्यालय की 8 छात्र-छात्राओं का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। ये विद्यार्थी नई दिल्ली में संसद भवन का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे और संसद की कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। इनमें हर्षा ने लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मनसाय और अनुराधा उपविजेता रहे। अंजिला, निकिता, वेदिका, जयबती और शामी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आज 5 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले डुमतराई थोक बाजार फेज 2 के नामकरण और लोकार्पण समारोह को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम को प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के गनियारी गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया

0: उनका अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। धमधा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के कथित ऋण गबन मामले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विदुषी तीजनबाई, एक स्मृति शेष, श्रद्धांजलि पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम।
8: विश्वविख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तीजनबाई का आज सुबह रायपुर में आकस्मिक निधन हो गया। उनका जाना भारतीय कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विदुषी तीजनबाई ने अपनी अनूठी शैली से महाभारत के प्रसंगों को पंडवानी गायन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ की माटी से जन्मी पंडवानी की पहली महिला कलाकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। विदुषी तीजनबाई के लोक कला को समर्पित जीवन को याद करते हुए कला, संस्कृति, साहित्य और सभी वर्गों के नागरिकों ने उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
9: मैं कविता वासनिक, लोक गायिका। आज के दिन बहुत दुखद है। सुबह सुबह समाचार मिली कि हमारे पद्म विभूषण तीजनबाई नहीं रही थे, बहुत ही खराब लगी, बहुत दुख हुई थे। फिर सबे जब हम तीजनबाई है हमारे छत्तीसगढ़ भर ही नहीं बल्कि पूरा देश भर अपूर्णीय क्षति है। तीजनबाई हमारे धरोहर है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखी। आज तीजनबाई शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर उसकर कलाकारी हमेशा जीवंत रही। वो ऐसे उदाहरण स्थापित करके गए हैं। तीजनबाई महिला सशक्तिकरण के घनो उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में जब महिला मन के घर से बाहर निकलना मुश्किल रही थे, तब ले वो संघर्ष करके झेल करके पद्म विभूषण पाई थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला बढ़ाई से आज जतक महिला मन पंडवानी गाते हैं, सबो महिला मन कहीं न कहीं तीजनबाई ला अपन में सोचते। हमर पंडवानी ला वो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के विश्व स्तरीय में विश्व स्तर में पहचान दिलाई से ले ऐसा हमर छत्तीसगढ़ के गौरव सम्मान ला पहचान ला मैं नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। जब तक ये दुनिया रही तीजनबाई के नाम हमेशा अमर रही।
8: आप हैं भाषाविद श्री चित्रंजन कर।
10: पद्म विभूषण तीजनबाई का निधन छत्तीसगढ़ी संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय जो गायिका और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रकार से हमारा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई पता नहीं कब होगी। पूरा छत्तीसगढ़ आज स्तब्ध है उनके इस निधन के समाचार से। उन्होंने पंडवानी को जो ऊंचाई प्रदान की, केवल देश नहीं देश के बाहर कई विदेशों में, कई अन्य देशों में उन्होंने जो यहाँ का परचम फहराया, वो वास्तव में एक इंसान के वश की बात नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पढ़ाई का मतलब केवल डिग्रियां नहीं होती, जो अनुभव की पढ़ाई है और जो संस्कार जो उनको मिले और उनकी जो साधना थी उससे वो बहुत ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई।

0: उन्होंने एक ऐसा अमर नाम छोड़ा अपने पीछे जिसके सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।
1: मैं अनुराग ठाकुर चंदैनी गोंडा से जुड़ी हुई होने के कारण भिलाई में जब लोक कला महोत्सव होता था उस समय हम लोग, ये सन 72 की बात है, और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ होते ही रहता था भिलाई में, तो बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां वहाँ आती थी अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपने कार्यक्रम देने के लिए। तो वहाँ तीजन बाई जी से मुलाकात होती थी हमारी, वो भी आती थी पंडवानी का अपना कार्यक्रम देखकर, और हम लोगों का भी प्रोग्राम होता था, क्रम से होते जाता था सबका प्रोग्राम, अपना अपना प्रोग्राम देके लोग जाते थे। तीजन बाई जी का भी होता था, तो पंडवानी चूंकि लंबा चलता है तो उनका प्रोग्राम थोड़ा सा बाद में रखा जाता था, और बहुत बुलंद आवाज की थी, परफॉर्मेंस उनका ऐसा रहता था कि बिल्कुल जैसे कुछ शेडो प्ले जैसा है, लेकिन वो अकेले ही भीम का भी किरदार कर रही हैं, दुर्योधन का भी, और वो महाभारत के प्रसंग को लेकर ही करते हैं अक्सर पंडवानी का तो कार्यक्रम जो होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको निभाती थी, सभी रोलों को, जितने भी पात्र उसके रहते थे, और बिल्कुल लगता था दमखम के साथ वो देती थी प्रोग्राम अपना, और उनके वादक कलाकार भी थे, साथ में गाना भी चलता था, अभिनय भी चलता था, और तेज आवाज में, बुलंद आवाज में उनकी, जो आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है, और बड़े दुख की बात है कि इतनी अच्छी कलाकार, इतने सारे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव श्रीमती तीजन बाई, एक बहुत बेहतरीन कलाकार आज छत्तीसगढ़ ने खो दिया है, और उनकी, उनके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके जैसा कलाकार अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, पर ईश्वर करें कुछ ऐसे उनके शिष्य मिल जाए जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाए, यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ।
2: मैं पद्मश्री राधेश्याम मारले, पंथी लोक नृत्य के कलाकार, आज पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई जी के अंतिम संस्कार में गांव गणियारी निकले हैं, पंच लकड़ियां दे करके सैकड़ों कलाकार इस पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई जी के अंतिम यात्रा में हम सब सम्मिलित हुए, और चूंकि पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, और कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान है, छत्तीसगढ़ को बहुत बड़े नुकसान हुआ है, साथ ही साथ में पूरा देश आज छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के शोकाकुल परिवार सहित पूरा हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं, और मैं ऐसे दुखद घड़ी में पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई की अंतिम यात्रा उनके पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
3: मैं साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, मेरा गांव है लिमतरा और उसी से लगा हुआ गांव है मेरे मामा गांव नदोरी, तो इस तरह से छुटपन से हम लोग तीजन बाई को उस गांव में आते जाते देखते थे, क्योंकि उनका गांव जो है वहां से लगा हुआ है, और इस तरह से मैं लगातार मेरा संबंध उनसे रहा। बाद में संयोग रहा कि मैं सामुदायिक विकास विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र में छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का संयोजक हुआ। दानेश्वर शर्मा जी, विमल पाठक जी के रिटायरमेंट के बाद मुझे दायित्व मिला संयोजन का, तो उसमें तीजन बाई जी के साथ लगातार हर प्रदर्शन में उनके करीब रहने का अवसर लगा। फिर बाद में जब उन्होंने भारत महोत्सव के लिए फ्रांस की यात्रा की, तो वहां से उनके लौटने पर मैंने एक आर्टिकल धर्मयुग में लिखा फ्रांस में छत्तीसगढ़, जिसको उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर अभी मेरी एक किताब आई हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों में मैंने तीजन बाई को भी शामिल किया, और सबसे बड़ी बात यह है तीजन बाई जी की कि उन्होंने नारी जगत के सम्मान को बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के सम्मान को बढ़ाया, देश के सम्मान को बढ़ाया। दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में पंडवानी जो पंची बहुत चमत्कार है, जिसमें कि दो विधाएं होती हैं, जिसमें कापालिक शैली को अभिनय के साथ प्रदर्शित करने का जो कमाल तीजन बाई ने किया वो किसी दूसरे कलाकार से संभव नहीं हुआ। ये एक पूरी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है पंडवानी कथा मंच में कहने की, और तीजन बाई जो है कापालिक शैली को लेके जिस ढंग से उन्होंने अभिनय किया और जिस ढंग से लोक शैली को जोड़ा और लोक कथाओं को भी वो ब्यास के और सुबल

0: चौहान के महाभारत में जो कथाएं हैं उसको लेकर के, और उन्होंने जो काम किया वो बड़ा काम है। तीजन भाई अपने बचपन के दिनों में देवांगन जी की कथाओं को 18 18 दिन सुनती रही, अपने सीनियर लोगों से उन्होंने बैठ करके लोक शैली में सुना, और नाना जी उनके जो थे वो उनके गुरु थे, नाना स्वयं गाते थे तो उसको छुप के सुनती रही। लेकिन नाना जी ने कहा कि बेटा छुप के मत सुनो, तुमको मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा वो पहले गुरु बने। इस तरह से तीजन भाई ने बहुत संघर्ष करके अपने को स्थापित किया, और वो भीतर में इतना उनकी शक्ति रही कि उन्होंने नारी स्वतंत्रता का भी काम किया, और तीजन बाई का जो योगदान है वो पहली महिला पद्म विभूषण है। तो इस तरह से उन्होंने देश छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया, और छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के विश्व में जाने वाले जो बड़े बड़े कलाकार हुए उनमें से देवदास बंजारे जी और तीजन बाई का बड़ा नाम है, जो भारत महोत्सव के माध्यम से और दुनिया ने छत्तीसगढ़ी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित कथाओं को सुना, उसका ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और वो इतना अभिनय के कारण वो पूरे महाभारत को मंच पर रचती थी, और इस मूरे को महाभारत के वीरों की आयुध के रूप में प्रयोग करके तीजन बाई ने एक कमाल किया। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि गनियारी गाँव से लेकर के और दिल्ली से लेकर के तमाम जो उनकी यात्राएं हुई उनको देखने का अवसर लगा और समझने का अवसर लगा, और तीजन भाई के योगदान को, तीजन भाई के सम्मान को देखने का अवसर लगा, है हमारे लिए बहुत सौभाग्य का। आज उन्हें हम बहुत भरे मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने दिनों के लिए आई उन्होंने एक युग को अपनी छाप छोड़ी, और ये तीजन का युग कहलाएगा। हम उनको सादर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।
1: मैं राकेश तिवारी संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित और लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ लोक कलाकार। तीजन भाई जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है। राजीव बनने से पहले मैं जब बचपन में 8वीं पढ़ रहा था उस समय पहली बार पंडवानी सुना था मेरे मामा गांव अकोली में, और उसके बाद लगातार जब मैं संस्कृति विभाग में था तो लगातार 2001 से 2015-16 तक उनके लगातार जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते थे उसको मैं सामने बैठकर देखता था। उनके साथ बहुत सारे टूर में भी गया, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, और बहुत सारी यादें हैं। और वो तो कापालिक शैली ही बनाने वाली थी, उनका सीजन करता ही माना जाए एक तरीके से। और छत्तीसगढ़ का गौरव है, छत्तीसगढ़ को जब भी कोई पूछते थे कहाँ से हो तो हम बोलते थे भाई यहाँ तीजन भाई है, वहीं से हैं। तो उनका एक वर्षा भी हमने विभाग के द्वारा किया था, संस्कृति विभाग के तहत, जिसमें 12 से 15 जो बच्चे हैं वो विधिवत उनसे पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की थी, जो आज भी कई लोग उसमें पंडवानी गा रहे हैं। और बहुत ही अपूर्णीय क्षति है उनका निधन, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।
2: मैं ग्राम पीरदासी के रहने वाली पंडवानी गायिका शांति बाई चेलक, और सन 88 89 से तीजन दीदी के साथ मैंने कार्यक्रम दी है। पहले बम्बई में मैंने कार्यक्रम दिया उसके साथ 1.5 महीना का, उसके बाद इलाहाबाद जोन से भी हमने कार्यक्रम दिए, भोपाल में कार्यक्रम दिए, और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह उसके द्वारा भी हम लोगों को सम्मान वगैरह मिला। और तीजन दीदी बहुत अच्छे, मतलब छत्तीसगढ़ के एक अच्छे गायिका रही। और तीजन भाई आज नहीं रही और मैं कलाकार हूँ, तो मुझे बहुत मतलब दुख महसूस हो रही है। अब तीजन दीदी के नाम तो बहुत देश विदेश में है, बेटी हो चाहे बहू हो, लेकिन तीजन दीदी जैसे बहू बनना और बेटी बनना और कलाकार बनना शायद मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के नाम तीजन दीदी ने देश विदेश में अपने नाम रोशन की है, और बहुत पछतावा हो रहा है हम लोगों को। पंडवानी गायिका है हम, तो मैं बहुत सारे बात है जो तीजन दीदी से मैं ली हूँ। जैसे मैं इलाहाबाद जोन में कार्यक्रम देने के लिए गई और तीजन बाई भी उसी मंच में कार्यक्रम दिए, तो सर लोगों ने बोला कि जैसे तीजन बाई बोल रही, क्या बोल रही, कैसे बोल रही, वो कथा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो जो आवाज दे के महाभारत लड़ाई जो कर रहा

0: उसके बारे में वो गा रही है, वो वैसे टाइप के कलाकार की जरूरत है करके। और मैंने गांठ बांध ली कि मतलब पंडवानी में तो जोश रोश से और ऊंची आवाज से ही गाए जाते हैं करके, तो कुछ कुछ तो मैं तीजन दीदी से वो मतलब कला उससे मैं ली हूँ। और अब मैं जो जिंदा हूँ तो मैं अपने मरते दम तक तीजन दीदी की याद नहीं भूलूंगी।
1: मैं विजय कुमार दरगाह सारंगढ़ से बोल रहा हूँ। आज श्रीमती तीजन बाई के निधन का समाचार मिला। ये लोक कला लोक गायन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने पंडवानी गायन से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जा करके अपना और देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उनका जो जीवंत अभिनय जो रहता था महाभारत के पात्रों का, तो सुनने और देखने लायक होता था। तीजन भाई को मैं कुछ पढ़ा है तो उसे पता चलता था कि वो ज्यादा उनकी पारंपरिक शिक्षा कोई बहुत उच्च स्तर तक नहीं हुई थी, फिर भी अपनी कला के बदौलत उन्होंने बहुत अपना नाम किया। अपना अपने परिवार का, देश का, छत्तीसगढ़ का नाम जगह जगह फैलाया। उसके लिए हम अनुग्रहित भी थे उनसे और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में उनको स्थान दें।
2: वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरिनी श्रीवास्तव कहती हैं,
3: तीजन भाई इतनी सहज और सरल थी कि सेक्टर वन में रहती थी तो मैं गई थी उसके पास कि आप तो इतनी बड़ी उपाधि पा चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देने आई हूँ। सहज रूप से वो मेरे घर आ गई तो मैंने कहा उसको कि तुमको कैसे लगा, अपना अनुभव बताइए वहां पर बाहर विदेशों में। तो बोली क्या बताऊं मैडम, विदेश में विदेश ही रहता है, अपना भारत भारत है करके वो बहुत तारीफ की। पंडवानी के बारे में इतना तारीफ है उसका कि वास्तव में मैं भी देखती हूँ, अभी भी टीवी में आता है कहीं भी आएगा ना तो उसका पंडवानी बहुत बढ़िया गाती है। और इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई कागज देख रही है कर रही, वो मन से गाती है, उसकी अंतरात्मा की आवाज रहती, इसलिए लोग बहुत मुग्ध हो जाते हैं। जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन तीजन बाई का जाना बहुत दुखदाई लगा क्योंकि वो बहुत दिनों तक बीमार थी और बहुत अच्छी लेडी थी, तो इसलिए जाने पर लगा कि ये जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, जीवन की पोथी पर अनंत मृत्यु का हस्ताक्षर है, पंच तत्व में मिल जाना ही पुनर्जन्म का द्वार है।
2: विदुषी तीजनबाई ने भारतीय संस्कृति और कला को दुनिया भर में जो पहचान दिलाई है वो अतुलनीय है। कला के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश एक महान सांस्कृतिक संवाहक से वंचित हो गया है।
4: मैं नीर अली जी छत्तीसगढ़ आज एक दुखद समाचार छत्तीसगढ़ के नाम को, जिनका नाम ही काफी था तीजन भाई के नाम से जिन्हें जाना जाता था और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को लेकर के भारत देश को सम्मान दिलाने वाली ऐसी प्रतिभा आज हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है। एक बार वो मेरे स्कूल आई थी, सारा गांव हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पीटीआई था, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है रायपुर से। तो प्रार्थना समाप्त होने के बाद अचानक उनकी गाड़ी आई अंदर और तीजन भाई उतरी जब गाड़ी से, तो मैं उनको देख के आश्चर्यचकित रह गया। ये करीब आज से 10-15 साल पहले की बात है। मेरे से फिर उनका परिचय हुआ, बताया मैं ऐसी ऐसी बात है करके, तो बोले आज मैं गाना गा रहा नहीं आया है, पढ़ाया जा रहा हूँ। मैंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देश दुनिया की बात बताने के लिए तीजन भाई हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के बीच आई थी, तो उनका जो है छात्रों के प्रति स्नेह मेरे को देखने को मिला। मैंने बहन जी बन के आए हूँ ये सब सुन के आज मैं वो उस पल को याद करता हूँ। और दूसरी बात, एक कार्यक्रम कर रहा था मैं,

0: मोर माटी के नाचा, ये भी कार्यक्रम 15 साल पुरानी बात है। तो उससे किजन भाई गेस्ट के रूप में आई थी, जब उसका फाइनल ऑडिशन हुआ रायगढ़ में, तो उनको अपने बीच पाकर वो क्षण को आज मैं याद करता हूँ। निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, केवल यादों में रहेंगी वो। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ कहीं भी रहें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
1: राहुल कुमार सिंह, पद्म विभूषण किजन भाई जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उल्लेखनीय बात यह है कि वो हमारे राज्य की, छत्तीसगढ़ की ऐसी विभूति थी जो अकेली ऐसी विभूति जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अंडवानी कला को उन्होंने जिस तरह की ऊंचाई दी, जिस तरह का की पहचान दी और जैसा एक आयाम स्थापित किया, वो अपने आप में अतुलनीय है। उन्हें हमेशा इस तरह से याद किया जाएगा और वो एक कलाकार के साथ साथ एक बहुत ही व्यवहार में ऐसी इंसान थी। मुझे अवसर मिला उन्हें मंच पर देखने का, तो बार बार अवसर मिला। मैं बचपन से ही उन्हें कह सकता हूँ कि देखता रहा हूँ, लेकिन जो मंच के परे, मंच के बाहर ही वो जिस तरह से होती थी और अनौपचारिक चर्चाओं में वो बहुत सारी ऐसी रोचक बातें कहती थी। एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी ध्यान आती है कि किसी चर्चा में जब उनसे मैंने छत्तीसगढ़ी के सोहर गीतों की कि सोहर गीत तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी में नहीं है, सुनने को नहीं मिलते या बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोहर गीत बहुत सारे हैं। उन्होंने गाके सुनाया और जब इस पर बात निकली तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम उनको पंडवानी तक ही सीमित मान लिए थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की पारंपरिक लोकगीत और उसके साथ जो इस तरह से संस्कार गीत या साथी गाथाओं की, लोक गाथाओं की भरकरी की, वो बहुत बढ़िया जानकार गायिका तो अच्छी थी ही, उनके पंडवानी की बात ही क्या। और इसी तरह एक छोटी सी बात और मैं मुझे हमेशा याद आती है कि उनसे बातचीत में मुझे जो ड्रामा के लिए, मंचीय अनुभव के लिए जो फोर्थ वॉल की बात कही जाती है, दर्शकों से मुखातिब होने या दर्शकों के सामने के लिए जो एक आभासी पर्दा है उसे तोड़कर, उसे हटाकर जो जिस तरह से प्रस्तुति कलाकार देते हैं, उनमें वो उसकी पक्षधर होती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि राज्य बनने के बाद एक विशेष आयोजन दिल्ली में विश्व व्यापार मेले के दौरान हुआ करता था, छत्तीसगढ़ दिवस का आयोजन हुआ करता था, उस सिलसिले में, उस क्रम में वो दिल्ली गई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय में उनका कार्यक्रम था, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, वहाँ के ऑडिटोरियम में। और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान शुरू होने के बाद हॉल की लकियां जला दी गई, बिजली जला दी गई, लाइटें, और उसको मैंने बंद कराई कि ये तो कलाकार का प्रस्तुति हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद से तो उन लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने, कि मैडम ने कहा है कि हॉल की बत्तियां नहीं बुझेंगी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं कार्यक्रम के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत, मेरे लिए एक नई सीख थी, उन्होंने कहा कि वे जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनकी मुखमुद्रा, उनके मनोभाव देखती हैं, उसी तरह से अपने प्रस्तुति को वो इम्प्रोवाइज भी करती हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो भी उनको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो वही मौके पे देख के, तो उनको हमेशा वो सामने अगर दर्शक न हो, सामने उनकी मुखमुद्रा अगर स्पष्ट रूप से वो न देख पाती हो, तो उन्हें उस तरह से अपने अभिनय में, अपने प्रस्तुति में, इम्प्रोवाइजेशन में उन्हें वो बाधक होती है। और ऐसी ढेर सारी उनकी स्मृतियां हैं, अपने विदेश के अनुभव, जाडू राम देवांगन जी जैसे बहुत एक शास्त्रीय पद्धति से, लोक की भी अपनी जो परंपरा का शास्त्र होता है

0: तरह से पंडवानी की प्रस्तुति होती थी और उन्हीं की ये जो प्रस्तुति बाद फिर वेदमती और कापालिक इस तरह से विभाजन करके देखा जाने लगा और उन्होंने उस पूरी शैली को जैसा मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने एक नया आयाम दिया, नई पहचान दी और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की उस कला विधा को उन्होंने स्थापित किया और उस कला विधा के नाम पर छत्तीसगढ़ का भी सम्मान और पहचान पूरी दुनिया में बना।
1: सुरेश देशमुख, तीजन बाई की जहाँ तक बात है, बचपन से ही कलात्मक अभिरुचि की थी और अपने जीवन में उन्होंने बचपन से पंडवानी की शिक्षा ग्रहण की। पंडवानी की एक नई विधा उन्होंने शुरू की जिसे हम कापालिक पंडवानी के नाम से जानते हैं, जिसमें खड़े होकर, केवल बैठकर नहीं, खड़े होकर पंडवानी को पूरे अभिनय के साथ, मुद्राओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसी विधा को लेकर वो आगे बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नाम कमाया, बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए। मैं उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ।
2: जी, मेरा नाम ऋषि छत्री है, मुझे लोकवाद संग्रह के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय तीजन बाई को मैंने आज से विगत 55 वर्षों से मैं जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया हूँ। जब 1970 में मैंने पहली बार उनका कार्यक्रम देखा मेरे गांव में, सलोनी, ग्राम सलोनी जो खैरागढ़ के पास है, उस समय जो पंडवानी हुआ करती थी वो उसमें कोई मंच वगैरह ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हुआ करते थे। और एक चीज और बता दूं, जैसे अभी जो कार्यक्रम होता है एक निश्चित कोई रकम धन देकर कार्यक्रम करवाया जाता था, उस समय वैसा नहीं हुआ करते थे। उस समय जो आरती और प्रेक्षक से जो दे दिए उन्हीं के बल पर ये कार्यक्रम हुआ करते थे। और जो महाभारत की जो कथा है 15-15 दिन तक गांव में हुआ करते थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद उनके साथ में मैंने 1987 में मैं उनसे जुड़ा, वो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से कार्यक्रम करती थी। उन्होंने फिर 1987 में मनमोहना एक लोक संगीत पार्टी खोला, उसमें मैंने फिर वहाँ पर मुझे भी बुलाया गया, मैं उस समय लोक नृत्य करता था। उनके कारण हमने पश्चिम बंगाल आसनसोल स्टील प्लांट, बिहार

सेना, भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, भीषम द्रोण कर्ण दुशासन, जियत भर के साथ।

0: ये था विश्व विख्यात पंडवानी गायिका विदुषी तीजन बाई के निधन पर श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष। आलेख वाचन और संपादन प्रकाश उदय, प्रस्तुतकर्ता रमा शंकर।
1: विदुषी तीजन बाई एक स्मृति शेष श्रद्धांजलि पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20. नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेंस वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: Oh Manish, I must tell you the palpitation is really high because obviously there is little hit and miss. We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia pure dominance, super aura, and today because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super, super experts. First of all, we have Chetan Shah.
5: सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियाँ ज्यादा ही हैं, लिहाजा कहाँ बंकर हैं, कहाँ खाई यानी ट्रेंचेस, कहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहाँ मोर्टार्स, कहाँ कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन्स से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिक

दुश्मनों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की

फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन्स से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जाबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफ

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सबरंग।

कुछ बात लिए, जज्बात लिए, खुशनुमा लम्हे साथ लिए, चले आए हैं आपके पास सबरंग की सौगात लिए। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, हाजिर हूँ लेकर सबरंग।

क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। लगने लगते हैं अपने भी पराए, और एक नज अजनबी पर एतबार हो जाता है।

इंतज़ार करना, राह तकना, बाट जोहना, एक दिलकश, एक बेताब, एक बेचैन कर देने वाला मंजर, जिसमें पल पल सदियों सा बीतता है। हर आहट पर ये गुमान होता है कि शायद वो आए हैं या उनकी खबर आई है। फिर मायूसी के इंतज़ार अभी और है, और ओ जाने वाले आके तेरे इंतज़ार में, रस्ते को घर बनाए, ज़माने गुजर गए।

कभी इंतज़ार की मुद्दत होती है, कभी इंतज़ार बेमुद्दत होता है, कभी इंतज़ार में उम्मीद होती है, कभी इंतज़ार ना उम्मीद होता है, मगर इस इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। उनका वादा है कि वो लौट आएंगे, इसी उम्मीद पर

हम जिए जाएंगे। ये इंतजार भी उन्हीं की तरह प्यारा है, कर रहे थे, कर रहे हैं और किए जाएंगे।

ऐसा भी नहीं है कि इंतज़ार हमेशा बेवजह हो, बेसबब हो और कभी ख़त्म ही ना हो। कई बार किसी शख्स, किसी कामयाबी, किसी इम्तिहान का नतीजा लंबे इंतज़ार के बाद सुखद घड़ी भी लाता है। और तब जिसकी चाहत थी, जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए दिल बेकरार था, उसके आने पर दिल झूम कर गाता है।

इश्क में सुकून कहाँ, सिर्फ बेकरारी ही बेकरारी है। हिस्से में कभी हमारे तो कभी तुम्हारी बारी है। अजब समा है ये भी, तू पास भी है फिर भी तेरा इंतजार है। ये दिल है कि कह रहा है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, पास है तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है।

सबरंग अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।
1: पल पल बिखर जाए

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में, गीत राफत।

0: दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, बीटवेल हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: पंद्रह मिनट से फिर सुन सकेंगे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण

0: और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे

0: वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निधन

0: कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

सरगम में सात सुर समाए, सात रंगों से हुआ इंद्रधनुष साकार। एक शख्स के फन की बानगी में पेश है कार्यक्रम, एक ही कलाकार।

नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज इस कार्यक्रम में फिल्म बॉबी फेम गायक शैलेंद्र सिंह की बात हम कर रहे हैं, जिनके दिल में शौक था और दिमाग में अभिनय का जुनून। चेहरा भी हीरो बनने लायक था। इसके लिए शैलेंद्र सिंह ने अभिनय की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी, मगर किस्मत ने पहले ब्रेक दिया गायन के क्षेत्र में और पहले गीत ने ही तहलका मचा दिया। ऐसी सफलता बिरलों को ही मिल पाती है। ये है वो गीत।

4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में जन्मे थे शैलेंद्र सिंह। पिता वी शांताराम के असिस्टेंट थे। शैलेंद्र की मां निर्मला सिंह

राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च कर रहे थे और उन्हें ऋषि के लिए बिल्कुल फ्रेश आवाज चाहिए थी। राज कपूर के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले वीपी साठे शैलेंद्र को कई बार गाते हुए सुन चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र सिंह को राज कपूर से मिलवाया। शैलेंद्र की आवाज़ राज कपूर को बहुत भाई और शैलेंद्र सिंह

बॉबी के सभी गाने सुपर हिट हुए। शैलेंद्र सिंह की युवा और ताजगी से भरी अलग सी आवाज देश भर में छा गई। उन्हें गानों के अनेक प्रस्ताव मिले। अभिनय के प्रति भी शैलेंद्र की छटपटाहट बरकरार थी, जिसके चलते दो जासूस, जनता हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में शैलेंद्र सिंह ने अभिनय भी किया।

1973 से शुरू हुए शैलेंद्र सिंह के गायन के सफर में 1987 तक ठहराव आने लगा। इस दौरान उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी। उन्होंने कई टेली फिल्मों में संगीत भी दिया। अपनी पहली ही फिल्म बॉबी के लिए शैलेंद्र सिंह को फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया। शैलेंद्र सिंह वो कलाकार जो अपने फन और आवाज की बदौलत, गायकी की बदौलत आज भी सराहे जाते हैं। आज भी उनके गाने सुनकर अनजान लोग भी आकर्षित हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि ये आवाज किसकी है। शैलेंद्र सिंह ने जो गीत गाए हैं बेहतरीन हैं और सुने जाते रहेंगे।

शैलेंद्र सिंह पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम का आज का सफर यहीं तक। अब इस सफर से इजाजत दीजिए अपनी दोस्त रेणुका काले को।

एक ही कलाकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ही रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं, यह आसमान उनका साथ दे रहा है। यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरे जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बज रहे हैं। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।
1: यार लाइव

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा।

0: अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto.

0: player of the match of the final T20 cricket match played between Australia and England of the ICC Women's T20 World Cup 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 12:28:05 हुए हैं। ये सभा यहीं संपन्न होती है। आज 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए